0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

वाले संपूर्ण गणों का भी पूजन और प्रार्थना की जाती है। कह रहे हैं कि नंदीश्वरो महातेजा नगेन्द्र तनयात्मजः सनारायण देवकै देवेर नित्यम अभ्यर्च वंदितः। जो गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, भगवान श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं, सर्वशांत पुरद्वारी सार्धम परिजने स्थितः सर्वेश्वर समप्रख्य सर्वासुर बिन विमर्दन, और समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। ऐसे भगवान शिव के जो गण हैं, सर्वेषां शिवधर्माणां अध्यक्षं त्वेभिषेचितः शिवप्रियः शिवाशक्त श्रीमच्छूलवरायुधः। शिवधर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिवभक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय हैं, शिव में ही अनुरक्त हैं तथा त्रिशूल और नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं। शिवाश्रिते सुसंसक्ता स्तनुरक्तश्च तैरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समी कामं प्रयच्छतु। ऐसे भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर भगवान शिव और माँ पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य करके हे भगवान नंदीश्वर मेरी मनोकामना को परिपूर्ण करें।

0: अभिरक्षितु, दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही और रक्षा करें। शिव प्रिय शिवाशक्त शिवयोरर्चक सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञा समे दिशतु कांक्षितम्। हे भगवान शिव के प्रिय, भगवान शिव में उनकी और आशक्ति है, वे सदा भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा में लगे हुए हैं, हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: आलयां। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। गुणों के कारण ही प्रसिद्धि और आदर। कौशेयम मृगजम सुवर्णमुपलादम दुर्वापी गोलोमत पंखातारवणम शाशम शश्वातम अधिरवंद गोमयात काष्टादिक्तरहे फलादीपम मणि गोपर्तो रोचना प्रकाशम स्वगुणम देयम गुणनिधो गच्छते किम जन्मनान। रेशम कृमियों से उत्पन्न होता है, स्वर्ण पत्थर से, गौओं के गोमय से दुर्वा, चिड़िया में से लाल कमल, समुद्र से चंद्र, गोबर से नील कमल, लकड़ी से अग्नि, सर्प के फन से मणि और गाय के पित्त से गोरोचन उत्पन्न होता है। इनका उत्पत्ति स्थान अच्छा न होने पर भी अपने गुणों के कारण से प्रसिद्ध और आदर पाते हैं। कौन जीवित ही मरे के समान। नेहम यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पयेत् न तीर्थम पतम सेवाय जीवन्नपि मृतम हिमसे। इस संसार में जिसका कर्म न तो धर्म के लिए होता है, न वैराग के लिए और न तीर्थपाद भगवान के चरण सेवा के ही लिए होता है, वह जीते जी भी मरे हुए के समान है। जितेंद्र के लिए घर वन एक सा। भयं प्रवस्त्वं तवेनं प्रसाद यत्स आसते हर्षं तपल्लव जितेन्द्रियस्यातिं मरते भूदस्यः गृहांस्यत् किं तु करोम व्यदे। जो प्रसाद गृहस्थ है उसे वन में रहने पर भी पतन का भय रहता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा सभी श्रोताओं का इस पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज मंडे 24 अगस्त श्रावण मास का चतुर्थ एवं अंतिम सोमवार है। चलिए इस पावन दिन में हम शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हैं।

शिव जी सती माता को भगवान श्री हरि की रसमयी कथा कहने लगी। उस समय दक्ष प्रजापति हुई। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया।

जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बर जाग, नेवते सादर सकर सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया।

दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले।

0: आना। चलिए आज इसको ही विराम दें, कल इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

देहि चित्ति दक्षः सुभगस्त्वमस्मे पोषं ऋणां मरिष्टितं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्याम्। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार।

नमस्ते। वेद मास की श्रृंखला में आर्यसभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत मेरा यह लघु वक्तव्य इस प्रकार है। यह मंत्र ऋग वेद की दूसरी मंडल के पहले सूक्त का छठा मंत्र है। सफल और खुशी जीवन के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है वे सब इस मंत्र में गिनाई गई है। भक्त ने प्रभु को इंद्र शब्द से पुकार कर अपनी आवश्यकता की सूची प्रस्तुत की है। मांगा उससे जाता है जिसके पास आवश्यकता से अधिक याचित वस्तु हो। इसीलिए यहाँ पर इंद्र से याचना की गई है। इंद्र परम ऐश्वर्य है क्योंकि उसके पास ज्ञान बल उत्तम स्वास्थ्य और पैसा भी ऐश्वर्य है। लेकिन कभी कभी ये भी मनुष्य को दुखी बना देते हैं। किंतु संसार की ठोकरें खाने के बाद जब विशुद्ध विद्या का नेत्र खुलता है तो दुनिया बदलती दिखाई देती है। इसी पर भर्तृहरि मुनि ने लिखा है, यदा किंचित जोहम द्विपय

गत, अर्थात यह है, जब मैं बहुत जानता था तब मदोन्मत्त हाथी की भांति घमंड से अंधा हो गया था और अपने मन में यह समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। परंतु जब बुद्धिमानों की संगति में कुछ कुछ ज्ञान हुआ तब पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। उस समय मेरा अभिमान ज्वर की भांति उतर गया। परम ऐश्वर्य में उस ज्ञान को ही पुकारा जा सकता है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुड़ा दे। शक्ति भी वही होगी जो कष्टों का निवारण करें। इसी प्रकार धन रूपी ऐश्वर्य की वही होगा जो अभाव ग्रस्तों का पालन करें। प्रभु में ये तीनों प्रकार के परम ऐश्वर्य है, वही इंद्र है। ज्येष्ठानी द्रविणानी देही, तू मुझे श्रेष्ठ उत्तम अत्यंत पवित्र धार्मिक बना दे। द्रविणानी, तू मुझे धनैश्वर्य दे। अधर्म और अन्याय पतन का कारण होगा, मुझे ऊपर उठाना है। उदाहरण, दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर पांडवों को भेंट में आई अपार संपत्ति को लोभ के वशीभूत होकर अन्याय से जुआ खेलकर हड़प लिया। किंतु वही अपार धन धनैश्वर्य उसके विनाश का कारण बना। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: तुम्हारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। ओम ईशा सनत्नी सनमी

Yoshaso vibhati Seiki neiki namishata vichashti. अर्थ: महान शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक और सर्व प्रकाशक होकर अपने भक्तों की बढ़ती करता और समस्त संसार की सुधि रखता है।

वृता तस्यारूपेणि मे वृक्षा हरिता हरितस्रज। अर्थ, ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वरक्षक प्रसिद्ध हैं, उसी की दया से यह हरे हरे वृक्ष आदि प्राणियों को फल आदि से सुखदायक होते हैं।

न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। अर्थ, जो विद्वान दृढ़ चित्त से परमात्मा को प्रत्यक्ष जानता है वह कभी दुखी नहीं होता, उसका आत्मबल सदा बढ़ता रहता है, यह ईश्वर का नियम है।

महत अर्थ कारण शून्य परमात्मा ने वेद द्वारा सत्य धर्म का उपदेश किया है और वे वेदवाणी परमात्मा का ही यथावत ज्ञान जनाती हैं।

0: चतुष्पदे।
1: हे अन्न का स्वामी परमेश्वर, हे अन्न स्वरूप भगवान, हे अन्नदाता, जगत के सारे पदार्थों का आप ही स्वामी हैं। आपकी कृपा से सबको अन्न प्राप्त होता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा खाया हुआ अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। संसार में अन्न उपजाने वाला एवं अन्न दान करने वालों की सदा उन्नति हो, उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो।

को, दो पैर और चार पैर वालों को, अर्थात मनुष्यों और पशुओं का जीवन अन्न से भरपूर हो, वह भक्षण करने योग्य अन्न प्रतिपल ऊर्जा देने वाला हो।

0: मनुष्यों को उचित है कि वह अपने रथ रूपी शरीर तथा रथवाहक इंद्रियों को बलवान बनावे। निर्बल इंद्रियों वाला मनुष्य अपने कार्य भली भांति नहीं कर सकता, परिणाम स्वरूप वह दूसरों के सहारे रहता हुआ दूसरे प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी दुर्बल देह वाले को परिवार के लोग भी उपेक्षा व घृणा के दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अपने साथ साथ अपनी संतानों की शारीरिक दशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान बल का दाता है, बल एवं सामर्थ्य उसी से मांगना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना उपासना से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है।
1: ओम अधीतिरध्यगात अयम अधिजीवपुरा अगनशतम यस्य भीषजः सहस्त्रम उत विरुधः।
0: जीवात्मा अनेक योनियों को प्राप्त करती हुई सुख दुख रूपी फल को भोगती है। उनकी यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वे अपने कर्म के अनुसार अनेकों देह प्राप्त करती हुई जन्म मरण के बंधन में आती है। देह भवसागर को पार करने के लिए मात्र साधन है। जिस प्रकार दुखी पुरुष के रोग को दूर करने के लिए वैद्य और सैकड़ों औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसी प्रकार जन्म मृत्यु दुख को समाप्त करने के लिए ब्रह्म उपदेशक सच्चे गुरु सच्ची भक्ति और वेद ज्ञान रूपी औषधि की आवश्यकता होती है।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए SC परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंता बढ़ा रही है। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जैन के नाम से जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और MMM

0: के प्रमुख नेताओं में शुमार जयंत कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। गुजबा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी पर उसने कहा कि उसको शैतानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण ये हत्या उसने की और बच्चे का शव अभी अस्पताल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जांच जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची। सब्जियों के दाम में गिरावट खासतौर पर तेजी रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियाँ सस्ती मिली। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से काजिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनके यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। करीब 600 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि काजिनो के संभावित टेकओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद से उन्हें अब तक आगे की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। सरकार डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर रही है और सरकारी पोर्टल तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों को एक ही स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी है। 21 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक तथा एकीकृत और नागरिक केंद्रित बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है। जहाज पर सवा 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर एक कमज़ोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी और बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और देर रात में पूर्व तथा ऊंचाइयों पर थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। हवा हल्की बहेगी सुबह के समय तथा रात के दौरान पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां। वाकवा के आसपास के इलाके विलुकबी रोड, डेकन रोड, ब्रिटानिया रोड, सफलोक रोड के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 24 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और वाकवा के कुछ इलाके रुटगानम, मौसल मसूबा, विल्सन लेन, मुडालियो लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 26 अगस्त 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और पायोट के आसपास के इलाके रघु लेन, कालीमाई लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 26 अगस्त 2026 दोपहर के एक बजे

जैसे शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: नमस्कार, सुप्रभात प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 24 अगस्त 2026 एक नया कार्यक्रम, जी हाँ, आपके नाम सुबह का नजराना और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, जहाँ एक नई सुबह, एक नई रोशनी और ज़िंदगी को फिर से खूबसूरती से जीने का एक मौका और मिला है हमें दोस्तों। तो चलिए इस प्यारी सी सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बातों, मधुर संगीत और आपकी खूबसूरत फरमाइशों के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम सुनने जा रहे हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। आज हम सब लोग श्रावण मास के एक विशेष पर्व की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। बंधुओं, आप सबको विदित होगा कि प्रत्येक वर्ष हम सब लोग श्रावण मास के इस विशेष मास में एक पर्व मनाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम सब लोग श्रावणी उपाकर्म पर्व कहते हैं। और साथ ही साथ उसी दिन हम सब लोग रक्षाबंधनोत्सव भी मनाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो श्रावणी उपाकर्म पर्व है, ये ब्राह्मणों की दृष्टि से इसलिए विशेष माना जाता है कि इस मास में इस पर्व को लेकर वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार की विशेष महत्ता होती है। बंधुओं, ये पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें वेदों का आरंभ करना होगा। ये मास वेदारंभ का एक विशेष पर्व है। इस पर्व के माध्यम से गुरुकुलों में जब बालक पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका वेदारंभ संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है। वेदारंभ अर्थात उनके वेद पढ़ने की शिक्षा आरंभ की जाती है। और जो पुराने लोग हैं, जो वेद का स्वाध्याय पूर्व से ही करते आ रहे हैं, उन्हें स्वाध्याय का एक नया संकल्प दिलाया जाता है। साथ ही साथ इसी पर्व पर एक नवीनता का पर्व हम सब लोग मनाते हैं, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। अर्थात जनेऊ यज्ञोपवीत बालकों को धारण कराया जाता है। इस काल में एक परिस्थिति बनी, कुछ लोगों का मानना होता है कि जी यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, अनेकों नियम होते हैं, परंतु हमारा शास्त्र कहता है प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। केवल 3 व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मर जाता है वो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकता। एक वह व्यक्ति होता है जिसके सारी बुराइयां जिसके जीवन से दूर हो चुकी हैं, वह व्यक्ति अर्थात जो सन्यासी बन जाता है वह यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जो समाज में निकृष्ट व्यक्ति होता है, सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है, उसको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं या सदमार्ग पर चल रहे हैं, उन सबको यज्ञोपवीत धारण

कराया जाता है। तो बंधुओं, ये पर्व हमारे लिए एक नवीनता का पर्व होता है कि हम यज्ञोपवीत जनेऊ जैसे प्रतीकों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें और उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार के लिए ये पर्व विशेष माना जाता है। बंधुओं, उपनयन का अर्थ होता है उप अर्थात समीप, नयन अर्थात ले जाना, जो विद्या के समीप आपको लेकर के जाए। तो ये पर्व उपनयन के माध्यम से विद्या के समीप ले जाने का कार्य करता है और हम सबके लिए विशेष होता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीन ऋणों का बड़ा उपकार होता है। तो हमें ये उपनयन के माध्यम से पर्व समझाने का प्रयास करता है कि हमें इन तीनों ऋणों से ऋण होने का विशेष कार्य करना है। बंधुओं, जब वेदारंभ संस्कार होता है तो वेदों का आरंभ होता है, अर्थात यह पर्व हमारे लिए वेदों का आरंभ करने का पर्व है। पश्चात वेदों का आरंभ स्वाध्याय से किया जाता है, तो इसी पर्व को हम लोगों ने स्वाध्याय पर्व का भी नाम दिया कि हम सब लोग स्वाध्याय के माध्यम से इसे मनाने का प्रयास करेंगे। हमारा शास्त्र भी कहता है, स्वाध्याय नित्ययुक्तः स्याद्देवै चैवेह कर्मणि देव कर्मणि युक्तो हि विवतीर्दम चराचरम। अर्थात इस चराचर जगत में जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है वो ज्ञान हमें स्वाध्याय से प्राप्त हो सकता है। और स्वाध्याय का एक अर्थ और निकलता है, सुअध्याय, अर्थात अपने आप का निरीक्षण करना। तो ये कि आत्मनिरीक्षण का पर्व भी हम लोगों के बीच में माना जाता है। तो बंधुओं, इन पर्वों के माध्यम से यदि देखा जाए तो हम इस श्रावणी उपाकर्म पर्व रक्षाबंधनोत्सव के समय, आज के समय में रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन का सामान्य अर्थ है कि हम रक्षा के बंधन का संकल्प धारण करें। अब केवल संकल्प सामाजिक जगत में माना जाता है कि एक भाई अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। मैं कहूँ ये रक्षाबंधन आपके जीवन की रक्षा का संकल्प है, आपके ज्ञान की रक्षा का संकल्प है कि ये वेद की परंपरा की रक्षा मुझे करना है। मैं इस श्रावणी उपाकर्म पर्व के अवसर पर ये संकल्प लेता हूँ कि मुझे अपने वेदों की रक्षा करना है, अपने शास्त्र, अपने संस्कृति की रक्षा करना है। तो ये रक्षा का भी एक पर्व माना गया। साथ ही साथ ऋषि तर्पण पर्व के माध्यम से भी हम सब लोग इसे मानते हैं। और बंधुओं, ये सब जो नए नए विकल्प जुड़ते चले जाते हैं कि ये पर्व हमारे लिए वेदारंभ का पर्व भी है, स्वाध्याय का पर्व भी है, वेदों की रक्षा का पर्व भी है, साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण का पर्व है, नवीनता का पर्व है और ऋषि तर्पण का पर्व है। तो इन सबको जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पंच महायज्ञ में सम्मिलित होते हुए दिखेगी। जैसे सर्वप्रथम हम ब्रह्म यज्ञ को लें, ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना करना और स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय हमारे श्रावणी उपाकर्म का ये पर्व आ गया। साथ ही साथ आगे बढ़े, देव यज्ञ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और जितने भी संस्कार है बिना यज्ञ के संपन्न नहीं हो सकते, तो देव यज्ञ भी उसमें निहित होता है। उसके साथ ही साथ हम देखें तो पितृयज्ञ, पितृ अर्थात माता पिता की सेवा करना, और साथ ही साथ ऋषियों को भी पितर कहा गया। हमारे शास्त्रों ने कहा ऋषयः पित्रो, ऋषि भी हमारे पितर है। तो ऋषि तर्पण का ये पर्व माना जाता है, तो हमारा पितृयज्ञ भी संपन्न होता है। बलिवेश देव यज्ञ भी हम इस पर्व के माध्यम से करते हैं और साथ ही साथ अतिथि यज्ञ, अर्थात जब वेदों की परंपरा, वेदों के श्रवण श्रावण की परंपरा होगी।

0: विद्वान अतिथि हमारे बीच में आएंगे, तो उनका आतिथ्य स्वीकार और उनका आतिथ्य सम्मान हम लोग करेंगे, तो ये हमारा अतिथि यज्ञ भी होगा। तो ये जो रक्षाबंधनोत्सव, श्रावणी उपाकर्म पर्व या श्रावण मास के महीने में मनाए जाने वाले ये पर्व हमारे लिए एक विशेष महत्व प्रदान करते हैं। तो हम सबको उचित है कि हम इस श्रावण मास में श्रावणी उपाकर्म पर्व को विशेष महत्ता देते हुए मनाने का प्रयास करें। और बंधुओं, हमारे गुरुकुलों में इसी पर्वों में एक कार्य और विशेष जोड़ा जाता है, इसे हम संस्कृति का पर्व भी मानते हैं। और संस्कृति हमारी भाषा से जुड़ी हुई है, संस्कृत से, तो संस्कृत सप्ताह हम लोग मनाया करते हैं। तो विशेष महत्व है कि हम इस मास में और इस पर्व के माध्यम से संस्कृत से भी जुड़ने का प्रयास करें। संस्कृत हमारे साथ होगी तो संस्कृति हमारी बनी रहेगी, और संस्कृति होगी तो हम अपने वेदादि ज्ञान की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे शास्त्र, जितने हमारे ग्रंथ, सब संस्कृत में हैं। तो हम इस पर्व को संस्कृति का पर्व, संस्कृत के संवर्धन का पर्व भी मानते हैं। तो इस रक्षाबंधनोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, श्रावणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब वेद की रक्षा का संकल्प लें। इति ओम।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: जी हाँ श्रोताओं, यही है पैगाम हमारा। चलिए, 6:30 बजे आप सुन पाएंगे समाचार। अभी के लिए चलिए सुनते हैं आचार्य मोहन जी के साथ श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
3: सादर नमस्ते। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से विशेष कार्यक्रम में मैं आचार्य मोहन आर्य श्रोत बंधु वेद प्रवचन की श्रृंखला में आज एक नए वेद मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, हमारे जीवन में यदि

देखा जाए तो हमने कई सारी बातें सुनी होंगी कि जी परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, या स्वर्ग में ये चीज़ें प्राप्त होती है। परंतु आज हम वेद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वेद की महिमा में ये वेद मंत्र अथर्ववेद का बड़े ही अच्छे शब्दों में हमें समझा रहा है कि क्या स्वर्गलोक होता है और स्वर्गलोक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये अथर्ववेद का मंत्र बड़े अच्छे शब्दों में कह रहा है, ओम स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी सम जाययाम सह पुत्र हि श्याम ग्रहणामि हस्तमनुमा नस्तारिन रितिर्मौ अराति। वेद मंत्र बड़े ही अच्छे अर्थों में समझाने का प्रयास कर रहा है, जैसे मानो एक भक्त परमात्मा के पास में बैठा हुआ है और परमात्मा से स्वर्ग लोक की कामना कर रहा है कि स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी, प्रभु मुझे स्वर्ग लोक में लेकर के चलिए, मुझे स्वर्ग का आनंद दीजिए। बंधुओं, जब भक्त ये प्रार्थना करता है कि मुझे स्वर्ग लोक में लेकर के चलो, तो कहीं भगवान पूछते हैं कि भक्त तुम कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हो, कैसे स्वर्ग में जाना चाहते हो और किसके साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो। तो अथर्ववेद की वो अगली पंक्ति कहती है, सम जायाम सह पुत्रे श्यामा, प्रभु मैं स्वर्ग में तो जाना चाहता हूँ परंतु मैं अपनी जाया अर्थात पत्नी के साथ में, पुत्र ही पुत्रों के साथ में अर्थात पूरे परिवार के साथ में स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो ये अथर्ववेद की अगली जो पंक्ति है कि ग्रहणामि हस्त मनुमा नस्तारिन ऋतिर्भो अराति, ये पंक्ति हमें समझाती है कि वो स्वर्गलोक कैसा होगा जहाँ पर अपने पत्नी और बच्चों के साथ में जाया जाए, जहाँ पर ईश्वर का आनंद प्राप्त हो, जहाँ सुख शांति प्राप्त हो। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम इस वेद मंत्र के शब्दार्थ की ओर बढ़ें और बड़े अच्छे शब्दों में वेद मंत्र कह रहा है, हे विद्वान, हमको सुख पहुँचाने वाले समाजों में अच्छे प्रकार पहुँचा दो। हम पत्नी के साथ पुत्रों के साथ मिले रहें, मैं यहाँ प्रत्येक का हाथ पकड़ता हूँ, मेरे साथ साथ आवे, हमको नहीं अलक्ष्मी अदरिद्रता और नहीं कंजूसी दबाए। ये वेद मंत्र कह रहा है कि हमारे जीवन में ऐसा स्वर्ग हो जहाँ पर हम अपने पत्नी और बच्चों के साथ में रहें और अपने बड़ों का हाथ पकड़ करके उनके साथ चले, हमारे जीवन में अलक्ष्मी अर्थात गरीबी, दरिद्रता और किसी भी प्रकार की कंजूसी हमारे जीवन में ना हो। देखिए कितने अच्छे अर्थों में ये वेद वाणी हमें समझा रही है कि यदि आप ऐसा स्वर्ग चाहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें हो और आपके पत्नी और आपके बच्चे भी साथ में हो, तो वेद की पंक्ति कह रही है, गृहणामि हस्तमा अनियतु, आप केवल एक कार्य करना, अपने बड़े लोगों का हाथ पकड़ना और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर देना। बंधुओं, जब ये चिंतन या ये धारणा हमारे मस्तिष्क में आ जाएगी कि हमारे जीवन में कोई बड़ा होना चाहिए, बड़े का तात्पर्य होता है कि जिसके आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें और उसके आदर्शों पर चल सकें, तो अपने जीवन में एक बड़ा व्यक्ति बनाना जिसे हम कहते हैं गुरु, अपना एक गुरु बनाना कि उस गुरु की आज्ञा के अनुसार उसके आदर्शों पर आप चल सकें, अपने घर में भी कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति बनाना कि जिसके अनुसार हम चल सकें, और सबसे बड़ा जिसे हम ईश्वर कहते हैं उस परमेश्वर को अपना बड़ा बनाना, और उनके आदर्शों पर जब हम चलेंगे तो हमारा जो परिवार है वो परिवार ही एक स्वर्ग बन जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने परिवार को ही स्वर्ग बना सकते हैं। और उसके लिए हमें केवल ये कार्य करना होगा कि अपने बड़ों के अनुसार चलना होगा। आज हमारे साथ समस्या ये

है कि घरों में छोटे बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़े अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर की अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि वाकई में हम स्वर्ग चाहते हैं तो हमें अपने बड़ों के आदर्शों पर चलना होगा। आगे कह रहे हैं निर्रीति, अर्थात हमारे परिवार में यदि ऐसा पुरुषार्थ होगा कि जहाँ पर दरिद्रता देखी ही नहीं जाएगी, वहाँ पर फिर हमारा परिवार स्वर्ग बनेगा। तो परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए अच्छे धन की कामना, अच्छे धन के लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। हमारा वेद का मंत्र कहता है वयम श्याम पतयो ऋणाम, हम अधिक से अधिक धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। तो हम यदि स्वर्ग चाहते हैं तो हमारे जीवन में धन का होना भी अति आवश्यक है। और वो मंत्र कह रहा है मो आराती, आप धन तो कमाओ लेकिन साथ ही साथ कंजूसी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो उस कंजूसी को भी आप अपने जीवन में हटा करके अच्छे धन की कामना करते हुए अच्छे पुरुषार्थ के साथ में बड़े लोगों के पीछे पीछे, उनके हाथ को पकड़ करके पीछे पीछे चलने का प्रयास जब करेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बनता चला जाएगा। और ये स्वर्ग आप चाहते हैं तो आपको अपने परिवार को ही अच्छा बनाना होगा। आज परिस्थिति ये बन गई है कि हमारा परिवार अलग हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं, माता पिता में लड़ाई देखी जाती है, भाई भाई में लड़ाई देखी जाती है, बंधु बांधवों में आपस में लड़ाई देखी जाती है। हम इन लड़ाइयों को छोड़ करके जब एक साथ मिल करके एक विचारों से कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा परिवार क्यों स्वर्ग नहीं हो सकता, हम अपने परिवार को क्यों स्वर्ग नहीं बना सकते। मैं एक संदेश दिया करता हूँ कि एक उदाहरण है, जैसे आप कभी ने फल देखा होगा तो फल में एक फल होता है खरबूजा, और इस खरबूजे फल को जब आप देखेंगे तो इसमें बाहर से आपको लकीरें दिखाई देंगी लेकिन अंदर जाकर के जब देखेंगे एक माल दिखेगा। ऐसे ही एक फल होता है संतरा, संतरे को आप देखना ऑरेंज को, वो बाहर से चिकना दिखाई देता है लेकिन अंदर से उसमें कलियाँ दिखाई देती है। बंधु हमें अपने परिवार को संतरे की भांति नहीं बनाना है कि बाहर से बहुत सुंदर, बहुत धनवान, बहुत ऐश्वर्यशाली है और अंदर से अलग अलग है। खरबूजे की भांति बनाना कि बाहर से शरीर तो अलग अलग दिख रहे हैं परंतु हमारे मन मस्तिष्क हमारे विचार एक समान कार्य कर रहे हैं, तो हमारा परिवार स्वर्ग बनेगा। स्वर्गमय अपना जीवन जिए, वेदों की वाणी का श्रवण करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। सोमवार 24 अगस्त 2026 के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गए हैं, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए एससी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंताजनक। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमा जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी

कार्यकर्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। गोशवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जांच जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों

0: 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा की झंडी वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। 24 अगस्त 2026 को छात्रों के कक्षाओं में लौटे एक सप्ताह हो गया है। वे अब शैक्षणिक वर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ छात्रों के लिए ये समय दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें ग्रेड 11 के छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में SC की परीक्षाओं का सामना करना है। हालांकि दूसरी तिमाही में आयोजित मॉक परीक्षाओं के नतीजे उत्साहजनक नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा। और अगर बात करें गणित यानी मैथमेटिक्स की, तो स्थिति और भी चिंताजनक है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले केवल 37% छात्र ही इस विषय की परीक्षा में सफल हुए हैं। इन आंकड़ों ने शिक्षा मंत्री की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस पर प्रस्तुत है आशी बाचू की रिपोर्ट, पर अभी उदय का विवरण।
1: साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं से ठीक पहले शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा पौसाद ने चेतावनी जारी की है। उनके मंत्रालय ने पहले ही हाई रिस्क वाले शैक्षणिक संस्थाओं की पहचान कर ली है। शिक्षा मंत्रालय के विषय विशेषज्ञों द्वारा इन कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का बेहतर सुपरविजन किया जाएगा। खासकर उन छात्रों की मदद की जाएगी जिन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है। उनके अनुसार इन परिणामों के पीछे कई कारण हैं। उन्होंने स्कूल की शुरुआत से ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध का जिक्र किया। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्यधिक और व्यापक उपयोग को भी एक वजह बताया। कई शैक्षणिक संस्थाओं में मोबाइल फोन को लेकर हम जागरूकता अभियान चला रही है। ICT मंत्रालय तथा मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग के साथ कार्य सत्र लगाए गए। छात्रों को कहा गया कि रिसर्च वर्क के लिए मोबाइल फोन एक टूल है, परंतु अपने निबंध यानी कि ऐसे लिखने के लिए नहीं। छात्रों को खुद अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए और न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा छात्रों में पढ़ने की क्षमता यानी कि रीडिंग कल्चर की आदत भी कम हो गई है। उनके अनुसार इसका सीधा असर भाषा पर पकड़ और दक्षता यानी कि लैंग्वेज मास्टरी पर पड़ रहा है। देश के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के ढांचे पर फिर से गौर किया जा रहा है। भारत, फ्रांस, बर्तानी, यहां तक कि अमेरिका दूतावास की मदद से बहुत पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं। आने वाले ब्लूप्रिंट पर भी रीडिंग कल्चर से जुड़े कदम उठाए गए।
0: स्टैनली गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग जैन के नाम से जानती थी। स्टैनली में जन्मे और MMM के प्रमुख नेताओं में शुमार जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में उनकी अहम भूमिका रही। उनके परिवार के लिए ये फैसला भावुक करने वाला होने के साथ साथ गर्व का विषय भी है। जैन कतारी का नाम किसी स्कूल से जुड़ना उनके लिए उनकी यादों को जीवित रखने का एक माध्यम है। उनकी बेटी लिरका कतारी ने इस बारे में राजमीना सतमुनी से बात की। विवरण गीता सुदरान का है।
2: Je pense que déjà que ce soit associé à une école et quelque part
3: मेरे विचार से इसको एक स्कूल से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और ये एक ठोस संदेश देता है कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और शुरुआत को समाप्त नहीं होने देना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे लिए ये उम्मीद का संदेश है, इलाके और देश के सभी छात्रों के लिए।

0: message d'espoir pour tous ces enfants, bien sûr, de la région, mais aussi du pays.
1: रोशमा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जांच जारी है। पिता ने कहा कि उसे शैतानी आवाजें सुनाई दे रही थी। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने कुल मिलाकर अपनी कृषि उपज पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची और साल की शुरुआत की तुलना में सब्जियों के मामले में ये गिरावट कहीं अधिक स्पष्ट रही। खासतौर पर गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन ध्यान रही, इसका ये मतलब जरूर नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में आपको सब्जियां भी कम कीमत पर मिल रही हों। आदरणीय वाले अब ज्यादा जानकारी दे रही हैं विस्तार से अभी उदय के विवरण के साथ।
2: जब स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस उत्पादक मूल्य यानी कि प्रोडक्शन प्राइस की बात करता है तो इसका मतलब उस कीमत से है जो किसान को अपना उत्पाद बेचते समय मिलती है उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले। अप्रैल और जून के बीच इस साल के पहले 3 महीनों की तुलना में इन कृषि कीमतों में औसतन 2.6% की गिरावट आई है। सब्जियों के मामले में ये रुझान और भी साफ दिखाई देता है। पहली तिमाही में इनकी कीमतों में लगभग 2.2 की कमी आई थी, जबकि दूसरी तिमाही में ये गिरावट 8.9% तक पहुंच गई। सबसे प्रमुख उदाहरण गाजर का है, जिसकी कीमत में 54.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई। साल की शुरुआत में महंगा हुआ अनानास भी सस्ता हुआ। इसके उत्पादक मूल्य में 20.4% की कमी आई है। इसके विपरीत पशुपालन से जुड़े कुछ उत्पादों के लिए उत्पादकों को बेहतर दाम मिले हैं। अंडे और मवेशियों के लिए 6% अधिक और दूध के लिए 8.6% अधिक है। लेकिन उत्पादक के स्तर पर आई इस गिरावट का मतलब यह नहीं है कि आपके बाजार के थैले में भी कीमतें सीधे उतनी ही कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच परिवहन और व्यापारिक मार्जिन जैसी लागतें भी जुड़ती हैं।
1: आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कासिनो दे मुगिस्सा के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन सदस्य राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कासिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कासिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने यानी टेक ओवर के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस स्थिति को लेकर कैजिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। कैजिनो एम्प्लॉयज यूनियन के निगोशिएटर अश्विन गुदे के अनुसार कर्मचारी इस प्रदर्शन के जरिए अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। सरकार अपने डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर रही है। शुक्रवार 21 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐसी पहल पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य सरकारी पोर्टल और सरकार की विभिन्न वेबसाइटों को आधुनिक बनाकर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना है। ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट, एकीकृत और नागरिकों की जरूरतों पर अधिक केंद्रित होगा। राजविनास्ता मुनि की रिपोर्ट पर अभी उदय का विवरण।
2: इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करना और नागरिकों व व्यवसायों दोनों को एक तेज, अधिक व्यक्तिगत और सुगम डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। ये पहल सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन में तेजी लाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है और ये सीधे डिजिटल ब्लूप्रिंट से जुड़ी हुई है। इस दस्तावेज में मुख्य रूप से नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समाधानों के उपयोग को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। ऐलान किए गए उपायों में एक एकीकृत सरकारी पोर्टल यानी कि यूनिफाइड गवर्नमेंट पोर्टल और मोबाइल आईडी की स्थापना शामिल है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं तक अधिक सरल और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सरकार का लक्ष्य विभिन्न वेबसाइटों पर बार बार जाने की जरूरत को कम करना, जिससे नागरिक विशेष रूप से अपने मोबाइल फोन के जरिए सरकारी

0: सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सके।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है। जहाज पर कुल 24 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी 22 लोगों की तलाश जारी है। जहाज का नाम एमवी ओशन विनर है और ये उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से चीन की ओर लौह अयस्क लेकर जा रहा था। यह पारादीप तट के करीब 230 से 240 नॉटिकल मील दूर डूबा। बचाव अभियान के दौरान पास से गुजर रही MT Aesopus नामक एक व्यावसायिक जहाज को तलाश अभियान में लगाया गया। इसी जहाज ने करीब रात 8 बजे 2 लाइफ राफ्ट से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है और उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है। जहाज पर सवा 24 लोगों में 20 चीनी, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बाकी लोगों की तलाश के लिए कई जहाजों के साथ बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बातें मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। मौसम का हाल, आम हालत, हमारे इलाके पर कमज़ोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी, अन्य इलाकों में मौसम सुहाना होगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्रांतों वाले इलाकों में रहकर बारिश होगी। बाद में विशेषकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रहकर बारिश होगी। हवा सुबह के समय हल्की बहेगी और रात के दौरान भी हल्की रहेगी। दिन के दौरान हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और हमारे कंसल्ट पर सहयोगी कादर का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। उदित लेन मौदालबिया में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्री चंदर परमेश्वर जिन्हें अंजित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अवेन्यू फ्लोरियो प्लेजेंस रोजिल में 43 ईयर्स ओल्ड की कुमारी तिलंजलि दुबराज जिन्हें तिलन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी माँ राजकुमारी दुबराज के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10:30 AM। अली तमारे बॉम्बू में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा कहानू जिन्हें बुलुम एक्स पीओ लमेक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी तारा कहानू के घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। राय रोड कोचिमलीतिया में टैक्सी स्टैंड के पास 93

0: साल के 93 ईयर्स ओल्ड की श्री रोहित पांचू जो मोकाफ्लाग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे सुगा पांचू के घर कौचमलिदिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में कौचमलिदिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूटियर हॉफ पॉस नून Avenue Péadrix, morcellement sans souci, Montagne Blanche mais. Avenue Péadrix, morcellement sans souci, Montagne Blanche mais. 76 साल की 76 years old की श्रीमती मीराबाई धोंदी पैदाश नाम हुरपा और जिन्हें सेवन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे शिवराम धोंदी के घर मोताइम ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूटियर हॉफ पॉस नून केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती डेजी रानी सिबन जिन्हें आरती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी माँ चिंता सिबालक के घर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूटियरा ऑफ पॉस 10 AM रॉय रोड बुबासे में ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रुसियज अल्फ्रेड बुबासे में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंदा नरसू जिन्हें आनंदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:00 बजे ला शपेल ऑदों तेलियनसन बोबासन से उठाकर सबसे पहले एडवेंटिस जो 7वें गिरजाघर ले जाई जाएगी बोबासन में, फिर अंतिम संस्कार के लिए बिगात की शमशान भूमि। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM रिगालिन फोंटेन 23 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री गोबिन रिगा जिन्हें गाबी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 10:00 बजे उनके घर लियोशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10:30 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Changement climat, partout n'est pas que ça même. Qui fait? Parce que la vie tout le monde dans tout pays affecté par la sécheresse, par bonne tempête, par bonne baisse production alimentaire. Et un pays qui est plus vulnérable que les autres. Maurice, pour faire tonne sur la voie ensemble avec ben les autres pays comme nous, de COP31, qui est une conférence internationale au changement climat. La voie Maurice, c'est où la voie? Participe dans la consultation qui ministère de l'Environnement PFR avant de nous soumettre nos positions nationales. Donne-nous l'idée ou proposition, l'osamane l'adresse là. menv@govamu.org et COP31 proposals2026@gmail.com Ou pour gagner plus renseignements, le site internet et le VA qui passe Facebook officiel ministère de l'Environnement. Date limite 4 et 30, le 6
2: septembre 2026. This is Radio Mauritius.
3: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
4: सोमवार 24 अगस्त को श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में कॉटेज राजपूत सभा शाखा नंबर 20 महायज्ञ का आयोजन कर रहा है, जो होगी शाम के 4:00 बजे राजपूत भवन भारती रोड कॉटेज में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिटेन की महारानी बनी हमारी लाडली किम्बर्ली लेको देबियो पिएना। साइकिलिंग की महारानी ने ब्रिटेन टू टू डे ग्रैंड ब्रिटेन जीता। आजे इंश्योरेंस सुडाल के साथ किम्बर्ली चैंपियन बनी। पांचवें और आखिरी चरण में किम ने अपना पहला स्थान बचाए रखा। हिस्ट्री मेड, किम्बर्ली पहली साइकिलिस्ट है मॉरिशस से ब्रिटेन टू जीतने वाली। बधाई हो चैंपियन किम्बर्ली को। हैट्स ऑफ मॉरिशस का सलाम ब्रिटेन की महारानी किम्बर्ली को। सीजन की शुरुआत एक ड्रॉ के साथ, एक पहला अंक लिवरपूल के लिए। न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में जाकर ड्रॉ करना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, पर लिवरपूल की टीम में काम बाकी है। इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में पेनाल्टी पर ज़ोबोस्लाई ने लिवरपूल को बचाया। न्यूकासल यूनाइटेड 2 लिवरपूल 2। मैच का पहला गोल इलांगा ने स्कोर किया। फर्स्ट हाफ में द मैगपाइज 1-0 से आगे थे। फिर सेकंड हाफ में कोडी गाकपो ने इक्वलाइज किया, पर तुरंत विलॉक ने न्यूकासल यूनाइटेड को आगे भेजा। फिर जो होना था वही हुआ। नए खिलाड़ी म्यूनोस पर पेनाल्टी और ज़ोबोस्लाई का गोल। हिसाब बराबर।

0: अंदोनी इराओला का पहला प्रीमियर लीग मैच लिवरपूल के साथ और पहली कमाई, पहला अंक, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, कुछ तो मिला, हार से बचने का हल मिल पाया लिवरपूल को। एस्टन विला के लिए दर्दनाक शुरुआत, 4-0 से ब्राइटन ने एस्टन विला को चकनाचूर किया। लिंडेलोफ का ओन गोल, हिशलवुड का डबल, ब्राइटन के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। ब्राइटन लीग में टॉप हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए कमबैक विन, बोर्नमुथ के खिलाफ 84वें मिनट तक सिटी 1-0 से हार रही थी, पर जाकर माग्वे और वाजोल मसीहा बने दोनों गोल चर्की के पास पर। बोर्नमुथ का गोल तावेनी ने स्कोर किया। सो वी कैन रैप अप आर्सेनल की जीत, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर की हार, लिवरपूल का ड्रॉ मैच और ब्राइटन बना लीडर। आज लंदन डर्बी, फुलहम वर्सेस चेल्सी। एस्टन विला की टीम में ओली वाटकिंस नहीं था, शायद वो जाने वाला है, कोच एमेरी ने बताया। प्रश्न वाटकिंस से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। खबर है अल हिलाल उसे साइन करने वाला है। इंग्लैंड से दूर टर्की में मोहम्मद सलाह ने अपने नए क्लब ट्राबजोनस्पोर के लिए 2 गोल स्कोर किया। उसकी टीम ने इस्तांबुल बसाकशहीर को 2-1 से हराया। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन ने बर्नली को 3-1 से जलाया। इधर स्पेन के ला लीगा में बम्बारी बार्सिलोना की ओर से 5-0 से एल्चे को पछाड़ा। राफीना का डबल, लोपेज का डबल, अदियेमी का 1 गोल। एथलेटिको मैड्रिड का ड्रॉ मैच 2-2 विलारियल के खिलाफ। रिताफे ने रेसिंग सांतांडर को 1-0 से हराया। इटली के सेरी आ में टोरिनो 1 एसी मिलान 2, अटलांटा 2 सासुलो 1, वेनेजिया 0 लेचे 2, फ्रोजिनोने 0 यूवेंटुस 1। फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सैं जर्मेन के लिए पहले मैच में ही फेरान टोरेस का डबल, पर पेरिस सैं जर्मेन ने मैच ड्रॉ किया 2-2 रेन के खिलाफ। एंजे 0 लील 2, ले हावर 0 मोनाको 1। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में डच ग्रैंड प्री में लैंडो नॉरिस की जीत हुई, ये उसकी लगातार दूसरी जीत है। क्रिकेट में श्रीलंका वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन, भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है। पहले दिन 300 रन बना चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 117 रन बनाकर आउट हुआ। शुभमन गिल भी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर बधाई किम्बर्ले को, ग्रेट ब्रिटेन 2 जीतकर उसने मॉरिशस का नाम रोशन किया। गर्व है किम्बर्ले पर और ऐसे ही कहेंगे, आले मोरिस नाम रोशन किया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ब्रावो किम्बर्ले। नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। रोशबुर्न के आसपास के इलाके रोशबुर्न एवेन्यू, नियो एवेन्यू, वारियो एवेन्यू और एवेन्यू प्लूटो के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 26 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस।
4: रेडियो मॉरिशस।
5: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

7:06 हुए हैं दोस्तों, नमस्कार। आप सबको एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। जी हाँ, आज सोमवार 24 अगस्त 2024 सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोगों के नाम, दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और इस सप्ताह का पहला दिन भी आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ दिल में शुक्रिया रखिए, चेहरे पर मुस्कान सजाइए

0: कल की फिक्रों को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें याद दिलाती है कि कहानी अभी बाकी है दोस्तों, और आज का दिन अपने अंदाज में खास बनाया जा सकता है। जी हाँ, उम्मीद रखिए। और सबसे पहले चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर शांति मुहावीर जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: थक जाना गलत नहीं होता है। हर मजबूत व्यक्ति कभी न कभी टूटता है। हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश में कई लोग भीतर से खाली हो जाते हैं। आराम करना कमजोरी नहीं, खुद को संभालने का अवसर है। रुकना भी यात्रा का ही हिस्सा है।

या दोस्तों, 7:15 बज चुके हैं और आज चलिए बात करते हैं फिल्म अमरदीप की, जो 1958 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश राव ने किया था और इसमें देवानंद, विजयंतीमाला और रजनी जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से कहानी में जान डाल दी। इसी फिल्म से लिया गया हम एक गाना चलाएंगे, लेकिन इससे पहले बस इतना जानिए कि फिल्म की कहानी प्रेम, रिश्तों और जज्बातों के इर्द गिर्द घूमती है। और इस उस दौर की फिल्मों की खासियत थी कि कहानी के साथ साथ उनके गीत भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेते थे और अमरदीप भी अपने मधुर संगीत को और खूबसूरत अदाकारी के लिए याद की जाती है। तो आइए इसी सुनहरे दौर की इस खूबसूरत फिल्म से जुड़ा एक मधुर गीत सुनते हैं।

चाहे तो जान ले लो, जी हाँ आप है मालिक अपनी ज़िंदगी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, 7:26 हुए हैं और हम आपको सुनाने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम

और 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी राशि प्रोग्राम। जी हाँ, और आप सुनेंगे 8:50 पर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर कार्यक्रम। 9 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद नीतू शाह प्रस्तुत करेगी आज की चर्चा प्रोग्राम। 10 बजे भक्ति धारा रोशनी की प्रस्तुति में, और 11 बजे संक्षिप्त समाचार समाचारों के बाद सायदा सुबाई के साथ उर्दू प्रोग्राम शाम में फरोजन, मराठी प्रोग्राम मिसेज दरमिया के साथ दोपहर दिन के 12 बजे। जी हाँ,

बढ़ते हैं आगे और मराठी प्रोग्राम के बाद। जी हाँ, मराठी प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे आरएससी द्वारा तमिल प्रोग्राम रत्ना प्रस्तुत करेगी पौने दो गुजराती प्रोग्राम। जी हाँ, रंगारंग 2 से 2:30 बजे तक हाई चाइनीज़ प्रोग्राम और आपकी पसंद प्रोग्राम आप सुनेंगे रत्ना के साथ 2:30 से 4 बजे तक। और 4 बजे भूलिएगा नहीं, आप सुन पाएंगे प्रकाश कार्यक्रम। राजेंद्र के साथ 4:15 बजे तेलुगु प्रोग्राम, 5:30 बजे जी हाँ बच्चों का कार्यक्रम आप सुनेंगे, 6 बजे जिनके साथ चाइनीज़ प्रोग्राम, जी नहीं 6 बजे सब समाचारों समाचारों के बाद चाइनीज़ प्रोग्राम, जिनकी प्रस्तुति में पुवाना प्रस्तुत करेगी तमिल प्रोग्राम शाम के 7 से 7:30 बजे तक। और 7:30 वंदना के साथ स्वराला वेदिका प्रोग्राम, 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम मराठी प्रोग्राम नितिन बापू प्रस्तुत करेगा, देवीना द्वारा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रात के 8:10 पर, अभिनाज प्रस्तुत करेगी महफिली शब प्रोग्राम रात के 8:40, रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का आप सुनेंगे प्रताप द्वारा 11 बजे तक, और रात के 11 बजे गिनीशा के साथ आप सुनेंगे सुनहरे पल प्रोग्राम, और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

7:45 हुए हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं पुरानी पीढ़ी के बारे में, पुरानी पीढ़ी की मेहनत, उनके संस्कार और उनके सेक ही आज के हमारे परिणाम की बुनियाद है दोस्तों। उन्होंने कम साधनों में भी हौसला नहीं छोड़ा, मेहनत को अपना साथी बनाया और संस्कारों को अपनी पहचान। आज हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी मेहनत और दुआओं का हिस्सा ज़रूर है। इसलिए अपनी सफलता को साथ उनके योगदान को याद रखना भी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों।

7:42 हुए हैं। चलिए अमीरी और गरीबी के बारे में एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं। जी हाँ, एक शहर में दो पड़ोसी रहते थे, एक बहुत अमीर और दूसरा गरीब। अमीर के घर में हर चीज़ थी, लेकिन अक्सर उसके चेहरे पर सुकून नहीं होता था। गरीब के पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन वो हर रोज़ अपने छोटे से घर में परिवार के साथ हंसकर खाना खाता था। एक दिन अमीर आदमी ने गरीब से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? गरीब मुस्कुराया और बोला, खुशी चीज़ों की गिनती से नहीं, दिल के सुकून से मिलते हैं। उस दिन अमीर आदमी को समझ आया कि दौलत ज़िंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन सुकून, अपनापन और अच्छे संस्कार ही ज़िंदगी को खो

0: 7:51 होने को है दोस्तों। फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में कुछ बातें करती है। जी हाँ, राज कपूर की यादगार फिल्म थी जो ज़िंदगी के रंगों और एक कलाकार के जज्बातों को बहुत खूबसूरती से पेश करती है। फिल्म का गीत ऐ भाई ज़रा देख के चलो आगे भी और पीछे भी हमें एक गहरी बात समझाता है। ज़िंदगी एक सफ़र है जहाँ खुशी और गम दोनों साथ चलते हैं। इस गीत के ज़रिए जैसे ज़िंदगी के मेले में संभल कर चलने, लोगों को समझने और हर मोड़ पर मुस्कुराकर पार करने का संदेश दिया गया है। तो चलिए राज कपूर साहब की इस यादगार फिल्म से जुड़ा ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: अभी अभी तुम गाना गा रहे थे।
2: जी
1: गाना गा रहे थे।
2: जी जी, मगर ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
1: ऐसी गलती रोज होगी।
2: जी
1: जी, ऐसी गलती रोज होगी। आज से तुम क्लाउन, एक जोकर जो गाएगा और हंसाएगा।
2: मैं जोकर?
1: हाँ।
2: आपके यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
1: देखो मेरा नाम साहब नहीं, मेरा नाम महेंद्र है।
2: जी महेंद्र साहब।
1: फिर साहब?
2: नहीं साहब,
1: महेंद्र।
2: महेंद्र साहब।
1: यू आर ए क्लाउड, सिंगिंग क्लाउड।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सुद्रव ले आए।
2: महेंद्र साहब जोकर।
3: सुद्रव ले आए।
2: नमस्ते। आपके लिए। दादा
1: दादा।
2: हाँ,
1: दादा दादा।
3: स्वीदान
2: स्वीदान।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला ले जा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे के भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत कर जाता, सब कोई के नमस्ते या प्रणाम। सबसे आगे हमने देश के बारे में बतियाव जा। स्कूल में नवा शैक्षणिक सप्ताह शुरू भइल, एक सप्ताह हो गल बाटे, पर ग्रेड 11 के छात्र लोग खातिर SC परीक्षा से आगे होला तैयारी के बीच मॉक परीक्षा जोन होल ओका नतीजा चिंता के बारे में बाटी। शिक्षा मंत्रालय के क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ा के मुताबिक 20 गो सरकारी कॉलेज में मॉक परीक्षा करा गल, जेकर कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कमती रहल बाटे। जबकि बात करब जा मैथमेटिक के बारे में, गणित के बारे में, तो खाली 63% यानी कि 37% लयिका इमें पास होल हवंजा। स्थानीय सरकारी पाठशाला यानी स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल के नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखल जाए, जिनकरा प्यार से जैन के नाम से भी आदमी जानत हलन जा। स्थानीय के ई बेटा और MMM के प्रमुख नेता में शुमार जयन कतारी कई गो मंत्रालय की जिम्मेदारी इस महल्ले रलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके विदेश व्यापार से जुड़ल बातचीत में अपन पहचान बनैले रलन। अब बात एगो दुखद घटना के बारे में। होशबुआ में 7 महीना के एगो लड़का के कथित हत्या के मामला सामने आल बाटे। पुलिस के अनुसार 7 महीना के लड़का जॉन आद्रियानो केलियानो पेरिन अपन कमरा में सुतत रहल, जब ओकर माँ के साथी 30 बरिस के जॉन डैनियल पेरिन घर में आल और कुछ नहीं बोलक और कुछ देर बाद वो घर से निकल गल। लड़का के माँ कमरा में गल पर लड़का हुआ नहीं रहल, ओके खोजल गल और ओके लुगा के एगो ढेर में एगो चादर में बांधल पावल गल। लड़का खूने खून रहल, लतपत रहल खून में, ओकर सांस नहीं चढ़त रहल और ओकर दाहिने जांग पर घाव लगल रहल। घबराहट में माँ पुलिस के जनैलक और पुलिस हुआ आल त देखलक कि लड़का के प्राण चल गल रहल। मौका पर पुलिस डॉक्टर लड़का के मौत की पुष्टि करलक। आर ई मामला में उ माँ के साथी यानी कि जॉन डैनियल पेरिन के पुलिस पकड़ के गल। दूसरा समाचार में

36 मॉरिशस बोले बाते की अप्रैल से जून महीना के बीच मॉरिशस के किसान अपन उपज औसत पहले के तुलना में कमती दाम में बेचले हवन जा सब्जी के दाम में बहुत हाली गिरावट आल जेकर में गाजर के उत्पादक यानी के जो प्लौते हवन जा खेतीहर हवन जा उ लोग के मिले होला कीमत में 54% से जस्ती भारी कमी दर्ज करागल बाटे। हालांकि एकर मतलब ई नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ता के सब्जी सस्ता मिलल बाटे। और आज जलंदी के दिन के 12 बजे से काजिनो डेमोगिस के कुछ कम करवा लोग और लोग के यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के आगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करियन जा करीब 600 कर्मचारी के भविष्य के देख के अनिश्चितता बनल बाटे। कहे कि काजिनो के संभावित टेकओवर खातिर टेंडर प्रक्रिया के बाद उ लोग के अबले आगे के प्रक्रिया के बारे में कोनो स्पष्टीकरण कोनो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलल बाटे। दूसरा देश के समाचार में बंगाल के खाड़ी में उड़ीसा तट के भीरी पनामा के झंडा होला एगो मालवाहक जहाज डूब गल बाटे। जहाज पर 24 आदमी रहल जेकर में से 2 के बचावल गल बाटे जबकि दूसर 22 के अभी खोजल जाता जेकर में भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ देवतवन जा आर ई बचाव काम में उ लोग आगे बढ़े खातिर सब संभव कोशिश करत हुवन जा। ते एकरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ दिल ओका खातिर धन्यवाद। संगे रह अभी 8:04 होल बाटे। मंडी के समाचार सुन उदित लेन मौदालबिया में तीन कोड़ी 16 बरिस के 76 बरिस के श्रीचंदर परमेश्वर जिनका अंजित के नाम से भी आदमी जैसे जानथन जाकर मृत्यु होगल बाटी। इनका अर्थी आज दिन के 2 बजे इनका घर ही मौदालबिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टू दिया 2 PM आवनी फ्लोरियो प्लेजेंस रोजिल में दू कोड़ी 3 बरिस के 43 बरिस के कुमारी तिलंजलि दुबराज इनकरा तिलन के नाम से वे आदमी जैसे जहाँते हैं जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज फजर के 10:00 आधा इनकर माँ राजकुमारी दुबराज के घरे प्लेजेंस रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कॉलोनी के शमशान भूमि ले जावल जाके मिशन टुडे एट 10:30 AM आलिता मारे बॉम्बू में 89 बरिस के 4 कोड़ी 9 बरिस के श्री कृष्णा कहानू जिनकरा बोलुम पियोलामिक के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर पत्नी श्रीमती तारा कहानू के घर बॉम्बू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टू डेट 1 PM राय रोड कौचिमलितिया में टैक्सी स्टैंड के भीरी राय रोड कौचिमलितिया में 93 बरिस के 4 कोड़ी 13 बरिस के श्री रोहित पांचू जो आगे मुकाफला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काम करत रहन के मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज 12:00 इनकर बेटा सुगा पांचू के घर कौचिमलितिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर विल में कौचिमलितिया के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टू डेट 12:30 Avenue Péadrix, Morcellement sans souci, Montagne Blanche Mai. छिहत्तर बरिस के 3 कोड़ी 16 बरिस के श्रीमती मीराबाई ढोंदी जिन पैदाश नाम हुरपा जिनकरा सेवन के नाम से वेद में जिस जहाँ तक जाके मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज 12:00 इनकर बेटा सेवराम ढोंदी के घरे मोताई ब्लॉक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डेट 12:30 केवल नगर बेलरीव में 55 बरिस के 2 कोड़ी 15 बरिस के श्रीमती देजी रानी सिबन जिनकरा आरती के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ तक जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज फजीर के 10:00 आधा इनकर माँ चिंता सिबालक के घरे बेलगीब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्वाजिलो ओलिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डेट 12:10 AM रुसियज अल्फ्रेड बोबासेमें 69 साल के 3 कोड़ी 9 बरिस के श्री आनंदा नरसू जिनकरा आनंदा के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज फजर के 10:00 लाशा पहला उदौ दिलियन

0: सुबह के 8:20 होने को है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह का नजराना प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। मैं उषा कौर यहाँ पर और साथ निभाऊंगी 9 बजे तक। जी हाँ, आइए जानते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसे रहेगा। आपका काम, परिवार, धन और रिश्ते, और कौन सा होगा आपका शुभ अंक और शुभ रंग।
1: आपकी राशि रेडियो मशीन पर। एरीज, मेष राशि।
0: इस सप्ताह नई ऊर्जा और नए काम की शुरुआत का योग है। काम में आपकी मेहनत नजर आएगी। किसी पुराने फैसले को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। रिश्ते में बातचीत को महत्व दें। लकी नंबर है 9। लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: आपके लिए सप्ताह आत्मविश्वास और प्रगति का संकेत दे रहा है। काम के क्षेत्र में अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। दोस्तों या परिवार से जुड़ी कोई बात आपको खुशी दे सकती है। लकी नंबर है 6। लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह सोच विचार और बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। काम से जुड़ी कोई नई दिशा सामने आ सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और कागजी काम ध्यान से करें। लकी नंबर है 5। लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: परिवार और अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। काम में सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनाओं में आकर फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। लकी नंबर है 2। लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेओ, सिंह राशि।
0: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो सकता है। आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी। किसी नए विचार को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। लकी नंबर है 1। लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो, कन्या राशि।
0: कन्या राशि आपके लिए ये सप्ताह खास रह सकता है। काम, योजना और फैसलों में स्पष्टता बढ़ेगी। किसी पुराने उलझन का हल मिल सकता है। रिश्ते में दिल की बात शांत तरीके से कहना फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है 5। लकी कलर

0: है हरा रंग।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: तुला राशि इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। काम और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच समय बांटने की कोशिश करें। नए अनुभव और बदलाव आपके लिए अच्छे अवसर ला सकते हैं। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: वृश्चिक राशि, आप किसी अपने जुनून या रचनात्मक काम की तरफ दोबारा खींच सकते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन इस सप्ताह दिल की खुशी भी आपके लिए मायने रखेगी। नकारात्मक सोच से दूर रखें। शुभ अंक है 8 और लकी नंबर, लकी कलर है मरून।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: धनु राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़ी बातें इस हफ्ते महत्वपूर्ण रहेगी। किसी यात्रा या नए अनुभव की योजना बन सकती है। आर्थिक फैसलों में थोड़ी सावधानी और सोच विचार जरूरी है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मेहनत और अनुशासन आपको आगे ले जाएंगे। काम से जुड़ी कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ सम्मान भी मिल सकता है। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आर्थिक मामलों को लेकर सोच विचार का समय है। किसी नए विचार या योजना पर काम करने से पहले पूरी जानकारी लें। अपने करीबी लोगों के साथ खुलकर बात करना मन को सुकून देगा। लकी नंबर है 4, लकी कलर है आसमानी रंग।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: ये हफ्ता अंदर से बदलाव महसूस करने का हो सकता है। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। रिश्ते में भरोसा और समझदारी बनाए रखें। लकी नंबर है 7, लकी कलर है बैगनी।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मिशन। रेडियो मिशन
0: और अंत में एक छोटी सी बात, सितारे सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का असली फैसला हमारे हाथ में है दोस्तों। मेहनत, अच्छी सोच और अपनों का साथ हमेशा सबसे बड़ा शुभ संकेत है। आप सभी को नए सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

नया मौका देती है खुद को महसूस करने का, कभी हवाओं की खुशबू में, कभी किसी अपने की मुस्कुराहट में। बस ज़रूरत है तो इस खूबसूरत पल को खुलकर जीने की। तो आज के इस अलबेला मौसम के साथ दिल में रखिए एक प्यारी सी तमन्ना और चलिए जिंदगी के इस नए दिन का खूबसूरत स्वागत करते हैं। चलिए चंद खूबसूरत 80s के गाने आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं आरती मुखर्जी की आवाज़ में। अगला गाना सुनिए।

0: 8:50 हुए हैं दोस्तों, चलिए सुनते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बात कर अब जा, विश्व फोटोग्राफी दिवस जोन की हर 19 अगस्त के मनावल जाला। विश्व फोटोग्राफी दिवस के उद्देश्य दुनिया भर के फोटोग्राफर लोग के एकजुट करे के हा। साल 2009 में ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोट्स की द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना के शुरुआत हो रहा। 19 अगस्त 2010 के विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पहला वैश्विक ऑनलाइन गैलरी के आयोजन हो रहा। फोटोग्राफी शब्द के उत्पत्ति ग्रीक शब्द फोटोस यानी प्रकाश और ग्राफिन यानी खींचे के से मिल के होलबा। 1939 में वैज्ञानिक सर जॉन हशरेल पहला हला इस शब्द के इस्तेमाल कर ले रलन, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई जैकोस और मेंडे फोटो तत्व खोजे के दावा कर ले रलन सा। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस खोज ले रलन। साल 1834 में टेल बॉट लाइट सेंसिटिव पेपर के इन्वेंशन ओकर आविष्कार कर ले रलन, जेकर से खींचल फोटो के परमानेंट रूप में रखे के सुविधा हासिल होल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो 7 जनवरी 1839 के फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस खातिर एगो रिपोर्ट तैयार कर ले रलन। फ्रांसीसी सरकार ई प्रोसेस रिपोर्ट किन के ओके आम जनता तक पहुँचावे के घोषणा करलन 19 अगस्त 1939 के। यही कारण है कि 19 अगस्त के विश्व फोटोग्राफी दिवस मनावल जाला। बोलल जाला कि अमेरिका के फोटो प्रेमी रॉबर्ट कॉर्नेलियस ऐसन हस्ती रलन जे दुनिया के पहला सेल्फी क्लिक कर ले रलन। 1839 में ऊ ई करके

इतिहास रच दिलन। हाँ, लेकिन उ ई नहीं सोच ले रलन कि जोन क्लिक उ करलन आगे चल के एके सेल्फी नाम देवल जाए। ई तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में उपलब्ध बा। वैज्ञानिक तरक्की के संगे संगे इंसान अपन साधन बढ़ावे के शुरू कर लग और कितने आविष्कार इन्वेंशंस के साथ साथ आर्टिफिशियल लेंस भी एवौते कर लग। यही कोशिश के कामयाबी होला दिन के हमने फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनावीला जा। फोटोग्राफी के आविष्कार से जहां दुनिया के एक दूसरे के करीब लावे के कोशिश कर लगल हुए एक दूजे के जाने के ओकर संस्कृति के समझे के और इतिहास के समृद्ध बनावे में भी ये बहुत बड़ा सहायक रहल बा। आज अगर हमने घर बैठल दुनिया के सुंदर सुंदर हर कोना के तस्वीर देखिला जा तुरंत ही तो ये फोटोग्राफी के बदौलत ही है। फोटोग्राफी धरोहर के एगो बेमिसाल उदाहरण है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: 55 मिनट हुए हैं दोस्तों आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। सुना नयन का गाया हुआ ये भोजपुरी गीत आप सुने और इसके साथ झूमिए। 8 बजे 9 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद आपकी चर्चा कार्यक्रम, आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा के साथ आप सुन पाएंगे और उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।
1: अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला

0: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता, नमस्कार।
2: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम देश के बारे में बात करती हैं। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए ऐसी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंता बढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जयन के नाम से भी जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जयन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार में जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। अब बात एक दुखद घटना के बारे में करते हैं। अगोशबा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। अगोशबा में इसमें 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या के इस मामले में बताया गया है कि बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस के अनुसार 7 महीने का बच्चा जो आगियानो के लियानो पेहिन अपने कमरे में सो रहा था, जब उसकी माँ के साथ ही 30 वर्षीय जो डैनियल पेहिन घर में आए। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद माँ बच्चे को देखने कमरे में गई, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। काफ़ी तलाश करने के बाद उन्हें कपड़ों के ढेर के बीच एक चादर गांठ लगी हुई मिली। चादर खोलने पर बच्चा उसके अंदर खून से लथपथ हालत में मिला। वह सांस नहीं ले रहा था और उसकी दाहिनी जांग पर कट का निशान भी दिखाई दिया। घबराई हुई माँ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा संदेह है कि उनके साथी जॉन डैनियल पेरिन ने उनके बच्चे की हत्या की है। मौके पर पहुंचे पुलिस डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मामले की पुलिस जांच कर रही है। और स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून महीने के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसत पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची है। सब्जियों के दामों में गिरावट खास तौर पर तेज रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। हालांकि इसका मतलब

0: ये नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियां सस्ती मिली। और आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिस के कर्मचारी और उनके यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। करीब 600 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कैसिनो की संभावित टेक ओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद से उन्हें अब तक आगे की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। और सरकार डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर रही है और सरकारी पोर्टल तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइट को एक ही स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी है। 21 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक, एकीकृत और नागरिक केंद्रित बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में 19 जून से अब तक डूबने की घटनाओं में 301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की एक मंत्री ने बताया कि पहले साल की तुलना में मौतों में हुई इस तेज बढ़ोतरी का संबंध लंबे समय से जारी हीट वेव से है। फ्रांस के खेल और युवा मंत्री मारीना फेरारी ने बताया कि मौतों का ये आंकड़ा 2025 की तुलना में 14% अधिक है और इससे उन्होंने एक दुखद आंकड़ा बताया है। फ्रांस, स्पेन और इटली इन दिनों भीषण गर्मी की लहरों की चपेट में है। इन गर्मी की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी है, जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। कई जानलेवा हादसे ऐसी जगहों पर हुई है जहां तैराकी के लिए अनुमति नहीं है या जहां निगरानी की व्यवस्था भी नहीं है। और अंत में हम आपको याद दिला देते हैं कि इस बुलेटिन के तुरंत बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप अधिक और सुन पाएंगे। और आज के लिए विषय है घरेलू बागवानी यानी कि हाउस होल्ड गार्डनिंग। और आज के लिए मुख्य मेहमान हैं सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर संजय सेम्बू और प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगी नीतू शाह। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आप सभी को नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC Radio.

0: नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में सब कोई के स्वागत बाटे। हाँ, हमने हमेशा हद लेंदी के हमने बात करी लाजा खेती बाड़ी के बारे में, और कई जना हमने से भेटा लन जा बोले लन जा काहे ई पर नहीं बतियाब सा हौ तो पिकवा पर नहीं बतियाब। तो आज हमने के ढेर मांग मिलल बाटे, ढेर रिक्वेस्ट मिलल बाटे, फिर से हमने बतियाईली जा एकर बारे में। आज तनि सुन और देताय पर हमने बतियाब जा, और ऊ है घरेलू जन बगीचा, माने कि हाउस होल्ड गार्डनिंग। कैसे तू अपन घरे सकबा एगो बगीचा स्थापित करे, कौन ची चाहेला करे के कैसे करबा, कौन कौन मदद मिलेला, कौन कौन कृत्या बा, इस सब के बारे में जस्ती जानकारी देवे खातिर हमने के मेहमान हवा फिरों से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू फागे से। भाई शंभू प्रणाम नमस्ते तोहरा।
1: नमस्ते।
0: आज देखला कितना मांग मिलल बाटे, रिक्वेस्ट मिलल बाटे है टॉपिक पर बतियाए के हाउस होल्ड गार्डनिंग। जे सोचब त कई जना करेलन, हमेशा से करते आवत हवन, तनि सुन कुछ न कुछ प्लॉटेलन, रुपाई करेलन अपन घरे उ सब। पर आज एकर स्थापित करे से आगे ओकर जो नींव जो फाउंडेशन है कौन ची है हाउस होल्ड गार्डनिंग के।
1: अच्छा, घर पे आज कोई भी खोजी एगो रुपाई करे के, तो हमार देखे में एगो चीज सबसे महत्वपूर्ण बा, वो है कंपोस्ट।
0: अच्छा,
1: काहे कि तोहर आंगन भी हो, यानी कि एगो टुकड़ा जमीन बा घर लग घर के पास, तो वो माटी के उपजाऊ रखे खातिन, तो चाहेला ना माचे उगानी को कमें डाले के, तो कंपोस्ट तक कामे आए। और फिर ढेर कोई ऐसा है जो जेकर पास गंदा एगो टुकड़ा जमीन नहीं बा, वो एगो ऐसा जगह में रहत आ सकेला, फ्लैट में रहत हुई, अपार्टमेंट में रहत हुई, तो वो कंटेनर गार्डनिंग करत हुई, तो अपन बालकों में या ओकर जो छत बा ओकर पर रूफ कर ओकर रूफ गार्डनिंग करत हुई। तो अब जब ऐसा रोपाई कर बा, तो ऊ तो परि थोड़ा जो छोटा मोटा कंटेनर बा रेसिपियों बा ओकर में माटी डाल के रोपे के ना, तो वो माटी में जो न्यूट्रिया बा वो तो समाप्त हो जाए, गते गते गंदा माटी में जो जैसे बोला जोड़ बाते वो नहीं रही, तो जोड़वा आने खातिर ओकर में परी कंपोस्ट ओकर में आए या माचे ऑर्गेनिक ओकर में डाले के, तो कंपोस्ट हमारे देखे में सबसे महत्वपूर्ण बा। फिर बा पानी भी, तो वो तो सबको जाने ला कि चला सिंचाई वगैरह करे के, लेकिन ना जो कंपोस्ट नहीं रही तो माटी बढ़िया नहीं रही, और माटी में जो जोड़ रही न्यूट्रिया रही वो में कमी आए, तो नहीं तो में नहीं सब निमन से आए पौधा जो निमन से डेवलप नहीं हुई।
0: तो जब कंपोस्ट के बात करत हुआ, तो एगो बढ़िया कंपोस्ट तैयार करे खातिर कौन ची चाहेला, ओकर से आगे जितना जना हमने संगे जुड़ल हवन जे कुछ पूछे के बाते, हमने के नंबर है 402-85-85-405-08-08-05। और जो टॉपिक पर हमने बतिया था ऐसा वही पर कोनो प्रश्न रही तब पूछा। तो हाँ भाई शंभू, एगो बढ़िया कंपोस्ट तैयार करे खातिर हमेशा बोले ला जो हमने छिलकाओ सब इस्तेमाल करी ला जा नहीं चाहेला फेंके के, तो ये सब के अलावा कौन ची चाहेला करे के कंपोस्ट तैयार करे खातिर।
1: अच्छा, तो रसोई घर में से जितना जो छिलका वगैरह मिलेला जो माचे ऑर्गेनिक रहेला, तो ओकर से सकब सा कंपोस्ट बनाए ओके कंपोस्ट बिन में डाल दी, लेकिन ये सब जो रसोई घर से जो छिलका सब रहेला जो वेस्ट रहेला ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वो गनला ओकर में पानी ढेर है, और वो जस्ती ओकर में गनला आजोत नाइट्रोजन जस्ती है, ताजे ओकरे खाली कंपोस्टे करते जब सर दिखबा जे कंपोस्ट बिन में डाल देब, तो रोज़ अगर ऑर्गेनिक वेस्ट किचन से ओकर में डलते जब तो दिखबा हमेशा भिंजल हुए रहेला
0: जी,
1: और बिन में जब दिखबा तो भिंजल हुए रहेला, ओके घुमेबू करबा तो दिखबा भिंजल हुए रहेला, और क्योंकि रोज़ भी रोज़ तू रसोई घर में से एगो चीज़ आन के कंपोस्ट बिन में डालत हुआ, तो अगर ना ओके चना सरे के ओके समय भी दे के ना, तब रोज ओकर में डलते हुआ तो दिखबा तो जस्ती समय भी लेवेला, तो हम बोलती पहला तो रसोई घर का दू गो कंपोस्ट बिन रखे के, ताकि जब एगो थोड़ा सुन भर गल तो दूसर में जब भरब तो एगो आके ओके समय मिली सरे
0: तैयार हो के।
1: हाँ, अब लेकिन केवल रसोई घर के ओकर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रयोग करब जैसे बनी तो भिंजल धीरे रहेला समय लेवेला, तो इदेआल में जैसे पूछल तो चाहेला ओकर में तन सुन सूखा चीज भी डाले के, सूखा ऑर्गेनिक वे जो सूखल बातें, तो वो कहाँ से आए, वो गनला आंगन

0: दोहर हुई तो आजे पत्ता बाते
1: सूखल
0: सूखल
1: पत्ता
0: हाँ या फिर डाली बा कुछ सूखल कोनो चीजन सूखल बाते तो
1: लकड़ी
0: लकड़ी भी हाँ लेकिन मोटा मोटा
1: कौन
0: लकड़ी
1: कौन
0: ने
1: हाँ
0: बहुत समय ले हाँ आजे लकड़ी हुई तो थोड़ा परी हो गए छोटा छोटा तोड़
1: पीती
0: के
1: पीती जन रहना
0: हाँ
1: चाहो सब हाँ
0: भैंजी जैसे बोला सा एने उन्हें तोड़ के या फिर ओकर ओकर से कैसे बोला सा लकड़ी के चिप्स बना के छोटा छोटा तब ओकर में सब डाल दे लेकिन मोटा लकड़ी बहुत समय ले सूखल लकड़ी चला रह के तब बुझ बुझ तो कर तोड़ के तब सब ओकर में डाल दे तब लगभग अब एगो नीमन कोपोज बनाए खातिर गनला आजे वॉल्यूम से आज देखब तो आजे एक पहिया किचन वेस्ट डालनी तो दू पहिया लेके जो सूखल बा उ डाल दिया ई सबसे निमन रही
1: एगो रेशो का
0: हाँ एगो
1: रेशो
0: रोश
1: का
0: एगो रेशो कहते बा लाने के हाउ जो सूखल बा ओकर में बोलब सा कार्बन ज़्यादा बा और जो गन्ना ताज़ा बा जो आई किचन से आवता रसोई घर से आवता ओकर में नाइट्रोजन ज़्यादा बा तो दू गो वॉल्यूम जो सूखल बा और एक गो वॉल्यूम जो नहीं सूखल बा गन्ना जो
1: कंचावे बा
0: हाँ
1: बेले
0: हर हर
1: हरा
0: हरियर
1: बा
0: बा हाँ तो वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से देखा सर तो रेशियो होगा कार्बन के दू गो और नाइट्रोजन के एक गो ये इडियाल रही लेकिन घर पे निश्चय नहीं है कि गन्ना इडियाल ही चला रहे कि अब नए हुई उतना
1: एक
0: सूखल
1: बालों सहिला हुई
0: हाँ
1: के
0: नए हुई आज उतना सूखल जितना भी हुई लेकिन लेकिन डाल लिया एक
1: जी
0: वॉल्यूम एक ही एक होल तो वो तो चंगा नहीं के कॉम्पोज बनाए के ना
1: हाँ
0: तो उसे बन जाए लेकिन आजे रोज़ ओकर में डल्ले जेबा कॉम्पोज में डल्ले जेबा डल्ले जेबा डल्ले जेबा तो के सरे के बहुत समय ले एक दिन अच्छा रहा दू गो कॉम्पोज बिन रहत एगो में जब भरते जेबा तब एगो कैसे बनी एगो वॉल्यूम एक पहिया रसोई घर के तब दू गो पहिया सूखल एक पहिया रसोई घर के दू गो पहिया सूखल ऐसे डल्ले जाब सब तो ज़्यादा अच्छा रहत
1: जी तो हमने के बतावा जो कंपोस्ट घरे तैयार होला और जो हमने किनी लासा जो बैक द सॉइल उस सब किनी लासा वो काहे जस्ती अच्छा बाटे
0: अच्छा एक से आगे और एगो चीज जन कॉम्पोज बनाब सा घरी जब सर जला निमन से तो ओकर दुर्गंध नहीं रहेला
1: अच्छा
0: हाँ वो अच्छा महकेला हाथ
1: कितना
0: में
1: बखत ले वेला है वो कंपोस्ट तैयार हो के
0: आजे तो लगे कॉम्पोज भी ना 3 महीना के अंदर ही सकी हो जाए निमन से सर जाए हाँ तब सगवा कॉम्पोज बिन में से निकाल के थोड़ा बाहर छोड़ दे तब ओके सगवा तामीने भी कर दे या नहीं तामीने करबा कोई बात नहीं बाते अब कॉम्पोज बिन तो अनेक प्रकार के बा एक बार जैसे वो वेस्ट बिन कहते रहला रखल रहला एक आध गुहा तुनो की तरह गन्ना लटकावल है एगो लेविए में तो ओके गन्ना उले करबा भर के
1: और
0: जैसे
1: मुझे
0: उले
1: नहीं हुई
0: करबा
1: तो सबक अपन अपन
0: हाँ अपन
1: तरीके से
0: से
1: तैयार
0: और
1: करे
0: जैसे
1: के
0: वो
1: वो
0: वेस्ट बिन बा तो कमें तक ढके काटे देसा कर अथी बाना कुवे अच्छे
1: रे बाबा
0: बातें तो
1: हाँ
0: नीचे के वो पेंदीवा जमा छा निकाल दे के जमें ओके कोंताक माटी पर रही माटी माटी में कोंताक रही ऐसे जब पहला चीज जब डल कर में तब माटी में कोंताक बा अब जब कैसे बोलनी रेशो 2:1 गन्ना सूखा है जोन जोन ग्रीन बा जोन हरियल बा तब जोन सूखल
1: सुखल
0: बा
1: बा
0: तो हमेशा जब ऐसे कर दे बा टेंशन माटी ऊपर से फेंक दिया
1: हाँ तो खाली चाहेला तेने सुन माटी हो जो जो रसोई की चीज हमने इस्तेमाल करे थे सब जो सुखल पता उस सब लकड़ी उस सब हाँ ये
0: हाँ
1: चाहेला
0: हाँ हमेशा जोन ऑर्गेनिक बा
1: ऑर्गेनिक बातें
0: वो
1: जी
0: अब जोन प्रश्न पूछला काहे घरे के जोन बनावल कॉम्पोस्ट वो जोन सकेला जोन किनत हुए बा
1: हाँ जो बैक सॉइल
0: टॉप
1: हाँ
0: सॉइल जोन किनेला जोन साक में भरल बा वो सकेला हम घरे के जोन ऐसे निमन बना तो जब टॉप सॉइल खरीदा तो हो तब बोले के तहत टॉप सॉइल
1: वो तो कंपोस्ट में नियम बात है ना
0: तो वही
1: वो
0: खातिन
1: तो सेम प्रक्रिया जो तरीका
0: नहीं नहीं नहीं
1: बाते
0: आज कोई कॉम्पोज किनत हुए
1: हाँ
0: वो अलग वो दूसरा चीज़ है एगो स्तौदा सब रहला कॉम्पोज खरीदा था वो अच्छा बा अब आज कहीं से माटी खरीदा था जैसे बोला सर टॉप सोयल तो एक में तो एगो क्वेश्चन मार्क रहेला ना कि हाँ टॉप सोयल बा कहाँ से आल बा उस अकेला टॉप सोयल हुई लेकिन निर्भर करेला ओकर क्वालिटी निर्भर करेला कहाँ से वो टॉप सोयल निकालल बा
1: जी
0: आज ऐसे नहीं कोई जगह में से हो टॉप सोयल बा निकालल बा जहाँ पर कुछ निमन से जमती नहीं रहा तो यानी कि तो टॉप सोयल अपने आप में गन्ला ओकर में कमी बातें अब तू खरीदा तो तू नहीं जानते ना कहाँ के है ओकर ओरिजिन कैसे है अब तू लेके वही लेके गन्ला अपन पो में डलबा या अपन आंगन में लेके डलबा

0: ताने शिष्य ने बाकी जन खरीद ल वो निमन रहल घरे जन तू तैयार कर ल तू तो जाना तो न घरे से हो किचन वेस्ट दल हो आंगन में के जन पत्ता वगैरह बा सब मिला के बनल बा तू जाना तो उ तो
1: हाँ
0: निमन क्वालिटी के रही उ खातिन कि तो हो अनुभव बात कैसे तैयारी होल बा तो खातिन घरे के कंपोस्ट निमन बा लेकिन आजे कोई तोरा हो गाँव चुआ सकी दे तोरा हो पीस ऑफ माइंड सकी दे कि देखा जहाँ से हम जो टॉप सोयल वा हम निकले हैं निमन बा या फिर हो टॉप सोयल में हम अपन से कोनो फीमिया कोनो कंपोस्ट मिला दे ले हैं
1: जी
0: ता अच्छा बात है
1: तो उमे कोनो कौन कौन कौन चीज रहेला हो जो दालत हो कंपोस्ट वा बनाए खातिर कौन चीज रहेला बैक्टीरिया रहेला कौन चीज होबा उमे
0: दुगो चीज कंपोस्ट में मिले एक होता जैसे बोला माइक्रोब्स कंपोस्ट में जैसे बोले दुर्गंध नहीं रहेला
1: जी
0: निमन कंपोस्ट में दुर्गंध नहीं रहेला एगो निमन सुगंध मिलेला हाथ में लेकर आए लेकिन महकबा अच्छा मौकेला यही संकेत करेला कि कंपोस्ट में गनला निमन मिक्रोब बाते आज कंपोस्ट में मारू मिक्रोब रही तो दुर्गंध रही अब निमन मिक्रोब कौन सी है निमन मिक्रोब निमन मिक्रोब कौन सा निमन मिक्रोब ऐसा नहीं चीज है जो माटी में गनला जो माचे उगाने बाप तुरा था लेयर में से जो नाइट्रोजन बा एक आगो मिक्रोब है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेला वो करेला यानी कि डिकम्पोज करेला एक होते गन्ना नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हुए एक आगो दूसरा सोलिबिलाइजिंग भी करेला वगैरह वगैरह ये रहा ये कारण मिक्रोब ऐप होता है अब दूसरा चीज कौन सी मिलेगा जब कंपोस्ट कर ला और कैसे मतलब कार्बन नाइट्रोजन मानो का मैं और ढेर चीज बातें कैसे पोटाशियम भी मिली फॉस्फेट भी मिली तो हम कंपोस्ट में हमने के पौधा के जो रोपाई कर अब सा ओके न्यूट्रिएंट भी मिली तो दो प्रकार के बात तब ये होल कि अब घर पे आज कंपोस्ट कर ला तो तोरा नए परी जाके फर्टिलाइजर खरीदे के
1: जी
0: क्योंकि हो कंपोस्ट में थोड़ा भी बा खाए के लेकिन मिल जाए पौधा के
1: तो ये सब जो बैक्टीरिया जो फंगस वो सब उमे रहेला और लोग के संख्या के बढ़ाए खातिर कौन चीज चाहेला करे
0: हाँ तो अब गनला या तो बगीचा में डाला या तो फिर वो कंटेनर में डाला शुरू में माटी में कंपोस्ट सब मिला के डाल देला अब शुरू में तो कंपोस्ट ओका में बात है यानी कि तनी सुन ओका में तो मिक्रोब आल ना अब आज तू आके सिंचाई करबा सिंचाई ऐसा कर तो कि गनला पच पच माटी हो जाता बाहर में भी या कंटेनर में भी तो वो ठीक नहीं है
1: जी
0: जब पच पच माटी रहेला तो कौन चूला माटी में जो हो आएगा शो हो तब पानी से और जो कनाल आए आशो देना पो सब बा वो सब भर जाला जब भर जाला तो ऑक्सीजन के मात्रा जो बाते कम हो जाला जब कम हो जाला तो जो मिक्रोब अब जब रहा निमन मिक्रोब रहा ना ये लोग एरोबिक माइक्रोब समझ यानी कि ऑक्सीजन लोग के काम रहेला तो जो मिक्रोब निमन बाते वो मिक्रोब जो बा मरे लगेला तो एगो चीज बा जब सिंचाई कर बा तो ठीक से करे के ना कम ना ज्यादा है एगो अब दूसरा चीज वो मिक्रोब के जिए खातिन ओकरे भी तो अब ऑर्गेनिक मात्रा चाहेला अब जब कंपोस्ट की तैयारी कर ले हो तब एक तब कंपोस्ट डाल देला तो कहना अब दूसरा को जब रोपाई करबा या फिर देखो ऐसा ना कोई चीज़ रोप ले हो जो कि जैसे बोला सो का लाइफ साइकिल लंबा है जैसे मिर्ची के या फिर बैगन के तो देखो तो 10 महीना 12 महीना मिर्ची एक साल से भी ज़्यादा भी रह जाला ठीक से आपका देख रेख करबा तो 6 महीना के बाद 7 महीना के बाद 4 महीना के बाद एगो ठीक एगो फिक्स समय नहीं है लेकिन साल साल में एक दो बार ओकर जड़ी लगे तनिशन कंपोस्ट लेके डाल दिया आज आज कंटेनर में हो तो कंटेनर के तनिशन माटी हटा के ओकर में तनिशन कंपोस्ट डाल दिया
1: यानी कि कंपोस्ट जो बातें जो गाँची उस बातें रोपाए की जो खेती बाड़ी बातें उन लोग के और बढ़ियार बनावेला अब एगो प्रश्न तो हर से पूछती बाय संभव कि कबो कबो हो ला जा हो जाला ढेर जो खेती हर उस बोली लन जा हम खाद डालत है हम कंपोस्ट डालत है तबो पे हमारे जो जो गाँची के पत्ता बातें वो सब पियारा जाला ये का है
0: हाँ तो देखा आज एगो माटी बढ़ियार बात है यानी कि ओकर में ऑर्गेनिक मैटर डालत हो

0: जैसे कि कॉम्पोस्ट डाला तो अब ओकर इलावा ऊपर से आजे खाद भी डाला तो आजे एगो समस्या होता जैसे तू बोला पत्ता पी जाता वगैरह वगैरह तो उस सकेला एक दूगो चीज खाते न हो एगो तो सकेला हो जन माटी हुए बातें ओकर में एगो कोनो एगो समस्या बात है जैसे कि सकेला लासी जीते हुए प्यास हुई प्यास के गो समस्या बात है तो वो चला जाने के लेकिन दरी में आज निमन से आज कोई कंपोस्ट डालत हुई तो ये प्रॉब्लम चला नहीं हुई के क्योंकि आज नहीं जो नहीं डाला था ओके सकेला हुई मैं जो कंपोस्ट के प्रयोग करा था जो गाय के फीमिया प्रयोग करता ओके है प्रॉब्लम कबू नहीं हुई
1: तो एगो एगो खेती हर जो प्रोफेशनल बात है वो तो जानी अब धरला एगो गार्डनर को कोनो कोनो जन कैसे बोल सर हॉबी गार्डनर वो अपन माटी अपन आंगन में वो कैसे अपन माटी के पीएच चेके करी कैसे जानी वो सब
0: हाँ देखा हमने लगे था ये फैसिलिटी है चेके करे के लेकिन मॉरिशस में आज 400,000 घर हुई रेसिडेंशियल अब 400,000 रिक्वेस्ट आज आए तो इतना मुमकिन नहीं है ना थोड़ा एग्जाजरे बात है तो हम बोलती अनुभव के साथ थोड़ा पता चल जाए आज माटी में वो प्रॉब्लम हुई कि नहीं क्योंकि आज तू ठीक से कंपोस्ट की तैयारी कर ले हो ठीक से कंपोस्ट के दरी में डल ले हो तो ये सब प्रॉब्लम नहीं लौकी लेकिन आज कोई नहीं करत हुई जो कंपोस्ट नहीं डाला था जे गन्ना फीमिया नहीं डाला था जे ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला था ओके ही सब लोग की तो ओके संकेत मिला था कि तुम्हार माटी में कुछ नहीं छा पाते बढ़ियार नहीं बातें चला माटी के बढ़ियार बना के तब चाहला ये सब डाले के अब कॉम्पोस्ट में एक चीज और मिलेगा जब उन्हें खाए के मिला था मिको एलेमा भी मिलेगा कभी कभार होला कि जब एगो रोपाई कर ले खेत में खेतों में भी जो खेतीहर करेला तो सकेला खेत में एगो मिको एलेमा कमती हुई तो ये सब समस्या होला लेकिन फिर से बोलता है जो कॉम्पोस्ट के प्रयोग करेला जो फीमिया के प्रयोग करेला खासकर गाय के फीमिया के हम हो जैसे बोला सा मुर्गी के फीमिया ओकर बात नहीं बोलते हैं बहुत आजोती रहेला वो तो एगो खाद हुई गई थी हाँ तो जे ऐसा फीमिया गाय के फीमिया या कॉम्पोस्ट के प्रयोग करेला ओके ऐसा समस्या नहीं हुई
1: तो चलो हमने संगे जुड़ल हवा साथ दिया जा तनी देर में हमने वापस आ जा।

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हुआ। तो हाँ, आज हमने बताया था ऐसा बात कर रहा था ऐसा कि कैसे घरे तू अपन बगीचा के स्थापित करवा जो नींव बातें वो हो कॉम्पोस्ट इतना चीज बाइकर पर बतियाए खातिर। और हमने के मेहमान हुआ फिरों से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर फागेदाने से श्रीमान शंभू जी। और भाई शंभू, हमने बात कर रहे थे जब कॉम्पोस्ट ढेर जना हमने जानी ला जा वो खाद वो सब खरीदे लन जा तो वो लोग के कौन ची बोलबा जे कॉम्पोस्ट घर ये बनावत हो तो एक जरूरत है बाहर से किने के
1: ओकर से आगे और एक क्वेश्चन बोल लेला।
0: हाँ
1: हो घर पे आज है जो पत्ता पीरा ला सकी और दो कारण खाती सकेला दो कारण खाती हुई एक गो तो आज गन्ना कंटेनर वगैरह में हुई या कोनो कोना में हुई तो ज्यादा सिंचाई आज करत हुई जैसे बनी पचपच माटी पचपच बातें तो आए राशों कमती हुईला। अब पानी जब ढेर डलब तो माटी में जन न्यूट्रिएंट बा उधवा के चल दला
0: तो हयो चाहेला जाने की कब चाहेला पानी डाले के कितना चाहेला।
1: हां तो जब देख बा माटी गन्ना ह्यूमिड बाते गन्ना सुखल सुखल ने माटी में ह्यूमिड बाते चला सिंचाई नहीं करे के इने हक चला रोज के रोज चला पानी डलते जाए के जमे मटिया एकदम से भिंजले रही और से नहीं पचपच एगो माटी की पकड़ब गोला कहते हो जाए भिंजल गोला कहते नहीं छाओ वो जाने की पचपच बातें तो ई कारण से की हुई या तो फिर सकी पिलवा रही बीमारी चला हुई तो वो खातिन सकेला कि कैसे पत्ता के नीचे आज कैसे पिलुआ हुई व्हाइट फ्लाई या फ्रिप्स वगैरह तब पत्ता से कि पियर हो जाए या फिर एक गो मलादी या जो बीमारी या जो आवेला तो उसे भी पत्ता पियर सकेला हो जाए। हाँ तो अब जन प्रश्न पूछता जे खाद खरीदता देखा घर पे आज तू कॉम्पोस्ट बनाओ तो कॉम्पोस्ट की प्रयोग करता तो वो ही काफ़ी बात है।
0: अच्छा
1: हाँ ओकर में और कुछ खाद वगैरह डाले के आवश्यकता नहीं बात है
0: जी।
1: हाँ एक अब तोहरा मन आज कॉम्पोस्ट नहीं बात हो लगे वो खादिन खरीद तो ई सकल सकल ओके एक में समस्या नहीं बात है लेकिन हम के रहत कोई के बोले के रिकमोनाशों करे के तो हम बोलती देखा खाद के प्रयोग नहीं करिए क्योंकि घर पे खाद खरीदे खातिर पैसा भी जाला ना।
0: हाँ।
1: एक गो पैसा जाता यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट जो रसोई घर के तो फेंकत हो जो सकता गन्ना रिसिकले करे तो अब जब रिसिकले करे तो पर्यावरण और जीवन में खातिन ये भी तो अच्छा बा ना। अब ओकर में तो जो न्यूट्रिएंट बा ओकर में मिली
0: जी।
1: अब एक और एक चीज बा खाद जो बा जो खरीदा तो फैचरी जो बोला जा वो तो सीमिक केमिकल है ना। अब यानी कि तू जाके एगो पदार्थ रासायनिक पदार्थ जो बातें एगो पोजिशीमिक जो बातें वो खरीद के आना तो अपन जो सब्जी बातें जो पौधा बातें फल बातें वो कर देख रेख करे खातिन तक आज कॉम्पोस्ट के प्रयोग करता तो जो तरह सब्जी मिलल खाए के जो तरह फल मिलल खाए के तो में तो यानी कि हो रासायनिक पदार्थ नहीं बातें
0: जी
1: तो जस्ती अच्छा नहीं बातें एगो एगो एक जना कि सब्जी मिलता खाए के
0: पैसा वो नहीं जाता।
1: हाँ पैसा वो नहीं जाता और स्वास्थ्य खातिर गन्ने बोला तो जिस पर में पोजिशीमिक नहीं बातें तो जन स्वाद जन तरह मिली ओकर में जो मिठास मिलेगा जो एगो चीज में रासायनिक पदार्थ में जो में पेस्टिसाइडो नहीं हुई
0: जी
1: ओकर जन स्वाद रहला वो अलग रहला बाजा अपन घरे तू भी तू भी सकबा एक पर है जीवेगा जन बा अपन से देखे
0: जी सैटिस्फैक्शन मिले ला।
1: हाँ वो

0: तब हाँ वो भी मिली आई, लेकिन सब्जी में आई मंडी में एगो सब्जी खरीदा, ऐसे एगो एगो लीची खरीदा। अब घर पे एगो लीची तो आए बोले हुआ रोपले हुआ, और वो लीची में खाली कॉम्पोस्ट रहा, पेस्टिसाइड नहीं रहा, फर्टिलाइजर नहीं रहा। हाउ लीची खाया और जन मंडी में मिलल वो खाया
1: जी,
0: देखिया कौन ओकर में फर्क रहेला। और फिर जैसे बोला एगो सेटिस्फैक्शन रहेला, तो तू अपन से हो लीचीवा
1: लेके हाँ
0: कुछ कर ला, जहाँ तक मेरे को पोजिशन में कोई बात नहीं, दू गो मिलल, तीन गो मिलल, चार गो मिलल, दस गो मिलल, जस्ती मिलल जा सकेला, तो अब है अपन पड़ोसी संगे बांट देब, कोई आए तो ओके दे देब वगैरह वगैरह, लेकिन हाउ जन सेटिस्फैक्शन मिलेला तो उ जन खरीद के अनला उस खाला वो कमी नहीं मिलेला। और एगो चीज रहेला खरे आज तू इसे बोली जा, आज के टॉपिक है हाउस होल्ड गार्डनिंग, तो घरे आज तू कोई किसी चीज़ के रोपाई कर तो तुहार खातिर एगो व्यायाम कहते चला, एक्सरसाइज कहते चला, तो एगो एक्टिविटी रहेला, तो हाउ एक्टिविटी से तुहरो जन स्वास्थ्य रहेला वो ठीक रहेला। फिर ओकर में जब हाउ हाउ एक्टिविटी के साथ हाउ जन सेटिस्फैक्शन लेके मिलेब, हाउ जन पीस ऑफ माइंड मिलेला, हाउ स्ट्रेस सब भाग जाला,
1: जो स्ट्रेस हार्मोन वो कमती हो जाला,
0: सब भाग जाला, तो और खातिन बेहतर रहेला।
1: तो देखला जितना जना अभी गार्डनिंग करत हुआ, चाहे प्रोफेशनल हुआ कि नहीं, कुछ न कुछ करबा, मूवमेंट में रहबा, एक्टिविटी करबा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेला और बढ़िया खाना मिलेला, सेटिस्फैक्शन जैसे हमने बोला था जा वो सब मिलेला। तो भाई समूह हमने के बोला जो घर के अंदर जो उगावल छोटा गाँचू सब बातें, तो वो तनि सुन लंबा पतला और कमजोर काहे हो जाला?
0: हाँ तो देखा ज़्यादा तक जोन मंडी में देखी ला जा जो चीज़ मिलेला, कैसे एगो टमाटर लिपसा उसकेला, वो टमाटर जैसे बिलासा उसे मॉस इब्रिड से रहल है, कैसे हम वाइटिव सबके नाम नहीं मिले लेकिन सकेला इब्रिड रहल, कैसे हमने की करेला छोटा छोटा करेला रहला ना ऐसे है, छोटा बॉम्बे रहला थोड़ा, अब देखा मंडी में अब जब
1: लंबा
0: लंबा, लंबा करेला मिलेला, तो पतला पतला लंबा लंबा, ये सब इब्रिड
1: है, लोकल नहीं है,
0: लोकल नहीं है। ऐसे ही अनेक चीज ऐसा बा सब्जी जो मंडी में मिलेला जो के बोला सब वह इब्रिड है, अब जो वह लोकल रहेला तो वह इब्रिड कहते ना बड़ा नहीं होला, अब जो वह इब्रिड है वो कैसे बोला था रिजोर्स डिमांडिंग है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, तो ओकर खातिर पहला जस्ती खाए के डाले, कैसे खाद डलाए, जस्ती देख रेख करे, क्योंकि जस्ती सकेला समस्या हो थोड़ी पिलवा वगैरह के चला कंट्रोले करे के, नहीं तो परफॉर्म नहीं करी। अब फिर से आला सा हाउस होल्ड घर पे, अब घर पे चला है सब इब्रिड सब दे रुपये के, हमने तो कंपोस्ट से
1: काम चला,
0: हाँ काम चलावत है सर, तो हमने के चला जैसे बोला सर हमने के जो वैसे लोकल बा ओके चला रुपये के, यानी कि ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स घर पे, यानी कि तू ही सकबा अपने से जो बीज निकाले, तू ही सकबा अपने से बुचिया निकाले, हवे के चला रोपाई करे के। अब जब एक रोपाई करते हैं जा ठीक से करते हैं जा, लेकिन रोपाई जब करते हैं जा तो जो कॉम्पोस्ट बा या जो फिमिया मिनल बा वो कैसे करते हैं सर, तगने तो बियो गल बा
1: जी,
0: नॉन केमिकल हो गल बा, तो एक जो परफॉर्मेंस जो बा हमने फोर्स ही नहीं करते हैं सर, कैसे बोले सर हाउ एक आध गो सुनने में आवेला जब घोड़ा के दोपे कर दस्ती भाग गया हो, सब्जियों के भी हमने तो कुछ दोपास कुछ नहीं माना होकर में नॉन केमिकल बातें कॉम्पोस्ट से बातें, तो वो जो मिलल बात चला हो में से वो सेटिस्फैक्शन वहाँ आने के सकेला, वो कैसे जस्ती बेहतर हो या निमन से माटी के देख रेख कर लें सर, निमन से आए राशों कर सकेला इम्प्रूव हो समय के साथ, लेकिन सेटिस्फैक्शन वहाँ हुए में से चावल निकाले।
1: और जैसे बोले थे वो पानी चाहेला, घमा वो चाहेला ना,
0: हाँ घमा वो चाहेला, बस घमा आज घमा नहीं रही तो जो जो पत्ता रहेला उतना निमन से डेवलपे नहीं होला, जो डाली रहेला डेवलपे नहीं होला, तो जो हाउ क्लोरोफिल रहेला जो हाउ जैसे बोला फोटोसिंथेसिस चला करे के, तो वो पौधा नहीं सकेला उसे निमन से करे।
1: तो कभी कभी हमने देखले है ऐसा जो खेती और उसे वो लोग बोले लंसा कि कभी कभी जो ग्रीन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल होला, खाद के इस्तेमाल होला, उसे जस्ती फल कुछ नहीं मिलेला पर पत्ता बिगेला, ढेर पत्ता बिगेला, ये को प्रॉब्लम है।
0: हाँ कैसे कि देखा जब एगो पौधा के बहुत खायो के मिलेला तो नहीं छा, और खासकर जो आजुत रहेगा

0: nitrogen, tak green manuring ni si boleh lancar, tak kena kasi puas diskri bate, zon tak bate tu hal lagi bate. Ab tu ke chop kerke, tu ke ab mati me mila ke dal deo tu. Ta pautha jon ba, oke mili khai ke me jala ta oke nitrogen ke mili. Tu katin ab jasti viajar peki, lalian peki. Ikuti acha ba, aje tu kena tu raman ba kongra ke bhaji khai ke. Ta chala jane ke, कैसन पौधा के तो कुंची देवी करतो खाए
1: तो ओकर से आगे चाहेला जाने के जब कंपोस्ट बनावत है ऐसा धरल सुसु बाते भाजी बाती उमे कुंची बाते
0: हां लेकिन जब कंपोस्ट डालते हैं से तो उस सर गलवा ओकर में सकेला ओकर में आजोद भी ज्यादा होए लेकिन उस सर गलवा और ओके ता डालब से एक ही बार
1: जी
0: हां लेकिन हम रहते हैं आज बार-बार आज डालब ऊपर से उमे जन गन्ना सरल नहीं बाते उ लेके डालतो तब जाके गन्ना आए एको चिंदे बालांस वासा की कर दे तो हमने कंपोस्ट जब प्रयोग करब सा जब तैयारी करब सा तो चलाओ की सरल रहेगी
1: जी तो हाजा परी एको प्रश्न तो हर से पूछब जन पौधा के प्रोपागेशन हमने बोली रा सा हाँ। जब हाउसहोल्ड गार्डनिंग करत हो तब प्रोपागेशन कैसे चाहिला करे के
0: हां देखा घरे पहला जन खरीदा था मंडी में से जा कुछ खरीदा कैसे को टमाटर खरीदा उतरा निमन से एकदम से गन्ना खूबसूरत लगा था तो ओकर में से कबो बिया निकल पाता दिख बार पौधा हुए लेकिन तोरा ओकर में टमाटर ठीक से नहीं हुए नहीं हुए तो वो संकेत करा कि तू एगो हाइब्रिड में से निकल ला
1: अच्छा
0: एगो उदाहरण दे बताए कैसे वो ता हाइब्रिड में से हाइब्रिड जो सब्जी है ओकर में से चला बिया नहीं निकाले की आज तोरा बिया के काम हुए आज तोरा एगो हाउस होल्ड गार्डन मन हुई करे के तब हमने के कृषि मंत्रालय के बर्कली एक्सपेरिमेंट स्टेशन लगे जा या ओकर जन शाखा हुई वहाँ जाइया वहाँ पर जितना बिया मिलेला हमने के मंत्रालय द्वारा वो सब ओपन पोलिनेटेड है वो हाइब्रिड नहीं है
1: जी और वो सब हॉट वाटर ट्रीटमेंट करा गल बाते
0: ओकर ट्रीटमेंट ओकर में होल बाते ओकर में हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं है ओकर में नहीं होल बाते क्योंकि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जब करबा तो चला तुरंत या
1: रुपाई करके
0: चला रुपाई करके लेकिन जितना बीज मिलल बा वो ठीक से ओकर तैयारी करल बा वो खरीद के सकबा फ्रिज में रख दे ओकर में से प्रयोग करला फिर जन बचल सकबा फ्रिज में डाल दे निमन से बंद करके वो रही ओकर में समस्या नहीं बात है ओकर में को दिक्कत नहीं बात है तो घर पे आप गनला तू कैसे लालू रोप ला आप ओकर से बिया निकलता हमेशा जन पहला फल बा टमाटर की हुई पहला फल बा हमेशा वो पहला निमन फलवा वो छोड़ दिया
1: अच्छा
0: तब ओके जब टमाटर गन्ना खूब लाल हो गल बा पौधा पर ओके देमिमी या कुछ नहीं खूब लाल हो गल बा पौधा पर ओके लेके तोड़ दिया
1: अच्छा।
0: जब जन लालू बाते लालू लेके निमन से आई सूख गल बा गांची पर पहला लालू जन बा वो लेके निकल गया कोहरा रोप ले ला तो कोहरा रोप ले लेता तो कोहरा में तो जब खाए के बखत हो बात तानो सकब सा खाए लेकिन जब खाए के बखत हो तो पकली बात है भीतर में तब भीतर में से जो हो बिया बात है उलेके निकाल के पहला सूखे के डाल दिया तो लालो के जो लालो के बिया बात है उतना पौधा में सूख गल बाऊ सकबा रख दे टमाटर के चला बिया निकाल के सुखाए के कोहड़ा के चला सुखाए के ऐसी वगैरह वगैरह जितना चीज बा तब जो इनके निकाला तो आज सूखा नहीं चला खमा में डाल के सुखाए के तब निमन से रख दिया तब थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा बजा सेमी करे तब वो कर रोपाई करे तब बाद में आज फिर से चला था ऐसी चला लेके बिया नहीं डाल के अब एक आध गो चीज रहेगा ओकर बिया नहीं चाहे ला
1: हाँ।
0: कैसे लाके जो यूं बातें तो लाके जो यूं एक कुछ जब रोप ला तो बड़ा हो गल तो जो के काट के निकल ला तो नीचे के जब भाग भाग सका ओके तोड़ तोड़ के लेके रोप दे कैसे अब लेकिन दूसरा साल दूसरा कुछ जब बड़ा हुए या तीसरा कुछ जब बड़ा हुए तब सकी आजे हाँ तब फूल फेंकी तब उस सब फूल छोड़ दे तब कम से भी सब बिया निकाले बाद खाते हैं पुदीना जन बा ओकर चला बुचिया निकाले के बुचिया निकाल के माटी में कंपोस्ट सब डाल के नीमच से डाल दे बा जीता जन बा
1: जी
0: वो उसी तरह जन बाते तब ओकर ओकर जन चीज बाते ओके काट के नीमच से नीचे से देख बा छोटा छोटा छोटा फेंकेला तो नीचे से काट के तो लेके लगा दे बा लेकिन हाई सब जब बुचिया वगैरह बा जब माटी में डलवा तो माटी की सूखे नहीं दिया पचपच चला के एक छोटा शून्य में जीते चला रहे
1: तो अभी बोला था जो बॉकली जो हौजा परी जो सेंटर बातें हौजा परी सके अंश जाए अब धरला हमके मन बातें अपन घरे जो पोपागासो बातें करे के एगो

0: प्रोपागेशन चैम्बर जैसे बोलल जाला वो कैसे हम स्थापित करब
1: नहीं घर पे प्रोपागेशन चैम्बर नहीं चाहला वो गणराज्य को नर्सरी
0: एगो नर्सरी नियन वो
1: द नर्सरी ऐसा ने को व्यक्ति बनाए जो की मन में ढेर एकदम से करे के ताकि वो सकी गणप कमर्शियल रूप से अपन बीज के बीज बीज खातिन ओकर प्रोजेक्शन खातिन वो नर्सरी स्थापित करी ताकि उसे की बेचे घर पे आज हाउस होल्ड गार्डनिंग कहते हैं सर तो हमने के ऐसा नहीं को कुछ हो गला स्ट्रिक्चर नहीं चाहे ला वो जैसे जैसे हम बोली तू रोपाई कर ला ओकर में से फल मिलल फल के चुना हाँ हाँ बिल्कुल सिंपल ओकर में से फल के चुना ओकर में से बीज निकाला
0: जी
1: जैसे बोली भिंडी बाते मिर्च बाते ऐसे ही सब चीज में से पगल निकाल के या रसोई घर में आन दिला तब उसे काट के निकाल दिया तब सूखे के छोड़ दिया आई खिड़की के पास कुछ को बोल कुछ में डाल के सूखे दे दिया तब देखे रख दिया।
0: अच्छा हमेशा एक बात बोली ला स्ट्रेस से चाहेला करे के कि नहीं चाहेला करे के तो कैसे करब जब घरे अपन हाउस होल्ड गार्डनिंग करत हो अभी देखा काहे कि अभी घरे सकेला लोगा तो नहीं पर लीची बाटे आम फूलल बाटे फरल बाटे वो सब बाटे तो कौन चीज चाहेला कौन चीज स्ट्रेस कई जना नहीं समझेलन कौन चीज है स्ट्रेस
1: फुलाता फुलाता
0: हाँ
1: लेकिन सीजन नहीं ला सर कहना जनवरी महीना उधर होला ना देखा इस है स्ट्रेस हुआ ये सब्जी पर है चालू नहीं कर लिया
0: अच्छा
1: सब्जी के स्ट्रेस से कर ले तो तीन महीना एक महीना जीला तो मर जाए हाँ स्ट्रेस हुआ ये जन है ये जन कैसे लेक्सी के नाम ले ला तो ये लोग के चला स्ट्रेस से करे कि ताकि आज आज गन ल साल भर एगो जन लेक्सी के पेड़ बा ओके तू सिंचाई करते गए ला गनला कंपोस फेंक ले गए तारे में ओकर या खाद डल ले गए तो वो गनला सकेला नहीं फुलाए वो जब टेंशन स्ट्रेस ही रहा तब फुलाला तो हाई जब जाने ला हाई लेक्सी की फुलाए के अभी सीजन वहाँ अभी तो जब आवा था तो चला ये सब चीज़ नहीं करे के और भी तो ऐसा नहीं कोई जगह में रहा तो थोड़ा बहुत बरसात होता दिखा था लेक्सी के जो पेड़ बा ओकर जो ओकर जन पत्ता बा हरियर बा तो एक आवश्यकता ने बा सिंचाई करे के छोड़ दिया तब ऐसे ही उस स्ट्रेस से रही मौसम मौसम अनुसार स्ट्रेस होता जैसे एगो प्रोग्राम कर लीजिए जैसा अभी सर्दी के समय में से लेकिन लेकिन वर्षा कम होता हाँ तो उस स्ट्रेस से हुई बातें ये सब प्रकृति जाने ला कौन समय है पानी कमती बरसेला क्योंकि ऐसा नहीं संग पेड़ पेड़ बा ओके चला फुलाए के लेकिन जब जब अब पेड़ फुला जाए ओकर में तुम फल धरे लगी दिख पर छोटा छोटा गोल गोल फल धरा था तब सिंचाई सब बकाया करे आजे वर्षा हो थोई हर हफ्ता तने कर लिया लेकिन आजे नए हो थोई तो हर हफ्ता तने सुन सिंचाई कर दिया
0: यानी कि स्टेप बाय स्टेप कदम से कदम जैसे बोली ला जाए ओकर जो तरीका बाते ओकर सेवा करे
1: खातिर जाने के कोई कोई रहेला वो लोग लेके आगोजे करते रह सिंचाई करते रह बारिश भर वगैरह तब बोलन सा बच्चा वगैरह सब रही था फल करी ना फूल
0: धरल अभी हम बाजार गयी हौजा से कोनो चीज किनली कोहरा कुछ किनली अब हौजा के जो बिया बाटे हम अपन घरे आके रोपाई करब तो वो सेम तरीका बाटे कैसे
1: सेम तरीका बाटे ओहू में सकब खाली जैसे बोलनी जन इब्रिड बाटी ओकर में से नहीं निकल
0: तो कैसे हम जानब वो इब्रिड है कि नहीं
1: एक आध गो चीज जब देखी ला जाता एक आध गो चीज तो पता ही नहीं चली कैसे जो टमाटर जो लोकल बाटे और जो इब्रिड बाटे कबो कबो अंतर नहीं लौकेला तो उन्हें जानब
0: जी
1: अब गन्ना कैसे बोली सा करेला की तो जान जेब पिपंगा की तो जान जेब कदुआ के जान जेब कोहरा जन बाटे तो हमने के जो कोहरा रहेला जान वो एकदम से फेयर रहेला फोसे डार्क ग्रीन रहेला इप्पे रहेला ऐसे लापू तो वो जान जेब लोकल वो में तब थोड़ा इब्रिड भी आता उसी उसी प्रकार से लेकिन ऐसे ही आज जो चीज़ के पहचान कर दिला तो ऊपर से बिया निकाल दिया आज कोनो मिस्टेक भी होल हुई गन्ना इब्रिड में रहा तो लेकिन निकल तो बिया निकल रहा अब रुपाई कर ला, एक दो महीना के बाद जब फुलाए

0: कि समय फर धरी के समय
1: जान
0: जेब
1: जी
0: तोहरा भी अच्छा है, गलती करल भी अच्छा है क्योंकि ओकर से अनुभव भी मिलेला
1: जी। तब हमने सिखब सा
0: अच्छा,
1: हमने के कार्यक्रम के अभी समाप्ति के लगभग हो गए लिसा। जाते जाते हम तोहर से पूछती, हमने जैसे बोला मोनोकल्चर नहीं चाहिला करे कि अब घरे धरला तनी जगह बातें ढेर नए बातें मैं समझ सकब सर जोन साथ साथ जोन जोन दूसर जोन चीज बार उपाय करे के जैसे पल दामुन संगी कौन सी चाहेला हो के हो संगी कौन सी
0: चाहेला हाय मोनोकल्चर नहीं ही करे के घर पे भी नहीं करे के थोड़ा थोड़ा सब चीज चना रोपे के कैसे घरे टमाटर रोप अथवा संगे गोभी रोप दे
1: अच्छा
0: बहुत बढ़िया से होला। गोभी टमाटर के साथ बहुत बढ़िया से होला
1: जी।
0: और जब जब रोपाई करब तो चला घर पे जगह कम है ना तो चला जोन जितना भी जगह बा चला उपचिमीजे करे के तो जोन बो में बा आज बाहर में हुए तो बो में सकबा जा अपन जितना हो कौची मजे पीस के से लाके जो यों बातें पुदीना बातें जितने बातें सब सब डाल दे
1: चाहे ला इस्तेमाल करे के
0: बो में सब कर दे जैसे ब्लॉक बा ब्लॉक में मोटा मोटा हो अथी नहीं अच्छे नहीं टुलू टुलू रहला ना तो ब्लॉक को में सकबा जा कंपोस्ट भर के हो में सब अपन लाके जो यों जितने सब वगैरह डाल दे ढेर
1: तरीका बातें
0: ढेर तरीका बातें या तो कंटेनर रख दे बा या तो प्लांशेट जोन बातें प्लांशेट के लेके खड़ा कर दे बा दूगो प्लांशेट तब पत्थर वगैरह से सकबा ओके ठीक से खड़ा कर दे हो में सकबा निमन से नीचे में जोन लकड़ी के जोन चिपिंग बातें चिपिंग बातें लकड़ी के सूखल पत्ता बातें कोपो सब में डाल के तब सकबा ऐसे रोपे
1: ढेर चीज बा। हमने बूते प्लास्टिक के बात कर रहे थे सर नहीं चाहेला बीगे के वो सब रिसिकले चाहेला करे के काट के में माटी डाल के छत पर करेला से ढेर तरीका बा
0: लेकिन छत पर करबा जा आज कंटेनर रखा तो बता छत के कंटेनर से भर जा नहीं क्योंकि जब माटी
1: माटी रही हाँ
0: वही पानी सब दबता भारी जला तो छत पर कंटेनर जो रखा थे वह कोनो प्रकार के चला जहाँ पर बीम जला बीम जो बिला सा ओकर पर चला रखे के ऐसे सोलिड एगो अच्छा जगह पर रही जाए तब प्लाफोन फाटी नहीं।
1: तो इस सब के अलावा धरला अब घरे बगीचा बनावत हुआ स्थापित कर रहे हुआ अब विविध बैक्टीरिया जो पेस्ट कंट्रोल वो कैसे हुई
0: नहीं हुई अच्छा विचार रही कैसे बोला सा शुद्ध विचार रही पॉजिटिव एनर्जी रही तो नहीं हुई और रवि करी तो जैसे हम बोला कैसे एगो से नींबू के पेड़ बा या अमरूद के पेड़ बा ओकर में देखा तो कोनो तरह के पिलुआ आल बा या बीमारी आल बा देखो कौशल के लेके खाली धो दा हर महीना एक बार खाली में डाल दा पत्ता पर कुछ लगकर पत्ता तोड़ के निकाल दा हाई तरह बा करके जहाँ जड़ी बा तक दिखबा तनि सुन ज्यादा सिंचाई कर ले कुछ लेके भों भों के माटी के हिला दिया तो मैं आए आशो रही
1: माने कि निमन से ओकर देखभाल सेवा करबा तो कोनो प्रॉब्लम नहीं रही
0: नहीं रही।
1: तो चला यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम के हैचे पर ही समाप्त करे थे। जब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी फागे दाने से और जितना जना हमने संगे जुड़ल हवन आप लोगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए देखते रहिए फिर से मिलब सा प्रणाम।

0: देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अर्षिता रघु। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अर्षिता।
1: नमस्कार विदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 अगस्त 2026 को, जैसे कि आप जानती हैं, छात्रों की कक्षाओं में लौटे एक सप्ताह हो गया है। वे अब शैक्षणिक वर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ छात्रों के लिए ये समय दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें ग्रेड 11 के छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में SC की परीक्षाओं का सामना करना है। हालांकि दूसरे तिमाही में आयोजित मौके परीक्षाओं के नतीजे उत्साहजनक नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा है। और अगर बात गणित यानी मैथमेटिक्स की करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले केवल 37% छात्र ही इस विषय की परीक्षा में सफल हुए हैं। इन आंकड़ों ने शिक्षा मंत्री की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने कुल मिलाकर अपनी कृषि उपज पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची है। और अगर हम ज़्यादा विस्तार से बात करें तो इसका सीधा मतलब है कि वे कीमत जो किसान अपनी उपज बेचते समय हासिल करता है, इससे पहले कि वह उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचे। अप्रैल से जून के बीच इन कृषि उत्पादों के दाम में औसतन 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि साल के पहले 3 महीनों की तुलना में सब्जियों के मामले में ये रुझान और भी स्पष्ट रहा। पहली तिमाही में सब्जियों के दाम में करीब 2.2% की गिरावट आई थी, वहीं दूसरी तिमाही में ये गिरावट बढ़कर 8.9% हो गई। सबसे बड़ी गिरावट गाजर के मामले में दर्ज की गई, जिसकी उत्पादक कीमत में 54.6% की भारी कमी आई। वहीं साल की शुरुआत में कीमत बढ़ने के बाद अनानास के दाम ने भी रुख बदला और इसकी उत्पादन कीमत में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत कुछ पशुपालन उत्पादों के लिए किसानों को अधिक कीमत मिली। अंडे और पशुधन की कीमत में 6%, जबकि दूध की कीमत में 8.6% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन किसान को मिलने वाली कीमत में ये गिरावट जरूरी नहीं कि आपकी खरीदारी के बिल में भी उसी अनुपात में दिखाई दे। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन सदस्य राष्ट्रीय सभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कैसिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कैसिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थिति को लेकर कैसिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने में मदद के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री बर्नम अपने पूर्वाधिकारी सक स्टामा के कार्यकाल में ब्रिटेन

0: और फ्रांस द्वारा गठित कॉलिशन ऑफ द विलिंग की पहली बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे यूक्रेन के समर्थन में ब्रिटेन की भूमिका के लिए ब्रिटिश जनता की ओर से एक सम्मान भी स्वीकार करेंगे और यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम के तहत बर्हम की सरकार रक्षा कंपनी MBDA को लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज स्कार्प मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटिश घटकों से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने की अनुमति देगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रायरोड लालोगा सैपिया में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री अमिताभ दुर्जन जिन्हें माचिंगो के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लालोगा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसो सैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओ, 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। तो चलिए, आप के लिए हम लाए हैं भक्ति धारा कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके लिए चंद भक्ति गीत, फिर आपके ज्ञान चक्र कार्यक्रम, और आपके लिए हम लाएंगे मानस मंथन कार्यक्रम डॉक्टर वीरू अनुंद जी की प्रस्तुति में। तो चलिए श्रोताओ, ज़्यादा देर न करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। कहते हैं, जिस मन में श्रद्धा हो, धैर्य हो और आत्मविश्वास हो, वही सच्ची भक्ति का अनुभव करता है। तो इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: चलिए श्रोताओं, श्रावण मास के शुभ अंत के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं ज्ञान चक्र कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आत्मा स्वरूपम तव रूप परम पराभिः राभिस्त्वं हरम।

0: चर रूपम रूपे मे मतां सर्वतारात्मनलिया प्रतिरूप स्वरूप नित्यां नतो अस्मिं परात्मनं जनोष्टमूर्ते। हे आत्मा स्वरूप, हे हर, आपकी इस रूप परमात्माओं से यह सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाला है प्रतिस्वरूप। हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका जन हूं। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं एवं प्रणाम करता हूं। इष्टमूर्ति त्रिवेधरा भिरबंधो बंधो युक्तम करणशी खलु विश्वजनीना मूर्ते अतिताम सुवर्णितम प्रणते प्राणते सर्वार्थसार्थम परमार्थम ततो नतो अस्मिन्। हे दीन बंधो, हे विश्वजनी मूर्ति, हे प्रणत प्रणीत शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सर्वार्थ परमार्थ, आप इन अष्ट मूर्तियों से युक्त है और यह विश्वकृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह अष्टमूर्ति आठ मंत्रों से विशेष करके रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार पूर्वक से शिव पुराण के रुद्र संहिता में युद्ध खंड में बहुत सुंदर से यह वर्णित है। इसलिए शुक्र आचार्य को दानवों के गुरु कहा जाता है और दैत्यों के गुरु के कारण इन सब चीजों को तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान होते हुए तब जाकर के वो गुरु पद को प्राप्त किया है। इसीलिए दैत्य जो भी कर्म करता है सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करता है और गुरु के मार्ग से ही यह संसार में अपना दैत्य कर्म को करता है, पूजा पाठ करके सिद्धि करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

तो चलिए श्रोताओं, 10:17 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन जो है समर्पित है भगवान शिव को, और आपको पता है श्रावण मास का महीना जो है चल रहा है और ऐसे में हम भगवान शिव जी को पूजते हैं। तो चलिए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में भगवान शिव जी पर आधारित। वैसे जब हम हर हर महादेव का नाम जो है इसका जाप करते हैं, ये केवल जयकारा नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनने का एक अटूट विश्वास है। तो चलिए, अगर मन शांत हो, हृदय में श्रद्धा हो और जुबां पर शिव का नाम हो, यही जीवन का सबसे सुंदर साधना है। तो चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे शिव जी को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय हम करते हैं। आज का दिन जो है हम अभिषेक करते हैं, कुछ लोग जो है व्रत धारण करते हैं और निर्जला व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग जो है कुछ ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं जो शिव जी को बेहद ही पसंद है, जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, और सबसे अहम बात है वो है ओम नमः शिवाय, मंत्रों का जाप करना। मंत्रों का जाप करने से जो है मन में जो है असीम शांति की प्राप्ति होती है, और मन को भीतर जो है उनकी शांति से हमें हम जुड़ जाते हैं भगवान से। तो चलिए ओम

तो चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। आइए, मानस मंथन कार्यक्रम आपकी ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर विनु अरुण जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनू अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 259 यानी 259 दोहे के नीचे की चौपाइयाँ आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सरस, बहुत ही मनोरम है, और वो इसलिए क्योंकि ये धनुर्यज्ञ का प्रसंग है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मानकर राम जी धनुष उठाने के लिए रंगमंच पर पहुंच गए हैं। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। सीता जी की माँ तरह तरह की आशंकाओं से भरी हुई हैं। सीता जी की भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे सबकी आशंकाएं दूर हो रही हैं। सुनैना जी को उनकी सखी ने समझाया कि राम जी देखने में बालक हैं, लेकिन उनके शरीर पर मत जाओ, उनकी करनी बहुत बड़ी है, वो ऐसा काम करेंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उधर सीता जी भी बहुत व्याकुल हैं, लेकिन वे भी अपने मन को यही धैर्य देती हैं कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो अवश्य ही मेरी कामना पूर्ण होगी। और राम जी ने सीता जी को एक क्षण के लिए देखा, उनकी अधीरता को, उनके मन में अपने प्रति प्रेम को समझा, और उसके बाद उन्होंने धनुष को देखा। और कैसे देखा, तो तुलसीदास जी ने कहा जैसे गरुण एक छोटे से सांप को देखता है। यानी राम जी के लिए वो धनुष कोई अर्थ ही नहीं रखता था, उनके लिए वो इतना हल्का था कि उनके मन में एक क्षण के लिए भी ये नहीं आया कि मैं इसे उठा पाऊंगा या नहीं। और अब लक्ष्मण जी का वर्णन हो रहा है कि लक्ष्मण जी ने जब देखा कि राम जी ने धनुष की ओर देखा है, तो पहली बात तो लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हुए। इसी की प्रतीक्षा में तो वे तब से बैठे थे, और इसीलिए जब सारे राजा असफल हो गए थे तो लक्ष्मण जी ने चुनौतीपूर्ण शब्द कहे थे, जिन्हें सुन करके गुरु विश्वामित्र ने राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश दिया था। तो लक्ष्मण जी से ज़्यादा प्रसन्न भला कौन होगा, उनका तो अंग अंग पुलकित हो रहा है। लेकिन साथ ही उनको ये लगा कि जब ये धनुष टूटेगा तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ना बिगड़ जाए कहीं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने चरणों से धरती को दबाया ताकि धरती कहीं हिल ना जाए। और अब आगे का वर्णन हम इन चौपाइयों के माध्यम से करते हैं, आइए सुने। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पाए। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं, पैरों से उन्होंने धरती को दबा रखा है, और आज्ञा किसे दे रहे हैं, चार लोग।

को, किन चार लोगों को, दिग्गजों को, कच्छप को, शेष को और वाराह को, और क्या आज्ञा दे रहे हैं कि धैर्य धारण करो। जब ये धनुष टूटेगा और जो शोर होगा इससे और जो उथल पुथल होगी इससे, कहीं तुम लोग परेशान मत हो जाना। और यदि

हो गए, जरा सा भी तुम लोगों ने हिला डुला तो क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। इसलिए सावधानी पूर्वक अब अलर्ट हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। अभी तक तो थाम के रखा था, अब और मजबूती से थामो ताकि कुछ भी हो ये पृथ्वी हिलने ना पाए। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शिव जी का धनुष राम जी तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और सब सावधान हो जाओ। आइए अब हम देखें कि लक्ष्मण जी जिन चार लोगों से ये बात कह रहे हैं वो कौन हैं और उन चारों से वे ये क्यों कह रहे हैं। पहली बात, दिग्गज। क्या है दिग्गज? दिग्गज होता है दिशा का हाथी, लेकिन दिग्गजों यानी कई सारे हाथी। तो आइए इसे समझें। हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि आठ दिग्गज दिशाओं की स्थिरता के प्रतीक हैं, यानी आठ दिग्गज हैं, आठ दिशाओं में आठ दिग्गज हैं जो हाथी हैं, जो दिशाओं को नियंत्रित रखते हैं। फिर है कच्छप। कच्छप यानी जिसे हम कछुआ कहते हैं, हम मानते हैं कि पृथ्वी को उसने अपनी पीठ पर उठा रखा है और कच्छप को धैर्य का और आधार का प्रतीक माना जाता है। फिर ये माना जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फण पर उठा रखा है, तो शेषनाग वो भी संयम के, स्थिरता के प्रतीक हैं। और वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया था, तो ये सभी विश्व की स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि अब जो कार्य होने जा रहा है वह अत्यंत अलौकिक है, दिव्य कार्य है और संपूर्ण सृष्टि को अपने स्थान पर दृढ़ रहना होगा, क्योंकि भक्त की दृष्टि में भगवान का प्रत्येक कार्य समस्त सृष्टि को प्रभावित करता है। और दूसरी बात यह कि लक्ष्मण जी को पूर्ण विश्वास है कि श्री राम धनुष अवश्य तोड़ देंगे। वे ये नहीं कहते कि धनुष टूटा तो तुम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, मानो वे ये घोषणा ही कर देते हैं कि धनुष तो टूटेगा ही, राम जी धनुष को तोड़ेंगे ही। और ये लक्ष्मण जी का जो श्री राम जी के प्रति परम विश्वास है, अटूट निष्ठा है और उनके प्रति जो गौरव भाव है, उन सबको बहुत अच्छी तरह से संकेतित करता है, व्यक्त करता है। तो चार लोगों को उन्होंने कहा कि सावधान हो जाओ। दिग्गज यानी जो दिशाओं के हाथी हैं उन्हें कहा, और कच्छप को, शेष को और वराह को, जिन सब ने धरती को किसी न किसी रूप में अपने ऊपर उठा रखा है। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीप कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदर आई, सियकर सोच जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभुचाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़ राहु। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को चाप पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। आइए इन चौपाइयों पर हम विचार करें। पहली बात कि लक्ष्मण जी ने दिग्गजों कच्छप, शेष और वराह को कहा कि तुम लोग पृथ्वी को थामे रहो। इसका एक गूढ़ संकेत यह है कि लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं,
फिर भी वे शेषनाग को ही पृथ्वी संभालने का आदेश देते हैं।

इसके पीछे भाव क्या है कि ये एक दिव्य लीला है, मानो शेषावतार स्वयं अपने मूल स्वरूप को संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास जी से स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, बल्कि संकेत के रूप में छोड़ देते हैं, संकेत देकर अपनी बात वहीं समाप्त कर देते हैं। और ऐसे संकेत ही रामचरितमानस की काव्य गहराई को और अधिक बढ़ा देते हैं। इन दो चौपाइयों में तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि शिव धनुष भंग केवल एक विवाह पूर्व की परीक्षा नहीं है, बल्कि धर्म, शक्ति और दिव्यता की उद्घोषणा है। इसलिए उसका प्रभाव केवल जनकपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि तक व्याप्त होगा। और आगे तुलसीदास जी जब कह रहे हैं कि राम जी जब धनुष के समीप आए तब क्या हुआ, उसका वर्णन कितना सुंदर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, चाप समीप राम जब आए, राम जी अब एकदम पहुंच गए हैं चाप के समीप, अब उठाना बाकी है, क्योंकि देख लिया एक बार उन्होंने सीता जी को, देख लिया एक बार धनुष को देख लिया, अब करना क्या है, धनुष को उठाना है। तो चाप समीप राम जब आए, जब राम जी उस धनुष के पास आए, नर नारी नसुर सुकृत मनाए, सबकी स्थिति क्या हुई, जितने भी स्त्री पुरुष देवता वहां पर थे उन लोगों ने पुण्यों को मनाया, यानी जो लोग चाहते थे कि राम जी सीता जी का विवाह हो जाए, वे सब लोग परम प्रसन्न हो गए और पुण्य मनाने लगे, यानी हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो अब हम धनुर्भंग को और फिर राम सीता विवाह को अपनी आँखों से देख पाएंगे, अपने भाग्य को हम धन्य कर पाएंगे। और फिर सबकर संसउ अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो, अब इसके बाद की जो चौपाइयाँ हैं इन्हें हमें एक साथ पढ़ना होगा, तब इसका अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए मैंने 6 चौपाइयाँ एक साथ पढ़ी, क्योंकि इनका अर्थ एक साथ हो सकता है। तो आइए इसे देखें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो पूरा विश्वास था, किनको, जो वहाँ स्त्री पुरुष बैठे थे, यानी जो लोग सद्भावना से बैठे थे, जो सकारात्मक विचारों से लोग उपस्थित थे, और साथ में जो देवता हैं, देवता तो चाहते ही थे कि ये धनुष टूटे और सीताराम जी का विवाह हो, तो इसलिए वे लोग तो परम प्रसन्न हो रहे हैं कि बस अब झट से ये काम हो जाए। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी बैठे थे जिनके मन में संदेह था, अज्ञान था, तो उन सबका वर्णन आगे की चौपाइयों में तुलसीदास जी एक साथ कर रहे हैं। 8 लोगों की गणना करवा रहे हैं, कौन कौन हैं वे, तो बोल रहे हैं, सबकर संसउ अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो, सबका संदेह और अज्ञान, यानी ऐसे लोग जो बैठे थे जिनके मन में संदेह था कि अच्छा ये राम जी तो कोमल हैं, अरे ये बालक ये जाएगा उठाने धनुष को, तो ऐसे लोग जिनके मन में संदेह था, जिनको राम जी के असली सामर्थ्य का ज्ञान नहीं था, ऐसे लोग। और नीच राजाओं का अभिमान, जो राजा नीच थे, जिन्हें अपने ऊपर बड़ा अहंकार था और वो उठा नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी उनका अभिमान दूर नहीं हुआ, अभी भी वे यही सोच रहे हैं कि अरे हमारे जैसा कौन होगा, हम तो परम पुरुषार्थी, हम तो परम पराक्रमी हैं, हमने हो सकता है एक बार प्रयत्न किया नहीं उठा पाए, क्या पता फिर उठा लें, यानी उनका अभिमान भरा पड़ा है उनके अंदर, तो ऐसे राजाओं का अभिमान। तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, आइए इसे समझें। संकेत दे रहे हैं, आपको मालूम है बाद में परशुराम जी आएंगे भंग होने के बाद, लेकिन यहीं पर तुलसीदास जी संकेत दे रहे हैं कि परशुराम जी के गर्व की गुरुता, यानी परशुराम जी को ये धनुष बहुत प्रिय था, वे शिव जी के परम भक्त थे, और शिव जी के धनुष को कोई तोड़ दे ये तो उनके सहन शक्ति के कहीं

परे की बात थी। तो इसलिए उनको ये गर्व था कि शिव जी के धनुष को तो कोई उठा ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं परशुराम जी का जो गर्व था, जो ये उनके अंदर ये अहंकार था कि इस धनुष को कोई उठा नहीं पाएगा, तो परशुराम जी के गर्व की गुरुता। और आगे सूर बुनि बरन केरी कदर आई, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, यानी उनके अंदर भय, जो देवता थे और जो श्रेष्ठ मुनि थे उनके मन में भी कहीं थोड़ा सा भय था, क्योंकि अभी तो धनुष तोड़ा नहीं है, तो मन में तो आपने देखा सीता जी के भी मन में थोड़ा भय पैदा हुआ था, उनकी माँ के भी मन में भय पैदा हुआ था। तो स्वाभाविक है कि जो अन्य लोग हैं, चाहे वो कितने भी सकारात्मक क्यों नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी इस बात की कामना क्यों ना करते हों कि राम जी धनुष उठा लें, लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं उनके भी हल्का सा भय तो है, तो उनका भी यहाँ पे वो नाम गिनवा रहे हैं। और आगे सीता जी की सोच, यानी सीता जी को भी चिंता है। ठीक है, उन्होंने ये तो कह दिया कि जिस पर सत्य स्नेह है वो उसे अवश्य मिलेगा, और ये कह के उन्होंने अपने मन को धैर्य दिया, लेकिन चिंता तो उनकी भी अभी बनी हुई है। और जनक का पश्चाताप, राजा जनक को क्या हो रहा है? पश्चाताप। क्यों पश्चाताप? कि मैंने ये प्रण किया ही क्यों। उन्होंने कहा ना, राम जी के उठने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आपको याद होगा, कि लगता है ये धरती वीर विहीन हो गई है, इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है, तभी तो इतने बड़े बड़े राजा आए, कोई धनुष नहीं उठा पाया। और अभी उनके मन में पश्चाताप है, किसी से कह नहीं रहे हैं, लेकिन एक पिता के मन को एक पिता ही समझ सकता है, क्या बीत रही होगी राजा जनक पर। इतना बड़ा उन्होंने समारोह किया, इतना बड़ा उत्सव किया, दूर दूर के राजा आए, और यदि सीता जी का विवाह नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो जो ये भाव किसके मन में चल रहे हैं? राजा जनक के। इसलिए कहा कि जनक का पश्चाताप। रानी न कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। रानियां मतलब सुनैना, यानी सीता जी की माँ, और अन्य जो रानियां वहां थीं, उन सब के हृदय में जो दुख है कि क्या होगा, सीता जी का क्या होगा, ये जो दुख रानियों को सता रहा है। तो आठ चीजें गिनवाई, हम इनको देख लें। पहला उन्होंने कहा सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, दूसरा परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप, और रानियों के दारुण दुख का दावानल। ये सात, आठ नहीं है, सात। ये सात क्या है आगे तुलसीदास जी से बताते हैं। संभुचाप बड़ बो हित उपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। तुलसीदास जी की ये जो कल्पना है अद्भुत है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज हो, बहुत बड़ा शिप, जिसे हम क्रूज बोलते हैं, तो मान लो एक बहुत बड़ा क्रूज है, एक बहुत बड़ा जहाज है, तो उस पे तो हजारों लोग बैठ सकते हैं। तो जो शिव जी का ये धनुष है वो एक बहुत बड़े जहाज की तरह है, एक बहुत बड़े शिप की तरह है, और उस शिप पर, उस जहाज पे कौन लोग बैठे हैं? इन जिन सात लोगों के नाम गिनाए हैं, यानी सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये सब के सब क्या हैं? मानो बहुत सारे यात्री हैं जिन्हें अभी कोई सहारा नहीं मिल रहा था। इन सबको नदी पार करनी है या समुद्र पार करना है, उन्हें चाहिए था एक जहाज जिस पर वो बैठें और नदी को या समुद्र को पार करें, बल्कि समुद्र को पार करें, क्योंकि समुद्र बड़ा है, अथाह।

है तो समुद्र को पार करना है, उसके लिए बड़ा जहाज चाहिए, मजबूत जहाज चाहिए। अभी तक नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। क्या मिल गया? वो बड़ा सा जहाज। किस रूप में मिल गया? शिव जी का धनुष, ये वो जहाज है। जैसे जहाज पे सारे यात्री जब बैठ जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम बैठ गए, अब ये जहाज हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगा। उसी प्रकार ये सातों, यानी सबका संदेह, अज्ञान, राजाओं का अभिमान, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप, ये सब के सब मान लो उन यात्रियों की तरह हैं जिन्हें जहाज की तलाश थी। और अब ये सब किस पर जाकर के बैठ रहे हैं? शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर, यानी शिव जी का वो धनुष है जिसके टूटने से इन सब लोगों की यात्रा पूरी हो जाएगी। ये है इसका तात्पर्य। और ये सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, समुद्र के पार जाना चाहते हैं। बहुत बड़े जहाज की तलाश थी, जहाज मिल गया है और अब लगता है कि सब पार हो जाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं अभी भी एक कठिनाई है, और वो क्या है? कोई केवट नहीं है, केवट की तलाश है। और ये तलाश कैसे पूरी होगी, इसे अगले कार्यक्रम में हम देखेंगे। और आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद, नमस्कार।

चलिए श्रोताओं, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक पहुंचे हैं। जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बनान और क्लिनिक के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओब्लू पुल्ट्री, CWA ओब्लू दस्ते, MTS बनान, CWA पंपिंग क्लिनिक, डोमेन लागाव, हाइड्रोपोनिक बीमानिक और रोटोया क्लिनिक के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 25 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है एडेसे ग्रीगरी, विलाज दे ग्रीगरी और डोमेन ग्रीगरी सुजा के रहने वाले निवासियों को बुधवार 26 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, और अंत में है बोक्लिमा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है विलाज डे ला फ्लोरा और मौसलमा VOS और NHDC de Grandbois के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 25 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो छोटा हुआ भी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। आइए इस कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं एक आरती के साथ। कुछ घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। तो चलिए हमारी ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: एक बार फिर मिलते हैं आशिता रघु से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आशिता।
1: नमस्कार विद्या, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकार अपने डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर रही है। शुक्रवार 21 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐसी पहल पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य सरकारी पोर्टल और सरकार की विभिन्न वेबसाइटों को आधुनिक बनाकर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना है। ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट, एकीकृत और नागरिकों की जरूरतों पर अधिक केंद्रित होगा। स्टैनली गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग जैन के नाम से जानते थे। स्टैनली में जन्मे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई, खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में उनकी अहम भूमिका रही। उनके परिवार के लिए ये फैसला भावुक करने वाला होने के साथ साथ गर्व का विषय भी है। जैन कतारी का नाम किसी स्कूल से जुड़ना उनके लिए उनकी यादों को जीवित रखने का एक माध्यम है। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाला यूनियन सदस्य राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कैसिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कैसिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थिति को लेकर कैसिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। और कैसिनो एम्प्लॉयज यूनियन के नेगोशिएटर अश्विन गुदे के अनुसार कर्मचारी इस प्रदर्शन के जरिए अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के दौरान चुनाव कराना देश के लिए विनाशकारी साबित होगा और ये एक सुनामी की तरह यूक्रेन को तबाह कर सकता है। कीव में इस गर्मी से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, जिसकी शुरुआत लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को पद से हटाए जाने के बाद हुई और कुछ दिनों बाद उन्होंने चुनाव कराने की मांग भी की। और उधर गिरी की राजधानी कोनाक्री में एक बड़े कचरा स्थल पर कचरे का पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर गिर गया, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने बताया कि हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। ये हादसा दार-ए-सलाम इलाके में स्थानीय समयानुसार रात करीब 2 बजे हुआ। रात भर हुई भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर ढह गया। सरकार के मुताबिक मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए सेना समेत बड़ी संख्या में बचावकर्मी और संसाधन तैनात किए गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन अश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में हर पीर की तरह आप समात फरमाएंगे तिलावती कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। 5251-70-05 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। और आपको साथ साथ बताते चलें कि कल मंगल, जी हाँ कल मंगल 25 अगस्त को रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सुबह 9:10 से 11:10 तक आप सुन पाएंगे आलिमिया कॉलेज फिनिक्स हाईलैंड से बराह रास्त लाइव ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। जी हाँ, आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह मोहम्मद की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

सदक़ल्लाहु लज़ीम। पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत क़ुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। वो जो ऐब देख कर भी नफ़रत नहीं करता, वो जो ख़ताओं पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जो बंदों की सिसकियों का भी साथी है, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफ़ी है, वो जिसकी मोहब्बत हर मोहब्बत के आगे नाकिस है, वो जिसे मनाने के लिए एक निदामत का आंसू काफ़ी है, वो जो हमेशा से बाकी है और हमेशा रहेगा, वही हमारा परवरदिगार अल्लाह।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:25 हो चुके हैं। पीर का दिन है, अगस्त की 24 तारीख है और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 11 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ समाप्त फरमाइए चंद ऐलानात। कल मंगल 25 अगस्त फ़जर और असर के दरमियान, जी हाँ, फ़जर और असर के दरमियान दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा इरादन लेन पीज़े वेजिया में ज़ियारत बाल मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाई जाएगी। इसके अलावा सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 यानी बाद नमाज ज़ोहर इस्लामिक कल्चरल सेंटर लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से। और आज 24 अगस्त, जी हाँ, आज 24 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम मजलिस रज़ा प्लेंदे पपाई में आलिमा सैयदा उनाज़ा फ़ातिमा और उस्ताज़ा यास्मीन आज़िया साहिबा की सरपरस्ती में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा, जी हाँ, सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 यानी बाद नमाज ज़ोहर बैतुन्नूर मल्टी सोशल कॉम्प्लेक्स सिते मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में ख़वातीन के लिए द मुस्लिम यूथ फेडरेशन लेडीज़ विंग की जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। और जुम्मा 28 अगस्त सुबह 10 जामिया यूपिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में ख़वातीन के लिए ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। मोहतरमा शैला आपा की सरपरस्ती में बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। इसी के साथ अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावते इस्लामी क़ारी अब्दुलमाजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफहा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो इनके जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउन नूर शरीफ का प्यारा प्यारा महीना हमारे दरमियान मौजूद है। आज हमारे बयान का मौजू है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिसमें हम सुनेंगे कि दरख्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ कैसे चलते।

थे। शान मुस्तफ़ा इज़्ज़त व करामत के सबसे ज़्यादा असबाब क्या हैं, जन्नत व दोज़क की चाबियों के मालिक कौन हैं, शफ़ात पाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, यहाँ तक कि कुशादा वादी यानी खुली हुई एक जगह पर पड़ाव डाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ लेके गए। मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर निगाह अक़दस उठाई मगर सतर और पर्दे के लिए कोई चीज़ नज़र ना आई। एकदम वादी के किनारे दो दरख्त नज़र आए। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक के पास तशरीफ़ ले गए। इनकी टहनियों में से एक टहनी और शाख को पकड़ कर फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे साथ मेरी इताअत में चल। वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सर झुकाकर यूं चला जैसे नकेल वाला ऊंट अपने कायद के साथ सर झुकाकर चलता है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास तशरीफ़ लाए और इसकी शाख पकड़ कर फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी इत्तिबा कर और मेरे पीछे चल। वो दरख्त भी पहले दरख्त की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। हत्ता कि दोनों करीब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान खड़े हुए और हुक्म दिया, अल्लाह पाक के हुक्म से मुझ पर मिलकर पर्दा बनाओ। चुनाचो वो दोनों जुड़ गए यानी मिल गए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं डरता हुआ वहाँ से निकला ताकि कहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे क़ुर्ब का एहसास फरमाते हुए मज़ीद दूर जाने की तकलीफ़ ना फरमाएं। मैं दूर जाकर बैठ गया और किसी ख्याल में गुम हो गया। अचानक देखा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और वो दोनों दरख्त जुदा होकर अपनी अपनी जगह खड़े हो चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे आका हमारे मौला हमारे रहबर शफीए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सब नबियों में अफजल और सबसे आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपकी ज़ात तब से है जब ज़मीन व आसमान भी ना था और ये जहाँ भी ना था। खुद फरमाते हैं, ए जाबिर बेशक बिल यकीन अल्लाह पाक ने तमाम मखलूकात से पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि आप ना होते तो मैं दुनिया पैदा ना करता। यह है शान मुस्तफ़ा के सारे अच्छों से अच्छे नबी सारे सच्चों से सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने लिए वसीला बनाएं। यह है शान मुस्तफ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली मुबारक के इशारे से चाँद के दो टुकड़े फरमा दें। यह है शान मुस्तफ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी को रोशन कर दें और सहाबा इकराम अली मुरिदवान इसकी रोशनी में घर पहुँच जाएँ। यह है शान मुस्तफ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सहाबी रसूल को लकड़ी अता फरमाएं तो वो तलवार की तरह कुफार की गर्दनें उड़ाकर फेंकें। यह है शान मुस्तफ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए सोना हलाल कर दें और किसी एक की गवाही दो गवाहों के बराबर करार दे दें। ए आशिकाने रसूल और सामईन किराम, हमारे नूर वाले आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी निराली है कि उनके रब ने उन्हें शरई अहकाम का भी मालिक व मुख्तार बना कर भेजा। आप जिसे जो चाहे हुक्म दे सकते हैं, जिसके लिए जो चीज़ चाहे जायज़ या नाजायज़ कर सकते हैं। चुनाचे पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलह ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए यह नहीं है कि जब अल्लाह और इसका रसूल किसी बात का फ़ैसला फरमा दें

में अपने मामले का कुछ इख्तियार बाकी रहे और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना माने वो बेशक सरीह गुमराही में भटक गया। तफसीर सिरातुल जिनान वॉल्यूम नंबर 8 में इस आयत मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से शरी अहकाम में खुद मुख्तार हैं, आप जिसे जो चाहे

आने वाली मुकद्दस किताब ज़बूर शरीफ में है, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हुआ सारी ज़मीन और तमाम उम्मतों की गर्दनों का। आका की आमद मरहाबा, दाता की आमद मरहाबा, मौला की आमद मरहाबा, अवला की आमद मरहाबा, आला की आमद मरहाबा, वाला की आमद मरहाबा। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मालिक ना जाने, सुन्नत की मिठास से महरूम रहे, तमाम ज़मीन मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क हैं, तमाम जन्नत उनकी जागीर हैं, मलकूत उस्समावात वल अर्द यानी आसमानों और ज़मीन की सारी बादशाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर फरमान यानी हुकुम मानने वाले हैं, जन्नत व नार की चाबियाँ दस्ते कुदरत यानी हाथ मुबारक में दे दी गई हैं, रिस्क व खैर और हर किस्म की अताएँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दरबार से तकसीम होती हैं, दुनिया और आखिरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का एक हिस्सा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की अता से मालिक जन्नत हैं, जन्नत अता फरमाने वाले हैं जिसे चाहें अता फरमाएं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 71 में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, यानी अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। अल्लाह पाक की अता से मालिक व मुख्तार नबी, अल्लाह के करम से गैबों पर ख़बरदार नबी यानी गैब को जानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को हुक्म दिया कि कुछ देर रुक जाए, वो फौरन ठहर गया। आशिकों के इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमाने आलीशान का खुलासा ये है, ये हदीस उस हदीस के अलावा है जिसमें मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सूरज को रोकने का हुक्म इरशाद फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसे खिलाफत रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं। तमाम मखलूक इलाही को इनके हुक्म की इताअत व फरमा बरदारी लाजिम है, वो खुदा के हैं और जो कुछ खुदा का है सब उनका है, वो सबसे बड़े महबूब यानी प्यारे हैं। जब दूध पीते थे झूले में चांद उनकी ग़ुलामी करता था यानी बात मानता था, जिधर इशारा फरमाते उसी तरफ झुक जाता। जब दूध पीतों की ये ज़बरदस्त हुकूमत है तो अब ऐलान नबूवत के बाद के खिलाफतुल कुबरा का ज़ुहूर जो बनों पर है, सूरज की क्या मजाल के उनके हुक्म से फिरे यानी फरमा बरदारी ना करे।

0: करता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने तीन बार पूछा, इरशाद फरमाया, हाँ, मैं अगर हाँ कह देता तो तुम पर वाजिब हो जाता कि तुम से ना हो सकता, यानी मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता और तुम ये ना कर पाते। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर गिरा यानी बोझ ना जानता तो इन्हें हर नमाज के साथ या हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि हर साल हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता और ये तुम नहीं कर पाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं चाहता यानी उम्मत पर गिरा ना होता यानी मुश्किल ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को हुक्म देता, यानी मिसवाक लाजिम कर देता। अभी मिसवाक वुज़ू के लिए सुन्नत है, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने वुज़ू किया और मिसवाक किया, अब उसी वुज़ू से एक दो नमाज़ें पढ़ेगा तो वो मिसवाक वुज़ू में उसकी सुन्नत उसकी अदा हो गई है। एक हदीस पाक में है, तौरात शरीफ से मालिक व मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ यानी खूबियां मनकूल हैं कि मेरे बंदे अहमद मुख्तार, उनकी पैदाइश की जगह मक्का मुकर्रमा और जाए हिजरत मदीना तैयबा है, उनकी उम्मत हर हाल में अल्लाह पाक की कसीर हम्द यानी बहुत तारीफ़ करने वाली है, क़्यामत के दिन मरतबा शफात कुबरा सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत में से है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात का दरवाज़ा ना खोलेंगे किसी को मजाल शफ़ात ना होगी, बल्कि हकीकतन जितने शफ़ात करने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में शफ़ात लाएंगे। शफ़ात कुबरा मोमिन, काफिर, फरमाबरदार, गुनागार सब के लिए है कि वो क़्यामत का हिसाब शुरू होने का इंतज़ार, जो सख्त जानलेवा होगा उसके लिए लोग तमन्नाएं करेंगे कि काश जहन्नम में फेंक दिए जाते और इस इंतज़ार से निजात पाते। इस मुसीबत से छुटकारा कुफार को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिलेगा, जिस पर पहले और बाद में आने वाले मुवाफिकीन व मुखालिफीन, मोमिनीन व काफिरीन सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करेंगे। इसी का नाम मकाम महमूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, आपने सुना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजीम शान है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने तो कह दिया ना कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। हमें भी चाहिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनें, दिल में इश्क़ मोहब्बत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मज़ीद बढ़ाएं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो इंशाल्लाह जीने का मज़ा भी आएगा और फिर इसकी बरकतें दुनिया में भी पाएंगे और आखिरत में भी पाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इंदेनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद और ऐलानात। इतवार 30 अगस्त यानी कि इतवार 30 अगस्त सुबह 9:30 बजे से हनफिया रज़विया दारुल उलूम और मजलिस नोमान की जानिब से, जी हाँ, जामिया हनफिया एसोसिएशन की जानिब से मौलाना हारून असैन की सरपरस्ती में दारुल उलूम शुमे गैनिये, जी हाँ, दारुल उलूम शुमे गैनिये लेन में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। इतवार 30 अगस्त

सुबह 9:30 बजे। इसके अलावा आपको एक बार फिर हम बताते चलें कि कल सुबह, जी हाँ कल सुबह, रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सुबह 9:10 से 11:10 तक आप सुन पाएंगे आलिमिया कॉलेज फिनिक्स हाइलैंड्स की जानिब से बराह रास्त लाइव ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सुबह 9:10 से। इसके अलावा पीर 24 अगस्त, जी हाँ आज पीर 24 अगस्त बाद नमाज ईशा अब्दुल कादिर सुबाची हाइलैंड्स फिनिक्स में ज़ियारत बाल मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाई जाएगी बाद नमाज ईशा। और कल 25 अगस्त, जी हाँ कल 25 अगस्त अब्दुल कादिर सुबाची हाइलैंड्स फिनिक्स में दिन के 2:30 से दिन के 3:30 तक के दौरान जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा नमाज असर से नमाज मगरिब तक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है अब्दुल कादिर सुबाची हाइलैंड्स फिनिक्स में हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद और खानकाह अशरफिया गरीब नवाज सोसाइटी की जानिब से। अब जो कलाम आप समात फरमाएंगे इसकी फरमाइश हमसे की है नोगेज़ा ने, आइए समात फरमाइए।

जैसा मीन हमें बहुत से पैगाम मौसूल हो रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। गिविया जोगोंपा से शाहान, जी हाँ, गिविया जोगोंपा से शाहान तमाम मुसलमानों को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसके अलावा खाला हुमैरा और अपने नाना मुमताज़ के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा भुआली फैमिली की तरफ से नाजिम भुआली के लिए ढेर सारी दुआएं और प्यार भेजा गया है, और हबीबा जुलिया के लिए भी दुआएं भेजी जा रही हैं। बेटे मुस्लिम इम्तियाज़, बहू रुखसाना, यास्मीन, बेटियां नाजीला, आमीना, नाजिमा, वाहिदा, और पोते पोतियाँ जहरीन, अमीरा और जयान, नेहान, एजान, और ये लोग तमाम मुसलमानों को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। और शाहाना जुमन भी तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भेज रही हैं। इसके अलावा काठगोबोन से वाहिदा जीवन तमाम सुनने वालों को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और फरमाइश कर रही हैं, फलक के नज़ारों जिसे आप थोड़ी ही देर में समाअत फरमाएंगे। इसके अलावा सलीम

रकीबा रेहान इस्माइल नासिर नाजमा मोंगू से माहे रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और न्यूकोव की फ़ातिमा भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं। इसके अलावा एक कलाम की फरमाइश भी कर रही हैं और काथोबोन से यास्मीन भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश कर रही हैं और आसिया भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सब को हमेशा सलामत रखे, तमाम मरहूमीन को अजाब कब्र से महफूज रखे, आमीन। तो आइए ये कलाम समाप्त फरमाइए काथोबोन की वाहिदा की फरमाइश पर।

मौजूद सामेईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप तमाम सुनने वालों को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह 9:10 पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: समय थे उसे बपोर ना पूर्णा भी
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग रंगा।

一秒长文嘛，方寸在千秋。每组服装真系客家疆土传家，尊师送佛最先发的历史见证。

घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पर मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर, जहाँ कहीं सभी जुड़े हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सोमवार का दिन स्फूर्ति और बहुत सारी एनर्जी के साथ अपने काम में लगे होंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में लाजवाब गीतों का ये सफर रहेगा, क्योंकि ये है आपकी पसंद का कार्यक्रम जहां पर आप ही के पसंदीदा गीतों को हम चलाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जुड़ने के लिए बेशक आपका सबसे प्यारा नंबर

पर 4028085 पर आप डायल करें और हमारे साथ बात करें, अपने गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचाएं। आज के दिन को और भी खास बनाइए अपनों के लिए, और अगर मैसेज करना चाहते हैं तो 5251700 पर हमसे संपर्क बनाएं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक मशहूर गीत के साथ, और ये गाना है लता जी की प्यारी सी आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया से।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और बिल्कुल इस वक्त सावन का महीना और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए इस अगले फरमाइश को लेते हैं। आज की जो पहली फरमाइश आई है फिल्म गृहस्थी से लिया हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इस गीत को पसंद किया है रफ़िक दौलत जी ने प्लनमाइयों से उनकी प्यारी बेगम नूर जहाँ के लिए।

चलिए इसी के साथ कल हमारे मुसलमान समुदाय के जितने भी भाई बहन लोग हैं यमुना भी मनाएंगे, इसके अवसर पर हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी दुआएं। और इसी के साथ हाफिज इस वक्त हमारे साथ है लावेनिया से, और इस गीत का, इस फिल्म का गीत उन्होंने मांगा है जो है हातिम ताई, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना हम करेंगे उनकी प्यारी बहन राइसा और भाभी है उनकी सबीरून और सभी बाबा साहेब और हुसैन बख्श परिवार के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, इस वक्त बिल्कुल 3:45 को है। 3 बजे हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ। फिलहाल आपकी पसंद का ये कार्यक्रम जारी है और इस वक्त सलोनी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वे कह रही हैं कि उनके प्यारे पति गिरीश के नाम करना चाहेंगी ये अगला गाना जो है फिल्म बॉर्डर से लिया हुआ, और उनको बॉर्डर का ये गाना, उनके पति को बॉर्डर का ये गाना बेहद पसंद आता है। तो चलिए इस गीत को साथ मिलकर सुनते हैं।

0: भाई आते तो हम रोज हैं, बिल्कुल 2:30 बजे आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में, जहां पर लंबे गाने हो, छोटे गाने हो, चाहे गाने कोई भी हो आपकी पसंद के हो, बस हम तो चलाने की पूरी कोशिश में लग ही जाते हैं। और
1: आपकी पसंद,
0: चलिए 2:55 हो चुके हैं और लाजवाब गीत के बाद लेते हैं ये अगला गाना, जो है फिल्म रंगोली से लिया हुआ। संध्या जी जो इस वक्त कौफुखो से हमारा साथ दे रही हैं और अगले गीत की फरमाइश कर रही हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा उनके सभी दोस्तों के नाम, देविका, वीना, प्रतिमा, शोभा। वैसे दोस्तों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, पर भाई सभी के नामों को शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सभी परिवार के लिए हम ये गाना दिल से चलाएंगे। और वैसे आपको याद दिला दें, ये गाना हमें जोड़ेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ, तो समाचारों के बाद कारवां को जारी रखा जाएगा शाम के 4 बजे तक, इसीलिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। दुनिया छोटी है और संजाने राहों में कुछ जाने पहचाने दोस्त बस यूं ही बन जाते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 3 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये दुखद खबर जो कल से सबको झकझोर रही है, एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी शुरू हुआ था अब नहीं रहा। कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला। हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है। उसे कल रात ही पोटलिनोव की CID ने गिरफ्तार किया। जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकारा कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया था। उसने कहा कि उसे उस समय कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी। उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स लिया था। कटर को जब्त किया गया। आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया। कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है। बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था। इस दुखद घटना पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री यागया नवामारी ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की औपचारिक शुरुआत 7 अक्टूबर को मॉरिशस में की जाएगी। ये फैसला अफ्रीकी संघ के स्तर पर चलाए गए एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस महाद्वीपीय रेटिंग एजेंसी की मेजबानी के लिए मॉरिशस

0: शस्काचयन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में देश की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है, साथ ही इससे अफ्रीका की वित्तीय व्यवस्था में मॉरिशस की भूमिका और सुदृढ़ होगी। मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस फैसले पर गौर किया। विदेश में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र वाले नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा इसके लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस पहल का मकसद है नौजवानों की सुरक्षा करना, खासकर सोशल मीडिया के खतरों के खिलाफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी होगी नौजवानों की उम्र का आश्वासन लेना। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 12:30 PM। नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरदत्त श्यामलाल जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके भाई आनंद कुमार श्यामलाल के मकान नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:04 PM। रॉयल रोड पृथ्वीविया में नंबर सात सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटली में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती जोधन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे लाशापेला दौंग दुमुहा रॉयल रोड पृथ्वीविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 12:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस।
2: बिल्कुल इस समय 3:04 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नज़र डालते चले। ये विज्ञप्ति है ईडीसी घ्रीघ्री और घ्रीघ्री गांव के साथ साथ दुबैन घ्रीघ्री सुयाक के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 26 अगस्त को यानी कि परसों सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ बोकलीमों और लाफलोगा गांव के निवासियों को और साथ ही साथ मौसलमों वीआरएस एनएचडीसी और घोंबुआ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: 819 kHz, this is Radio Mauritius।
2: आपकी पसंद में पुनः आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आपकी सेवा में और बिल्कुल इस वक्त 3:06 हो चुके हैं। तो चलिए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। लाजवाब गीतों का ये कारवां और ये गाने आप ही के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। तो शकुंतला जी हमारे साथ बहुत ही पहले से जुड़ चुकी हैं और उनकी प्यारी भाभी प्यारी ननंद गायत्री, साथ है उनके बेटे अजय, बेटी सुनीता जो है नवेलफोंस से और साथ ही साथ बेटी प्रीति, नातिन है जेसना जो है कौंजाब से और सभी परिवार के लिए उन्होंने सावन के मास पर कोई गाना हो। तो चलिए जब सावन के महीने का नाम आता है तो मिलन फिल्म का ये गाना बहुत याद आता है। तो इस गीत को आइए सुनते हैं लता जी और साथ दिया है मुकेश साहब ने।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

चलिए इसी के साथ काली टोपी लाल रुमाल ये गाना मांगती हैं रिहाना जी नॉर्थ दाम से दगा दगा वही वही लता जी की आवाज में और ये गाना जाएगा माला फाउदा उनकी खास सखी और साथ ही साथ सुरेखा जी उनकी प्यारी दोस्तों के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए ऐसी उल्फतें होने नहीं देंगे और प्यार भरे गीतों का ये सफ़र है जहाँ हमारी कोशिश बिल्कुल जारी रहती है आपके किसी भी ख़ास मौके के साथ आप जुड़ सकते हैं। और बस हमारे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि सभी के गीतों की फरमाइशों को पूरा करना। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारी शोभा बंधु जी जो हैं बूंदिया वाकवा से, और 22 तारीख को उनके प्यारे नाती उनके प्यारे पोते ध्रुव का जन्मदिन था। बिल्कुल 10 वर्ष के हो चुके हैं, हालांकि वे हैं इंग्लैंड में। पापा अश्विन, मामा चांदनी, दादी शोभा, साथ ही साथ दादी उषा और उनके चाचा है रोशन जो है ऑस्ट्रेलिया से, पुपू है निर्मला, पुपू करुणा और पुपू शर्मिला की ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ ध्रुव को ढेर सारी बधाइयाँ 10 वर्ष के इस आयु पर। और बिल्कुल आप आगे बढ़ें जीवन में, आगे अपने अपना नाम कमाएं, माता पिता का नाम रोशन करें। और इसी के साथ आइए आज के इस गीत को हम सुनते हैं खास उनके लिए, उनकी दादी की ओर से।

और चलिए इसी गीत को हम करना चाहेंगे शिमला जी की ओर से। बिल्कुल से साथ दे रही है उनकी दीदी रूमा, आरती, इंदिरा, भाई है धीरज, राकेश, बेटा नमलेश, बेटी कृतिना।

0: की पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं। 3:21 हो चुके हैं और बिल्कुल वाकवा से विश्वानी दुबन हमेशा की तरह साथ जुड़ी हुई हैं। बहनें इंदिरा और शारदा, साथ है सखी नीला और प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर का नाम लेना वे कभी नहीं भूलती, और श्रीमान आशिक का ये नया गाना है। कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बिल्कुल प्यार में वो ताकत होती है जहाँ पर प्यार की लत किसी को लग जाती है या प्यार का जादू दिल में बस जाता है, वहाँ किसी को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। पर हम तो अच्छे से यहाँ पर आपके साथ निभा रहे हैं यहाँ पर और जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल राखी रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है और इसी उपलक्ष में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये गाना है फिल्म लागी नाही छूटे राम से लिया हुआ। श्यामा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं घोंघुप से, उनके सभी परिवार सभी भाई बहनों के नाम करेंगे ये अगला गीत।

वही श्रावण का पावन मास, और इस पावन मास में इतने सारे पर्व, और बिल्कुल आज श्रावणी सोमवार, आखिरी सोमवार है, तो आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला गीत जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लिया हुआ ये गीत, और ये गाना जाएगा माया जी, जो इस वक्त मोताई ब्लॉश से जुड़ी हुई है, और बिल्कुल सभी को श्रावण के इस पावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। वैसे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल बहुत ही प्यार से साथ दे रहे हैं। अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लैक्स से है, उनके पति राज, बेटा अंतिश, अंकुश, बहू है मनीषा, अशिमा, पोती है हिमेशा और राध्या, साथ है पोता अंश, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

जिंदगी में ऐसी ही ऊर्जा हमेशा बनी रहे, हर दिन आपके लिए नई उमंग लेकर आता है। और चलिए यहाँ पर बहुत प्यार से जन्मदिन मना रही हैं तन्वी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तन्वी आपको, आपके पापा कमल, मामा है उषा, दादी अनीता और भाई है नकुल, साथ ही साथ सभी फूफू दादी यानी सुनीता, साथ है विमला, अमृता और वीना जी जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं गोंगुप से, आपको बहुत

0: सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद हमारी पूरी टीम की ओर से। और चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है बंधु परिवार, जो इस वक्त हमारे साथ रियोले से साथ दे रहे हैं। और अगला गाना जो है आया सावन जूम के से लिया हुआ ये गीत हम उनके नाम करते हैं।
1: नजर वो,
0: वैसे इस वक्त वाकवा से नंद परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बस कोशिश हमारी है कि हम सभी के गीतों को, सभी की फरमाइशों को पूरा करें, पर कई बार नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है, पर नामों को लेना हम नहीं भूलते।

0: दोस्तों।
1: भाई जो ये उसूल पाल लेता है उनकी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। और चलिए इसी के साथ एक और लाजवाब सी आवाज, और ये है बहुत ही प्यारा सा गीत शोला और शबनम से लिया हुआ, और ये गाना जाएगा हरीश जी की पसंद पर। बुबासन से वे साथ दे रहे हैं और ये गाना हम उनके नाम करना चाहेंगे। वैसे आप सभी को याद दिला दें, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा शाम के 4 बजे तक। और चलिए यहाँ पर आशा जानू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कॉटेज से। ममा कुमारी दीदी है, आरती जीजू राज, ऋषभ और शुभम दो प्यारे नाती, और नाम जोड़ती हैं वे विजय बंधन जी का और चित्रा जी का। और सभी को अंतिम श्रावणी सोमवार की ढेर सारी

जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है मेरे दोस्त, पर प्यार हमेशा रहता है। चलिए इस प्यार को बिल्कुल जिंदा रखते हैं। और मनीता जी इस वक्त हमारे साथ है और ममता फिल्म का ये गाना भी मांगती है। सेंट जूलियन से उनकी प्यारी ममा सुमंती, बहने हैं आरती, संचिता, बबीता, रेखा, भाई है सत्यम, भाभी है उषा, साथ है राहुल, यादव और केशा। और यही गाना हम करना चाहेंगे उमा जी के लिए जो इस वक्त क्यूपिप से हमारे साथ जुड़ी हुई है।

आपकी पसंद। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे इस आखिरी गीत के साथ। बजरंगी भाईजान का ये गाना अमीना जी पोंफाले से अपने सभी परिवार और खासकर बिहारी परिवार के नाम करना चाहेंगे, और सभी मुसलमान भाई बहन जो कल ईद मिलाद उन नबी मनाने जा रहे हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो चलिए इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, और बिल्कुल 4 बजे आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम जो होगा डॉक्टर अलका दंपत जी की प्रस्तुति में क्षितिज। और बिल्कुल इस कार्यक्रम में उनका साथ देंगे गुरुजी शंभू जी। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा, और यूं ही फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
2: क्षितिज विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, अगस्त का महीना बहुत बड़े बड़े रचनाकारों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसे रचनाकार का नाम अगस्त के महीने में आता है जिसका जन्म भी अगस्त के महीने में है और मृत्यु भी अगस्त के महीने में है। खैर, रचनाकार की ओर तो अब हम बढ़ेंगे, पर पहले हम श्री धनराज शंभु जी का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम दोनों मिलकर प्रस्तुति देंगे हरी शंकर परसाई पर। श्रोताओं, एक अलग तरह का लेखक है, हंसता है, हंसाता है, लेकिन उस हंसने में एक ऐसी चुभन देता है कि भाई अगर बदलोगे नहीं तो समाज वर्षों तक रोएगा। इसे कहते हैं व्यंग्य। क्यों शंभु जी, आप भी तो लेखक हैं, तो हाँ, कुछ बताइए व्यंग्य के बारे में।
3: बिल्कुल, सबसे पहले मैं भी अपनी ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, और जितने लोग भी देश के बाहर से भी सुन रहे हैं उन सभी को भी हार्दिक नमन करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर अलका जी ने अभी अभी बताया कि आज हम हरिशंकर परसाई पर विशेष बातें करेंगे, और आपको पता ही है कि वे हास्य व्यंग्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक है। पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हास्य व्यंग्य क्या है, क्योंकि यह एक नई विधा है। हम कहते हैं नई विधा है, लेकिन बाद में हम पता लगाएंगे कि ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो हास्य व्यंग्य साहित्य की एक कला है, एक कला की शैली है, जिसमें इसी मजाक हंसी मजाक के माध्यम से समाज, राजनीति, धर्म या मनुष्य की कमियों, बुराइयों और पाखंडों का करारा प्रहार किया जाता है। इसी का उद्देश्य केवल हंसाना नहीं, बल्कि समाज को सचेत कराना और सचेत की भावना जगाना है। मनोरंजन के साथ वैचारिक चुभन या वेदना होती है, जो सोचने के लिए विवश करवाता है। राजनीति, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों, ढोंग ढकोसलों को पाठकों व समाज के सामने लाना इसका परम उद्देश्य है। हंसी के साथ

0: व्यंग्य द्वारा लोगों की आँखें खोलना है। इसके शब्द चुने हुए चुटीले होते हैं, जैसे चूहा फूक फूक कर काटता है वैसे ही हास्य व्यंग होते हैं। वह जहाँ लोगों को हंसाता है वहीं सुई की तरह कभी कभी चुभाता भी है।
1: इसे और ये चुभन बड़ी गहरी होती
0: बहुत
1: है।
0: गहरी होती है। इसे कहा जाता है कि इसे अंग्रेजी शब्द सताया का हिंदी रूपांतर है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह काफ़ी प्राचीन समय से हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है।
1: मैं तो शंभू जी जोड़ना चाहूंगी, हमारे शास्त्रों में तो विदूषक हुआ करते थे,
0: बिल्कुल
1: नाटकों में प्रस्तुतियों में, तो ये विदूषक शब्द उसी तरह का ही था जो हंसाते थे और समाज की बुराइयों पर चलते चलते शब्दों की चोट भी किया करते
0: बिल्कुल।
1: थे।
0: और यह माना जाता है कि साहित्य सच्चिदानंद की प्राप्ति
1: जी जी बिल्कुल
0: करवाता
1: बिल्कुल
0: है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हास्य और व्यंग, जो हास्य होते हैं वही तो आनंद पैदा करते हैं, और उसी के माध्यम से हम हास्य और व्यंग्य को समझते हैं। और उसी समय से मैं कहता हूं कि हास्य और व्यंग्य की शुरुआत हो चुकी है।
1: और श्रोताओं, तेनाली रामा, बीरबल, इन सबको तो हम भुला ही नहीं सकते। भरे दरबार में ऐसी बात कह जाया करते थे कि बड़े बड़े चौंक जाते थे। परसाई जी भी स्वयं कहते हैं, मेरे व्यंग्यों का उद्देश्य केवल किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। और अपने एक साक्षात्कार में वे कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान जरूरी है, फिर लेखक के भीतर संवेदना होनी चाहिए और फिर अनुभव उसे जोड़ना चाहिए। परसाई जी कहते हैं, हर समय मैं एक कॉपी अपने पास रखा करता था और कहीं भी किसी बातचीत में, किसी घटना में, किसी अनुभव में, किसी काम में, जैसे ही मुझे कोई नया शब्द, नया अनुभव, नया मुहावरा, नई अभिव्यक्ति मिलती थी, मैं झट से उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया करता था। तो श्रोताओं, आप याद करिए प्रेमचंद को, वे भी कहते थे, जब तक सोने से पहले मैं कुछ लिख ना लूँ मुझे लगता है कि मैंने आज की रोटी नहीं कमाई है। तो परसाई जी भी देखिए, मतलब जो बड़े रचनाकार होते हैं वे कैसे अपनी रचनाओं में डूबे हुए रहते हैं। और बताना चाहती हूँ कि वे शुरू में एक अध्यापक थे, लेकिन सृजनात्मक लेखन वे बचपन से करते थे। पर आप जानते हैं, जब कोई अध्यापक होता है तो छात्रों के साथ काम करते करते समय कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो चलते चलते उन्होंने स्वतंत्र लेखक को लेखन को अपना लिया और फिर उन्होंने अध्यापन पद से एक तरह से त्यागपत्र दे दिया था। मुझे लगता है आज उनका परिचय हमें ज़रूर अपने श्रोताओं को सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं उनके परिचय के विषय में कहना चाहूँगा कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 जमानी सेंट्रल प्रोविंसेस बेरार ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में
1: जी।
0: उनकी 70 साल की आयु में जबलपुर मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई।
1: उनका
0: थी।
1: जन्म भी मध्य प्रदेश
0: हाँ,
1: का
0: मध्य
1: है, मृत्यु भी वहीं पर हुई।
0: वहीं पर हुई और दोनों ही अगस्त में
1: जी जी बिल्कुल,
0: जन्म भी और उनकी मृत्यु भी, ये शायद ही
1: कम ही रचनाकार को मिलता है।
0: पेशे से रचनाकार, जैसे अभी आपने बताया कि वे अध्यापन का कार्य करते थे, फिर उन्होंने त्याग पत्र देकर स्वतंत्र रूप से रचना करने लगे और विशेष रूप

0: रचनाकार को मिलता है।
1: पेशे से रचनाकार, जैसे अभी आपने बताया कि वे अध्यापन का कार्य करते थे, फिर उन्होंने त्याग पत्र देकर स्वतंत्र रूप से रचना करने लगे और विशेष रूप से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और 1992 में शरद जोशी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ,
0: क्योंकि शरद जोशी स्वयं एक बड़े व्यंग्यकार हैं, और उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार है।
1: बिल्कुल। और जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो मैंने देखा कि वे एक पत्रिका में प्रथम रचना उन्होंने छपवाई थी, जिसका नाम था, पत्रिका का नाम था वसुधा
0: जी,
1: और वसुधा पत्रिका में उन्होंने अपनी प्रथम रचना छपवाई
0: थी। शंभू जी, बताना चाहूंगी वे वसुधा के संपादक भी थे।
1: हाँ,
0: लेकिन बाद में धनाभाव के कारण इस पत्रिका को बंद करना पड़ गया था।
1: हाँ, और बाद में मैंने देखा कि वे कॉलमनिस्ट के रूप में, मान लिया जाए, एक अखबार, एक देशबंधु नाम के अखबार में वे लिखा करते थे, और उसका विषय था कि हरिशंकर परसाई से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। मैं जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर शंभू जी, कमलेश्वर जो बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुए हैं, वे कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य रहा, मैंने जितने भी पत्रिकाओं को संपादित किया उसमें परसाई जी जरूर छपे, और सबसे बड़ी बात वे कहते हैं कि कभी कभी तो परसाई जी का लेख जो आता था उसके बाद मैं संपादकीय लिखता था, क्योंकि वे इतने जागरूक थे परसाई जी कि जब मैं उनके लेख या उनके स्तंभ पढ़ता था कुछ ना कुछ उसमें नया ही मुझे मिलता था। इसी तरह से धर्मयुग के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के वे लगातार स्तंभ लेखक रहे, और कभी कभी तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि धर्मयुग में एक ही महीने में उनके कभी कभी दो दो स्तंभ छपते थे। और सबसे बड़ी बात कि लोग उनके स्तंभों का इंतजार किया करते थे, धर्मवीर भारती हो जो संपादक थे धर्मयुग के, या बेनेट कोलमैन जो मैनेजिंग कमेटी थी उनकी, मतलब पाठकों की इतनी मांग थी कि परसाई जी को रोकना बड़ा ही असंभव था, तो वे लोग इनके कारण उनकी प्रतियां भी अधिक बिका करती थीं। ऐसे ही सारिका के लिए तो कमलेश्वर जी कहते हैं कि जब परसाई जी उसमें छपते थे हमारी बिक्री डबल हो जाया करती थी, तो आप सोचिए साहित्यकार या लोग उनको कितने प्यार से पढ़ते थे।
1: और मैंने देखा अपने जीवन काल में उन्होंने 28 ग्रंथों की रचना की, जो साधारण कम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम विस्तार पूर्वक जाएंगे तो उनके 33 हास्य व्यंग्य रचनाएं संग्रह है, 16 निबंध संग्रह, 3 कहानियां, और बच्चों के लिए भी उन्होंने एक रचना की है,
0: अच्छा,
1: बाल रचना है, और 3 उपन्यास
0: जी,
1: 1 पत्र संग्रह और संस्मरण 3 है।
0: मतलब बहुत सी विधाओं में, गद्य की विधाओं में उन्होंने खूब प्रयोग किए,
1: बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की, और उनकी रचनाओं के जो शीर्षक होते थे वे बहुत आकर्षक होते हैं, लोगों को बहुत पसंद होता था।
0: उनका एक निबंध लेख है ना, चूहा और मैं,
1: हाँ,
0: तो देखते ही लगता है चूहा और मैं, चूहा क्या है इसमें।
1: जैसे एक दो मैं व्यंग
0: जी, जी,
1: का शीर्षक मैं बताऊंगा, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह उनकी सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना है जिस पर उनको पुरस्कार भी मिला था। 2 नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का दौर, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, वह जो आदमी है ना, पिटने पिटने में फर्क
0: जी,
1: बदचलन, एक अशुद्ध बेवकूफ, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इस प्रकार व्यंग के बहुत सारे शीर्षक हैं जो बहुत आकर्षक है, और जिसे सुनते ही या पढ़ते ही हमें पूरा पढ़ने का मन लग जाता है।
0: मैं तो जब पढ़ रही थी मैंने जो पाया, मुझे बहुत मुस्कुराहट और हंसी उस समय आई। व्यंग्यकार हिंदी के रविंद्रनाथ त्यागी, वे कहते थे हिंदी साहित्य के दिलीप कुमार थे वे, इतने ज्यादा वो प्रसिद्ध
1: थे।
0: और रविन्द्रनाथ त्यागी ने बड़ी सुंदर उनके लिए बात कही कि अगर आपने आज़ादी के पहले का हिंदुस्तान देखना हो, जानना हो, तो प्रेमचंद को पढ़ डालिए, और अगर आपने आज़ादी के बाद का दस्तावेज कहीं देखना हो तो आप हरिशंकर परसाई को पढ़िए, क्योंकि उन्होंने बीमार व्यवस्था को बदलने की वो जो तड़प उनमें दिखती है ना, उसे व्यक्ति जो है वो अंदर तक उसे चुभता है, और वह उसे समझने का प्रयास करता है, और बखिया तक उधेड़ते हैं जैसे कबीर किसी को छोड़ते नहीं थे। इसी तरह से उनका जो एक सारिका में स्तंभ निकलता था, कबीरा खड़ा बाजार में, इसमें उन्होंने देश विदेश के लोगों के इंटरव्यू काल्पनिक रूप से लिए और

0: क्वेश्चन और खुद ही उससे उन्होंने जवाब लिखे थे, एक साक्षात्कार शैली में स्तंभ छपा था। कभी कभी सेंसर बोर्ड कई चीज़ों को काटता भी था। और सबसे बड़ी विशेषता उनके लेखों की या व्यंग्य की कि डिक्टेशन वे कभी कभी पहले खुद लिखते थे, बाद में इतना काम बढ़ गया कि उन्होंने एक साथी को रखा था, वे डिक्टेट करते थे तो वह लिखता था। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने वह डिक्टेशन वह सीधा ही छपने के लिए भेजते थे, कभी अपने पास कोई संग्रह नहीं रखा उन्होंने, इतना आत्मविश्वास था उनमें।
1: ये ऐसा लेखक कर सकता है जिनको भाषा पर
0: अधिकार हो,
1: अधिकार हो।
0: सही कह रहे हैं।
1: और उन्होंने अपने मान लिया जाए अपने विद्वता का परिचय अपने रचनाओं के माध्यम से हमें।
0: शंभु जी, समय भाग रहा है और यूसुफ जी ने मुझे संकेत कर दिया है, तो क्यों ना कुछ उनके कोट्स की चर्चा करें हम, ताकि वो एक तरह से मशाल की तरह होती हैं, कोटेशंस जो होती हैं या सूक्ति वाक्य उनके।
1: उनके रचनाओं में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनको हमें सुनना या पढ़ना बहुत आवश्यक लगता है। मैं एक दो बोलना चाहूँगा।
0: मैं भी ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगी, चलिए।
1: पहला, व्यभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है। व्यंग्य रचना है तो व्यंग्य शैली में लिखी।
0: एक सूक्ति मैं पढ़ती हूँ। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है।
1: दूसरा है, इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।
0: वे कहते हैं, तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है।
1: जो कौम भूखी मरे, जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वे अपने दिन कैसे बदलेंगे।
0: कितना बड़ा आश्चर्य और कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह
1: है
0: आज की पीढ़ी पर भी, जो सोशल मीडिया पर लगी रहती है। वे कहते हैं, गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है, पैसा खाने वाला सबसे डरता है।
1: अच्छी आत्मा फोल्डिंग चेयर की तरह है, जरूरत पड़े तो फैला कर बैठ जाए, नहीं तो मोड़ कर कोने में ठिका कर रख दें।
0: क्या बात है। और आज की पीढ़ी के लिए वह कहते हैं, हर पीढ़ी को यह भ्रम होता है कि पिछली पीढ़ी बेवकूफ थी और अगली पीढ़ी नालायक होगी। तो बहुत ही सुंदर अपनी व्यंग्य रचनाओं में उन्होंने समाज को जगाने का बड़ा ही प्रयास किया। प्रेमचंद के जूते उनका चलते चलते मैं बात करना चाहूंगी।
1: हाँ।
0: व्यंग्य निबंध है, क्योंकि प्रेमचंद ने सामाजिक
1: फटे जूते
0: कि प्रेमचंद ने समाज की बुराइयों पर ही हमेशा प्रहार किया। तो एक चित्र में उन्होंने प्रेमचंद को बैठे हुए देखा कि उनके जूतों में से उनके अंगूठे बाहर निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा, लिखा उन्होंने अपने व्यंग्य में, प्रेमचंद के फटे जूते, समाज की बुराइयों पर लगातार पैर मारते रहे आप, इसी ठोकर के कारण आपके जूते फटे हैं ना, लेकिन हम बुराई से बचकर निकल जाते हैं तो हमारा जूता ऊपर से तो ठीक रहता है लेकिन नीचे से घिसता है। तो श्रोताओं, आप सोच सकते हैं इस चित्र को कितनों ने देखा, लेकिन परसाई जी के अंदर तक उसने कैसा भाव पैदा कर दिया कि आज जब हम इस निबंध को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद का चित्र भी सामने आ जाता है और पता चलता है कि हम में और प्रेमचंद में कितना अंतर है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, लेकिन समय हो चुका है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि स्वाध्याय करें और हरिशंकर परसाई को ज़रूर पढ़ें। यह दिल का लेखक है, यह समाज को बदलने का व्यंग्यकार है।
1: बिल्कुल, हरिशंकर परसाई के बारे में जो हमने प्रस्तुति दी वो तो सागर से सिर्फ एक बूंद की तरह।
0: सही बात है।
1: बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे विचार हैं, उन्हें पढ़ने से ही हमें मान लिया जाए सुख मिल सकता है, खुशी मिल सकती है।
0: तो श्रोताओं, बस इसी के साथ अलका धनपत और श्री धनराज शंभू जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुभ संध्या।
2: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
3: ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది కిలోహెర్ట్జ్ రేడియో మారిషస్ ఛానల్ మీద సాంస్కృతాధ్యాత్మిక పెన్నిధి తెలుగు సన్నిధి తెలుగు సన్నిధి తెలుగు సన్నిధి

बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।

नमस्ते दोस्तों, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना और एक बार फिर आ पहुंची हूँ आज के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहाँ पर बचपन की कुछ यादों को हम ताज़ा करेंगे और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उनके बारे में भी कुछ लाजवाब बातें आपसे हम शेयर करते चलेंगे। जी हाँ, आधे घंटे का ये सफ़र है और आधे घंटे के सफ़र में आशा करते हैं कि आप भी काम से थोड़ा सा समय निकाल चुके होंगे, बच्चे जो हैं वो ट्यूशन से घर वापस आ चुके होंगे। तो आज के इस बचपन ऐसा कार्यक्रम में आइए बातें करते हैं। जैसे हमें याद है कि बचपन के दिन बहुत ही सुनहरे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ बचपन की यादें हम आपके साथ साझा करेंगे। पर गीतों का सफ़र है और गीतों का भी मनोरंजन जारी रखा जाएगा। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं और बातों को जारी रखेंगे इस गीत के बाद।

0: एल्बम
1: हम
2: बचपन ऐसा कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और आज की बातें बिल्कुल हम कुछ बचपन की बातों को ताज़ा करेंगे। बचपन ऐसा जहाँ पर हमारे दादा हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे घर में उन्होंने हमें कितनी अच्छी अच्छी आदतें दी। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में सुबह सवेरे जैसे ही उजाला होता है, बिल्कुल आज के समय में भी जब उजाला होता है तो जो पशु पक्षी हैं जो पंछी हैं वो अपनी चहचहाहट से हमारे सुबह को और भी सुरीली बनाते हैं। आप में से कितने हैं जो सुबह कुछ पल के लिए अपना समय इस प्रकृति के साथ बिताते हैं? बहुत कम लोग। और आज के समय में हम इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में फंसे हुए हैं कि इन सारी प्राकृतिक सुंदरताओं को हम देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे हाथ में आ जाता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, वो है हमारा मोबाइल। वैसे हम दोस्त भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है बिल्कुल हमें अपने परिवार से दूर कर चुका है, अपने रिश्तेदारों से हमें दूर कर चुका है और हम इतना ज़्यादा इस छोटे से मोबाइल में फंस के रह गए हैं जहाँ पर इस सारी प्रकृति सुंदरताओं को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। सही कहा ना? तो चलिए अभी थोड़ी ही देर में आपको बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रकृति भी सिखाती हैं। बचपन ऐसा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।

0: संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि ये जो प्रकृति है ये भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। जी हाँ, हमें आजकल इन्फॉर्मेशन गूगल पर मिल जाती है, पर आपने कभी पक्षियों को देखा है? आइए, पक्षियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो पक्षी हैं, रात होते ही यानी सूरज के ढलते ही कुछ नहीं खाते, इसीलिए तो सेहतमंद रहते हैं, इसीलिए तो हल्के फुल्के रहते हैं। रात को वे घूमते नहीं, घूमते फिरते नहीं, जैसे ही अंधेरा हुआ तो वे शांति से सो जाते हैं अपने अपने घोंसलों में। अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। प्रकृति के हमारे जो पशु पक्षी हैं वे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे पक्षियों से देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंधेरा होते ही वे कुछ नहीं खाते, रात को वे टहलते नहीं, घूमते फिरते नहीं, जागते नहीं रहते। अपने बच्चों को भी वे यही समय सिखाते हैं। पक्षी कभी ठूस ठूस कर खाना नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हों, थोड़ा सा खाकर उड़ जाते हैं, साथ में कुछ नहीं ले जाते। पक्षियों को अगर देखा जाए तो रात होते ही वे सो जाते हैं, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, गाते हैं, चहकते हैं और दूसरों का मन भी खुश रखते हैं। इतना ही नहीं, पक्षी जो हैं वो अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा कभी आराम नहीं करते। उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लिवर सभी निरोगी रह सकते हैं। पक्षी जो हैं वो अपना आहार कभी नहीं बदलते, यानी जो मनमर्जी आए वो नहीं खाते, जो उनके सेहत के लिए अच्छा है केवल वही ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, आपने अगर कभी पशु पक्षियों को देखा हो तो अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो वे खाना छोड़ देते हैं। आज की भाषा में जैसे हम कहते हैं फास्टिंग, बिल्कुल तभी खाते हैं जब उनकी सेहत अच्छी होती है। अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं, शिकायतें नहीं करते कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बिल्कुल, प्रकृति से हमें बस यही सीखना है कि प्रकृति से उतना ही लेना जितनी आवश्यकता हो। ये है हमारी प्रकृति जो हमें बहुत कुछ सिखाती है।

तो दोस्तों, बचपन ऐसा कार्यक्रम हमने साथ मिलकर सुना प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और बिल्कुल आज की जो कहानी थी वो प्रकृति से हम क्या सीखते हैं, प्रकृति से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, इस पर था। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। और बेशक प्रकृति से जो भी हम सीखते हैं उसे अगर हम जीवन में उतार दें तो हम भी अपना जीवन इन पशु पक्षियों की तरह बिल्कुल स्वस्थ होकर जी सकते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहने के लिए ये छोटी सी कोशिश हमें जारी रखनी है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्यार से यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चल, ये शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार, इस सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु आद्रियानो के पिता ने चाकू से वार करके उसकी हत्या की। आज दिन के दौरान शॉन डैनियल पेरिन को अदालत में पेश किया गया, उस पर हत्या का आरोप दर्ज। कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट ना आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू। किम लुकोपियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। विदेश में ईरान ने आज चेतावनी दी है कि देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे, उन्हें इसकी नतीजे भुगतने होंगे। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। इस दुखद घटना के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु आद्रियानो के पिता ने कटर के साथ उस पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने ये अपराध किन हालातों में किया इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं। आज दिन के दौरान शॉन डैनियल पेरिन को अदालत में पेश किया गया और उस पर हत्या का आरोप दर्ज किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। बच्चे का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।
2: परिवार के सदस्यों को इस बर्बर हिंसा के बारे में स्पष्टीकरण देने में मुश्किल हो रहा है। आद्रियानो केवल 7 महीने का था। ये ट्रेजेडी कल रविवार को रोशबा में घर पर हुई। संदिग्ध हमलावर की बहन मारी सांड्रा लियोपोल ने कहा, इलाके में इस हादसे पर लोग भावुक एवं हैरत
3: हैं।
2: जॉन डैनियल पेरिन को आज सुबह पोर्टवी अदालत में पेश किया गया और उसे 31 अगस्त तक हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसकी जमानत पर रिहाई पर आपत्ति जताई। शिशु की मौत के सही कारणों का पता लगाने के वास्ते पुलिस जांच जारी है। शिशु का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा।
1: डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वामारी ने इस अपराध का कड़ा खंडन करते हुए इसे घिनौना बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुश्किल कि इस घड़ी में उनका मंत्रालय संबद्ध परिवार को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए तत्पर है। उन्हें सुनते हैं।
4: C'est bien triste pour penser que tout le monde est choqué par sa manière,

0: sa bébé là il est tué, il tient sur la vie. Donc tout le monde condamne ça, sa situation là fin arrivée. Donc nous condamnons ça, nous condamnons ça fortement. Donc nous espérons qu'il n'y a pas de pour aux enfants qui est tué atrocement comme ça.
1: अफ्रीकी संघ की तरफ से की गई कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद अगले 7 अक्टूबर को मॉरिशस में आधिकारिक तौर पर अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लॉन्चिंग की जाएगी। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस कॉन्टिनेंटल एजेंसी की स्थापना के लिए मॉरिशस का चुना जाना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के तौर पर देश की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है और अफ्रीका के वित्तीय ढांचे में मॉरिशस की भूमिका मजबूत करता है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसका जायजा लिया। जरा विस्तार अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट में विवरण गीता सुनारान का।
2: अफ्रीकी संघ के कई सदस्य देशों की भागीदारी वाली एक प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद मॉरिशस को अफ्खा यानी अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय की मेजबानी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुना गया है। इस एजेंसी का काम अफ्रीकी देशों और आर्थिक संस्थाओं की स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मूडीज और S&P करती हैं। इसी सिलसिले में मॉरिशस में अगले 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को टापू में अफ्खा की औपचारिक लॉन्चिंग की जाएगी। इस पहल को आगे बढ़ाने वाले अफ्रीकन पीयर रिव्यू मैकेनिज्म के अनुसार मॉरिशस का चयन उसकी वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में रखे गए भरोसे को दर्शाता है। डॉक्टर मिशेक मुती से कहते हैं, मॉरिशस एजेंसी की शुरुआत के लिए उचित जगह है। हम इसे एक महत्वपूर्ण चरण मानते हैं और प्रगति भी। हम मॉरिशस की ओर से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं।
3: आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉम्प्लीमेंटरी मूव।
2: मॉरिशस की सरकार के लिए इस नई महाद्वीपीय संस्था की मेजबानी करना अफ्रीकी वित्तीय व्यवस्था के केंद्र में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक अतिरिक्त अवसर है। वित्तीय सेवा मंत्री डॉक्टर ज्योति जीतन कहती हैं, 7 अक्टूबर को अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष इस नोटेशन की जिम्मेदारी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये एक उच्च स्तरीय पहल है अफ्रीकी संघ के लिए। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सिर्फ अफ्रीका के लिए एक मंच नहीं, हम अफ्रीका के निर्माण में भाग लेना चाहते हैं। अफ्खा से काफी उम्मीदें हैं। ये अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी जुटाने और उसे सही दिशा में लगाने में मदद करेगी, साथ ही निवेशकों के लिए उपलब्ध जानकारी को बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। ये एक बड़ी चुनौती है जिसे नई एजेंसी अगले अक्टूबर से मॉरिशस में अपने भविष्य के मुख्यालय से पूरा करने का प्रयास करेगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के बीच स्थित होगा।
1: कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट न आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। दवाइयों की कमी दूर करने के उपायों में तेजी लाने और सप्लाई श्रृंखला पर फिर से गौर करने के वास्ते आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपातकालीन बैठक लगाई गई। मंत्री अनिल बिज ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले अक्टूबर महीने से देश में सामानों की एक नई श्रेणी पर शुगर टैक्स लागू नहीं होगा। बजट 2026-2027 में घोषित इस कदम को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। ये फैसला तब लिया गया जब अधिकारी गण छोटे व्यवसायों पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। ग्रुप डेंटरप्रेन्योर सोलिडेयर टूस एंसेंबल के सदस्यों ने आज 24 अगस्त को इस सिलसिले में मंत्री आदिल अमियामिया के साथ एक मुलाकात की। किमले को पियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। उन्होंने अपने स्टेज जीत के दौरान बनाई गई बढ़त को आखिर तक बनाए रखा। इस तरह वे अफ्रीका महाद्वीप की पहली साइक्लिस्ट बनी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनसे इस जीत की खास सराहना की। हमारी सड़कों पर सावधानी मात्र सजा के डर से नहीं बल्कि ली जानी चाहिए, बल्कि नागरिक कर्तव्य उससे ज्यादा जरूरी है और चालक को इस

0: का एहसास खुद होना चाहिए। यही अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज का मकसद है, जिसने हाल में ADPS रोड सेफ्टी प्लेज नामक अभियान की लॉन्चिंग की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो रोजाना हमारी सड़कों पर सफर करता है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश के तहत अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज अपने रोड सेफ्टी प्लेज अभियान के तहत सीधे कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर जाकर मुलाकात कर रहा है। विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशंस और बातचीत के जरिए संगठन के प्रतिनिधि वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात अच्छे और सुरक्षित व्यवहार को लगातार अपनाने पर जोर दिया जाता है। जेरी अनुदय कहते हैं, अन्य चालकों राहगीरों पर भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की जांच करनी चाहिए। योगिनी कंदन कहती हैं, गाड़ी चलाने से पहले खुद को तैयार करती हूं कि मैं गाड़ी चला सकूंगी या नहीं। कर्मचारियों के बीच इस संस्कृति को लगातार याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। सड़क पर कुछ गलत व्यवहार से जुड़े खतरों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी देने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओशन ट्रेशर के एडमिन एंड अकाउंटेंट्स मैनेजर कनेन अनिया काउंटन कहते
2: हैं,
1: हमारी कंपनी में कई चालक हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज के लिए जागरूकता फैलाने का मतलब केवल नियमों या उल्लंघन की स्थिति में होने वाली सजाओं को याद दिलाना नहीं। अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज की प्रोग्राम डायरेक्टर दीक्षा रामदवा कहती हैं, इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से खुद से वादा करते हैं कि ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं जो उचित हो और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारी सड़कों पर व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सोच में बदलाव भी जरूरी है। इस अभियान के जरिए अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
0: विदेशी खबरों ने ईरान ने आज चेतावनी दी है कि जो देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जल्द ही ये स्पष्ट करने वाले हैं कि अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव कैसे बढ़ाएगा। ये इस संघर्ष के छठे महीने पर पहुँचने के बाद किया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात मौसम अच्छा रहेगा, देर रात को बादल घिर आएंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह मौसम अच्छा रहेगा, दोपहर बाद को बादल घिर आएंगे और पश्चिम में कहीं कहीं बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:25 पर सूरज निकलेगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। कोलाबू मोतायलोंग में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुललिता बलदाओ जो मैडम पतिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 उनके बेटे अविनाश रामप्रसाद के मकान कोलाबू मोतायलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफ

শ্মশান ভূমি লে যাই যায় ক্রিমিশন টু মোডো অ্যাট হাফ পাস্ট 11 AM। সুভাষ রোড মোসেল মরাম ফুল বোয়া মং প্লেন্ডি পাপাই মি সুভাষ রোড মোসেল মরাম ফুল বোয়া মং প্লেন্ডি পাপাই মি 64 সাল কি 64 ইয়ার্স ওল্ড কি শ্রীমতী প্রেমিলা কাসাভেন শ্রীমতী প্রেমিলা কাসাভেন পেদাশি নাম লক্ষ্মণ প্রসাদ और जो प्रेमिला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विजेंद्र कसावेन के मकान सुभाष रोड मोसल मोहम्फल बुआमोंग प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटवी में नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटवी में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती जो धन श्रीमती परमावती जो धन जो परमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। कल दिन के 1:30 बजे दिन के 1:30 बजे लाशा पैलाव दौंतुम्बुखा रॉयल रोड पर सितखविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज लेसालिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स में लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: बीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 26 अगस्त को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक ईडीसी ग्रीग्री में, विलाज दे ग्रीग्री और डोमेन ग्रीग्री सुयाक में, और कल मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक बोकलीमा और आसपास के इलाकों में और ला फ्लोरा में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मौसलमा वीओएस और एनएचडीसी दे ग्रांड बोआ में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर

ओम नमः शिवाय। सादर प्रणाम श्रोताओं, सोमवार की इस पावन संध्या में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। मैं हूँ दीविना और आज की यह रात्रि समर्पित करते हैं भोलेनाथ को, जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा तथा गले में सर्प विराजमान है, तथा जिनके हृदय में बसता है प्रेम, करुणा तथा संसार के कल्याण का भाव। तो आइए कुछ पल के लिए संसार की भागदौर को विराम दे, मन को शांत करें, आंखें बंद करें तथा पूरे विश्वास के साथ बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

श्रोतागण, शिव का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए तथा अपने कर्म करते रहिए। वैसे जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर महादेव के चरणों में विश्वास रखता है, विश्राम करता है, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। प्यारे श्रोताओं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं। एक सच्चा मन, एक बेलपत्र, थोड़ा सा जल तथा प्रेम से लिया गया उनका नाम ही काफी है। ओम नमः शिवाय।

जय श्रोताओ, आज सोमवार का दिन है। आप सुन रहे हैं भजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर। सोमवार शिव जी का प्रिय दिन है। यदि वह पावन समय श्रावण मास का हो तो भक्ति की यह भावना और भी विशेष हो जाती है। श्रावण हमें याद दिलाता है कि जैसे वर्षा धरती की प्यास बुझाती है, वैसे ही प्रभु का नाम हमारे भीतर की बेचैनी को शांत करता है। कहिए मेरे साथ, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।

श्रोताओं, चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं एक साथ। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमारे जीवन से नकारात्मक सोच दूर रखना, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना तथा हमें सदैव सत्य तथा सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने संसार का विष अपने कंठ में धारण कर लिया, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों को धैर्य से सहने की शक्ति देना।

जी आप श्रोताओं, भज प्रभु का नाम कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। आपके घर आंगन में सुख हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपके मन में शांति हो तथा आपके जीवन पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहे। पुनः मिलेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान। भज प्रभु का नाम हर पल, भज ले प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम इतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा हो। बहवाला सही मुस्लिम।

नबी आखिरी उस जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए लायक नहीं कि वो अपने आप को जलील करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, वो अपने आप को जलील किस तरह करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी आजमाइश के दर पे हो जाता है जिसकी ताकत नहीं रखता। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो कमर कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का

सब संगतियालों के आज प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल्स रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में तुमने की देखा था वह रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर यानी कि AM बैंड पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर हमने की सुना था वह सब संगतियालों के स्वागत करते हैं जा यह दल के पसंदीदा कार्यक्रम भोज ट्विटर का अभी से लेके रात के 11 बजे लिए और आज हलिंदी की रात लिंदी 24 अगस्त साल 2026 मन करता कुनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाइया का जगह दे हुई जगह विद सैंक या फिर SMS करिए हमने के रेडियो मोशस के टिकटॉक पेज पर। एक से एक बेहतरीन एक से एक लाजवाब भोजपुरी गीत जबरदस्त म्यूजिक और ढेर मना कुचलने से कार्यक्रम में ये कार्यक्रम मनोरंजन भी है और शिक्षा से भी भरल प्रोग्राम है ढेर कुछ मिली सीखेगी प्रोग्राम के दौरान और मनोरंजन भी होते रही तलेंदी की रात यानी कि गमत की रात और जय प्रताप सिंह सितालू के साथ तब बोला तो संगत यार आज के दिन कैसे रहा आज है लेंदी वेंकट उत्तरा ली सर और है तैन सेमैन है महीना के हाउ सेमैन से सप्ताह के महीना में चला तो चला शुरू कर जा हमने के भोजपुरी तरका प्रोग्राम के गीता का जादर के गावल गीत के साथ गीत के बोल है हंगामा और गीत में चलाते से सब संगतिया का नाम हमने के साथ जुड़ल हवन जा और आप हवन जा लिस्ट काफ़ी लंबा बा अरे देखते हैं यस प्रिया नरसिमलू है गीत और खातिर श्याम छात्री माला चिनन देवी नबी सर केशवदीन फिर प्रीति फरजीना अमारा करुणा सब शीला और देवी नबी सर आकाश चेतन हेलो आकाश भाई कैसे समाचार और मीला चिंगानी गीत और नाम नितेश अनिता लाल जी मैरी जेन लिहास मुकाम्बू ब्रेंडा शशि तुलसी श्वेता कालू कुमार राय और बुल्ले राजा मितु बिरेन

निर्मल खोदी कैसे बा भैया, और है गिजरी श्रुति, सुधा सुखी, तैयब भोला, और राम हृदय, दीपक जब्बू, रामू छेत्री, निशान, देवेंद्र नेपाल से हवन, अनिता प्रताप जी, गीतोरो नाम, कवितानु नमस्ते जी, और सुशान जी, तारा शिवचरण, इंदिरा पुर महमन, है गीतोरो नाम, चलेक्सा सुने हंगामा।

कभी कुछ निगरी जाऊं सके गो इंसान के जान ले रे हमें दिख रहे से देख कोई फजर के जैसे नींद से उठे रन से तुरंत जान से साल डिब्बे में नहाई या देख कोई एग्जरसाइज करके आवे रन से तुरंत साल डिब्बे में हेरे रन से नहाई के ये एगो बहुत बड़ा जो है गलती करेरा कह के हमने के शरीर के जो तोपे आचे है और ये बाहर के तोपे आचे पागल ही नहीं रहेरा तो का होला जब नींद से उठबर तुरंत साल डिब्बे में जीवन नहाए तो तोहर दिल के धड़कन सकेला रुक जाए सकेला आगे कौजा को जाए और कर से जान भी चल जाला फिर कुल एग्जरसाइज करके आवेला खूब थॉन्सपीरेबल से और तुरंत साल डिब्बे में हेल जालन से तो ई तुरंत नहीं चेहरा साल डिब्बे में हेले के फजी के जब उठब नींद से मान ला 5 बजे उठला तो एगो 15 मिनट ले थोड़ा मौस मौसे हुई चलिया फिर तब जाके स्नान करिया या फजीत के उठला गेला एग्जरसाइज करे एग्जरसाइज करके अला तो गो 15 मिनट ले थोड़ा सुन बैठिया या मौस मौसे हुआ और बाद तू जाइया नहाए जब ऐसे हमने नहीं कर अब से तुरंत जब से नहाए तो अक्सर होला हमने के दिल के दौरा पड़ जाला और इंसान की जान चल जाला तो इंसान की जान कोई नहीं सकेला हम प्लास्टिक करे ये खातिर जहाँ जाने की सब बात कहे कि कभी कभी भुला जाए ला सा और दिख रहा सा कैसे प्रॉब्लम हो जा रहा चल अभी को गीत सुना जाए दोनों ने तीन रुपये सौंत पुजोत विशाल मंगरू और साथी कलाकार एम जे आई के धीमा नौटी से गीत गए लगभग और एक गीत बड़ी सुंदर भाई दर्शावे रहा कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि हमने के देश को बहुजातीय देश है बहुभाषी देश है पर सब कोई मिलजुल के जी रहा सर वी आर प्राउड टू बी मॉरिशियन हाँ कि नहीं तो चले गीत समझा दल इंडियन पे सौंत पुजोत विशाल मंगरू और एम जे आई के कलाकार लोग गीत गावत हो है गीत चलावती खास हम खास इस सब संगत यालो के नाम मारिलूद फिर हैदर और फिर हेमंत राणा है गीत चली केंजन खतेर पक खतेर फिर एमा शाजे दीप रमेश सुरेखा रमसर मंगरू प्रिंसेस पू परवीन शाह लीना छेदी पद्मिनी उदय रोज इलोशा फिर है गीत चली अनिश व्यजिनी लामा प्रवीण मोंग देवंती जेनिफर अंटन फेजा सुनात तोंशोज सत्यदेव रामू पूजा जाफी विशाल आरती देवी फिर हवन ओवा प्रेम बली राजा मलिनी नितेश गुलाब लैला हसन फिर गणेश शकीरा काव्या पूजा ठाकुर है गीत चली लायन नीर कियारा येशना बेब्स कांति देवी फिर शिवचन रामचा आयुषी गोंदामा राजीव येशना रानिया कुमावादी और चंदानी शावरी हानाज मिस्टीना साथ में करुणा मांडा पूरन देवी गुलाम हुसैन बेग रूपेश कपिल देव माना शमीम झमन नित्या सुनीता सिचन विमी सानिया फाब्युला लक्ष्मण राहत जहान सोफिया नेहा शेख बिब्स रामचरण सिवचन लुई आशा नितेश जॉय जी हाई सब संगत आलोक हमने की टिकटॉक पर देखा था और सुना था और साथ में हेल गीत जुन हाँ हमने चलाओ सर अनिता लाल जी के नाम हवन मौदार वैसे सब इतु परिवार सब लाल जी परिवार के नाम अनिता जी फ्लाक से हवन शोभा पोंबले मुझसे चित्र और ज्ञान विश्राम मौदार वैसे प्रभावती लोल हवन नोवेल फ्रांसे कर बेटा पतो बेटी दामाद सब चीज़ों हवनों के नाम ललिता कुशल थ्रियोले से पीतों से अमृता गणेश संजय हरिचंद गीत तोहर खातिर तो घवरी संध्या तोर बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम और जितना कोई हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई टिकटॉक पेज पर हमने की देखा था लाइव तो है गीत तेलो के नाम दौनते नृपेशंत बुजुर्ग लिनिते में हमने और तेलो एक साथ लिनते में है गीत गावते संगे संगे लिनते के मतलब है एकता

संगतिया लोग हाई सुख के लिए इंस्टीट्यूट के हमने मनाओ अवसर रक्षा बंधन यानी कि भाई बहन के त्यौहार तो कादू दो किनले रहिया कंजूसी नहीं करिया कहे कि भाई बहन के त्यौहार है तो चेला कादू दे के भाई के बहन के बहन के भाई के भी और जो त्यौहार दुनिया भर में मनावल जाला तई दिन बहन लोग जो है बहुत प्यार से अपन भाई लगे जालन से अपन भाई की कलाई में राखी बांधे रहन से और भाई आशीर्वाद देवे रख के अपन बहन की रक्षा करी जीवन भर तई हमने के त्यौहार है जरूर प्यार से मनावब जा और मिलजुल के त्यौहार मनाओ जा। सो MBC के पूरी टीम की ओर से रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती कुल FM आज मुगल से जो मॉरिशस की टीम की ओर से सबको के रक्षाबंधन की ढेर मना शुभकामना। तो ढेर बहन लोग जो ना भी सही गातो तैयार करते वन सब बूंदिया लड्डू गुलाब जामुन खाजा गातो तीन चार दिन आगे तैयार करते वन सा ताकि जयन सा सुख के अपन भाई के राखी बांधे। अब जेकर भाई नहीं बात है तो अपन कुजें के बांधेला और जो लड़का लोग के बहन नहीं बा तो लोग के कुजियाँ राखी बांधे। हमरो बहन नहीं बा हमारे को कुजिन नावेलन राखी बांधे और प्यार से राखी बांधेरा। और ये दिन जो है प्रतिज्ञा भाई प्रतिज्ञा करेगा कि जब ले उजी वो अपन बहन के रक्षा करी जहाँ ले सकी। तब भाई बहन के त्यौहार सबको के बहुत बहुत अभिनंदन। चला भी एगो रक्षाबंधन के गीत सबसे लड़ी जाकर चादर के आवाज़ में है गीत चली सासी बुनो माली खातिर और घरोली कर बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बुनो माली परिवार के नाम है गीत। उदय धनी राम के नाम रहेन रिवेजपोस किशन गुड़ियाब जी प्रीतम राज जी मीना रिवेजपोस से हवन अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार प्रेमिला हवन कैटोबोन से और है गीत चली प्रताप की ओर से कर बेस्ट फ्रेंड कर जी की दो शीरीष नारायण के नाम हिरीश नारायण रहेन मिडलैंड माता जी रीता की ओर से गीत चली अनुष्का शैलेश और स्वस्ति खातिर फिर रानी की ओर से ओकर बेटी परी खातिर राधा सी बालक है गीत औरों खातिर और देविका रामगति है गीत औरों नाम। जितना कोई रक्षाबंधन मनावी इस सुख के याद फिर से याद रहते तो वैंचवित उत याद रखे दत्वा बोन गजी वैंचवित उत के हमने दुनिया भर में और मॉरिशस में रक्षाबंधन मनावते ऐसा है गीत चली रित्या खातिर चित्रा सुनीता सिचन बीमी सानिया फाबियोला लक्ष्मा राहत जहान शेख फिर है गीत चली आशा श्वेता चतुरी नीला फिर गीत मोहन रोशन देवी नारायण और है गीत चलावते इस खासम खास मिलियनेयर खातिर अपन नाम लिखा बा टिकटॉक पर मिलियनेयर तो मिलियनेयर बोलब से ना अपन नाम दिलक बा मिलियनेयर है गीत चली ओकर माँ इंद्रानी सब बिहारी परिवार के नाम योगेश सिबोरन और सब सिबोरन परिवार कौची मिलती है से मानी हम के साथ देवत हवन मिस्टर परफेक्ट शो निर्मला रमन और फिर हरिराम यादव है गीत हो नाम प्रेमिला गजादू है गीत हो नाम चौधरी साहब है गीत हो नाम इंदा हुसैनी लेडी जागो बिस्ता सुभाष भावना अंजू नगेंद्र चौहान पुसैत प्रियंका राय अक्षय दर्शिनी हंसा राजाबाली और माधुरी तो जितना कोई हमने देखा था सबको हैप्पी रक्षाबंधन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना।

भाई बहन के प्यार जब ले रही, रक्षाबंधन के त्यौहार तब ले रही, जब ली सूरज रही, सितारा रही, चांद रही, तब तक भाई बहन के प्यार हमेशा मर रही। और इतिहास बतेलक बा कैसे कृष्ण भगवान चुनहर द्रौपदी की रक्षा करेरा, तो एगो भाई हमेशा अपन बहन की रक्षा करेगो। सच्चा भाई अपन कर्तव्य हर हाथ

मिनी भावीरा रात के 9 बज के आधा हुआ था तुझ सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और जय प्रताप सिंह सीतालू के साथ प्रोग्राम है भोजपुरी तड़का और ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले और मन करा था कोई गीत मांगे के तो SMS करिए हमने की टिकटॉक रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर या फिर काट जाओ दे विद जाओ विद सैंक पर और बोली जा सकती है काल के आगे कोई के बस नहीं चलेगा जब समय आई दुनिया छोड़ के जाएगी तब कोनो भी बहाना नहीं बनी रोते हुए दुनिया से आने से और रोते हुए दुनिया से जाप से यही नियति है यही विधि के विधान है और जे भी दुनिया में आलबा ओके परी संसार के छोड़ के जाएगी यही कहती बोली जा सर कि चोला के ठेकान नहीं बा तो शिकवा गिरा नहीं करिया मन मुटाव नहीं रखिया मान लो तुहर बहन तुहर से 10 बरिस नहीं बचे लग पर ई राखी के दिन तुहर बहन तुहर द्वारी में थाली लेके आल अपन भाई के राल राखी बांध दे तो अपन बहन के नहीं लौटे गया अपन बहन के देर रख लिया अपन बहन से राखी बंधा लिया और अभी चेगो चकाचक भोजपुरी चली दुल्हन के दादी बाप रे बाप दुल्हन की दादी कहा बोला था चले एक साथ सुने गीतवा चलावते ऐसा रीता और रेणुका के से लोग के दुगो भाई बा संदेश और प्रीतम और अपन भाई की बहुत प्यार करे साइलेंट के से और बहन रीना खातिर और हे गीतवा चलावते ऐसा अक्षय दर्शिनी मनसा राजाबाली पुसैत माधुरी फ्रेडेरिक वाको सेल्विना मुनिये कॉपिन एंड पेमाल डैनियल लुइज हर्षा बीबी अफरोज माला भजन बंजन कविता सिदीहू केश जोयराम और विधि मिला दाउतल प्रमा प्रमा मुकेश कुमार मीरा सुबी लुलू आनंद है गीत और नाम नौशेन हेलो और विली जीवमार लकी गर्ल जयंती पांडु लकी वुमन शीला सीता और गोहाबाई मोसा राजदत्त बोजू चाची रुबीना नाम रत्ना श्यामा लकी वुमन गीत मांगा था अंतिश अंकुश स्नेहा आप हो नालमाती से सब दुलार परिवार के नाम हेलो जी अमन मोहन फिर अनिता लाल जी शोभा दुकोरन हेमंत लक्ष्मण जॉन राजेश्री और अंतिश सीचन बेनी सुनील हुसैन जया निर्मला बाई वसंती जोदू सेवियर एंजल माला चिनन आरती और जितना कोई अभी हमने के टिकटॉक पर देखा था हमने के सुना था और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन हम के साथ देवत हुआ था चले एक साथ नाचे दुल्हन के दादी के संगे दुल्हन भी नाची दादी भी नाची और हमनियों भी संगे संगे नाचप सा

0: डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस, रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन के एक साल हो गल। दिनों MBC के रेडियो चैनल है जहाँ पर हमने के चकाचक प्रोग्राम चले रहा और हमने के जितना श्रोता लोग हमने के अभी देखा था टिकटॉक पेज पर, रेडियो पर सुना था, बहुत बहुत धन्यवाद है दुको रेडियो के नंबर वन स्टेशन बनाए खातिर। और हमने के जो रेडियो डायरेक्टर है नर्मदा जी, ओके भी धन्यवाद कि है दुको चैनल खोल लग बा सब मॉरिशन लोग खातिर, दुनिया भर के लोग खातिर जितना कोई संगीत में दिलचस्पी रखे ना। सो हैप्पी बर्थडे रेडियो मनोरंजन, हैप्पी बर्थडे रेडियो मॉरिशस, एक साल हो गल। तो लोग के आशीर्वाद, तो लोग के प्यार से इसी साथ देते रहे, नचते गईती रह सब, कमर भर डुलाईती रह सब। अगला गीत गीता का जादर बोला तो आई लव यू बोलेला है गी देवन नदी वाला जी के नाम आप होवन वैनकूवर कनाडा से। गीत हम के साथ देवत होवन और है गीत करण भवानी, राजगोपाल, फिर लिंबू, रेशमी बंधु, विजयलक्ष्मी दिया, जयवंती बीपत, वनिता मोहिपत, निर्मला रमन, हेमा धनु, आशा सबरना, इंदिरा नौबत, प्रकाश भगवत बिहारी और जितना कोई भी हमके साथ जुड़ल बा। देखा तो वन सामने के टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर श्याम बेकर जी और देवन नदी वाला बोलाता है प्रताप जी आज तो मस्त के मूड में नाचे तो। हाँ जी, हम तो नचते गईते रहेला और तुलो के भी नचाईला गवाईला। आई लव यू बोले अब के आई लव यू बोलता है बाप अभी है आई लव यू ढेर दिन से नहीं सुनने है। तय गीत चली प्रतिमा, टीना, दीना, सी शंकर, गंगू, व्यापेन, अपाया, सहजू, गोसाई, केत, एदु और सेंट थॉमस SS कॉलेज के सब स्टाफ, वहाँ के रेक्टर ने और सब स्टूडेंट्सों के नाम। सत्यम सनु है गीत और नाम, मुकेश और सूरज गंगा सब सिरोतन परिवार के नाम, विशाल विशेषर और पत्नी और बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए। आप हवन लाफलोहा से, वरुण लक्ष्मी सिबरत अब लाफोंस में हवन और हमने के साथ दुआ थवन। अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से, रंभा की ओर से कर पति और बेटी और सब कर परिवार के नाम जोन लास्विस में हवन सा। तो चला भी कमरवा डुलाओ सा, आई लव यू बोलेला आगे कौन सी बोलेला, चल एक साथ सुने।

0: शादी के पहले तो ये सब बड़ा बड़ा बात बोला था ला मो गाते बोले ला मो कोता तो बोले ला मो लड्डू तो मो सिरोजाना तो शादी के बाद कहा जा रहा हूँ और संगतिया लोग भोजन तैयार करे के एगो कला है कुकिंग इज एन आर्ट और ये समय लगेला खाना पका के पर खाना अगर प्यार से पकाई बता सब कोई जो है प्यार से खा रहा पर हाथ से जो खाना तू बनाई बा वो एकदम अच्छा रहेगा कह के तू जन में कितना नमक कितना तेल डाला था वह और आसान बा खाई बनाए के अगर नहीं जाता सोशल मीडिया पर जाइए यूट्यूब पर जाइए टाइप करिए कैसे चला खाना बनाए के और हर प्रकार के खाना बा वेज नॉन वेज बा और अपन हाथ से एक दिन पका के देखे था बंकी बोलिया और जेंडर पर नहीं आधारित है पुरुष से दोनों से खेला पकाइए दोनों के कह जब दोनों जना खा रहा था दोनों के छा पकाए के भी जाने खाए नहीं एक जना खाली पकाए एक जना खाली खाए तो एक संगतिया बनाए तो मिले कल्याणी बॉश से हेलो कल्याणी
1: नमस्ते

0: कैसे समाचार?
1: अच्छा है। तनी 8 दिन से बचात है।
0: ढेर दिन के भाग
1: सबसे अच्छी है
0: हैं।
1: हमारे बोले जैसे दे हो रहा ना हमारे भाई।
0: आयो मामा बफासिल नहीं
1: हाँ
0: बारा भी।
1: सुना ना भाई,
0: हाँ
1: गीता का देखी सुन आ अंजू।
0: हाँ तो राजू ढेर जोर डाले वह गंती कमती कर दे प्लीज। राजू को बोले मैं
1: हाँ
0: ढेर
1: जाते हैं जाते हैं, कब करें।
0: हम कई हाल आप बोले हैं राजू आ कमती करे के बना नहीं सकब से बताए माफी चाहता है पर जब धीरो राजू जो से हम की कहानी एकलाती होला प्लीज। और आइए गी चलावत है इस मनीता जी के नाम। मनीता जी है गी तोहर खातिर आइए चली तोहर माँ सुमंती बहिन आरती सचिता बबीता रेखा भाई सत्यम भाभी उषा और यादव और केशा खातिर। और हे गीत हमने चलावत इस विश्वानी दुमन के नाम आप हिरन वाकवा और गीत चली कर बहिन इंदिरा शारदा सहरी नीला प्रतिभा शोभा और सब संगतिया के नाम। और हे गीत तो हमने चलावत इस प्यार से शालिनी हीरू के नाम आप हवन नाफलोगा से। और गीत ओकर घरोला विशाल ओकर दुगो बेटी ओकर भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार के नाम। लावेनिया सैंपिया से आफेज हवन कैसे बाफेज एक गीत और नाम। रोजीदा हवन हाईलैंड से हाय रोजीदा। फिनिक्स से रिहाना हसन अली हमने के सादे वन और बर प्यार से हमने सुनत हवन भाई आबू हवन बाकवा से और भाई राफिक मोहित हवन तायाक से। तो चल एक साथ सुने हैं गीतवा थोड़ा जी ले थोड़ा गा ले खाली काम नहीं करिए था सुन गमटो करिए था सुन नचिया गैया जिंदगी के मजा लिया कहे कि 2 दिन के जिए के बाद कब कब इतना समय बीत जाला कि हमने के पता भी नहीं चला कि कब उम्र बीत गया और चल समय चला वाला दुनिया से जाए कि तो जब ले जी अब से थोड़ा सुन गमट करिए नचिया गैया जब तुम्हार मूड हैप्पी रही तू हैप्पी रह खुश रह तो सकब और कोई के खुश रखे पर तुम्हार मूड भी नहीं अच्छा रही तो कैसे कोई के खुश रखब। तो अगला गीत चली धुरंधर खातिर माला खातिर माला वन बबासा से राज मुक्ता ने गीत हो खातिर दिवसा काजिमी है गीत हो नाम अंजू। अंजू को लिख के अभी जाकर रहता टिकटॉक पर बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा इमोजी है लिखे दिल क्या बात है। और कल्याणी बुआशी से अवन बहुत प्यार से उनके सुना था वन गीत हो नाम। कल्याणी जब टेलीफोन कर तक हाजवा के वॉल्यूम कमती कर दिया वरना बात नहीं सकब सक करें चले साथ सुने थोड़ा जी रे। गीत वो बहुत ही मस्ती भरा गीत है गीतवा गेलेवन मोहम्मद खालिद बंधु और गीत सब श्रोतालों के नाम सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगतिया के नाम।

भोजपुरी हमने की भाषा है, हमने की धरोहर है। और आई बरिस 26 सितंबर के लगी द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में रात के 7 बजे से। और एक होशन विदिता और माँ कवनीश और हाईजुन कॉन्सर्ट वा चली ये सब कलाकार के साथ रंभा राम तो है, नीरज गुप मधु, किशोर खिमिया, कुणाल हिरीलाल, रोशन सदा सिंह, कृषि मोनिक और डीजे जगवा रहे नील स्पाइकी, डीजे वकील, डीजे अबीर, डीजे अनी। और प्रीसेल टिकट है 500 रुपया और डो पर है 700 रुपया। तो ज़रूर आइए जाए, जलसा की रात है, फर्स्ट लाइव भोजपुरी कंसर्ट रही मॉरिशस में एलिवेंसी से सप्ताह के तब भूले नए परिवार के साथ लयकारों के संगे सब को जग गमट करे। हमने के संगत या कुणाल हिरीलाल वहाँ पर रही, हमने के नचाई, हमने के गवाई, तभी ओकरे आवाज़ में चला सब गीत जोली छोकरी से प्यार करी रहा। और एक गीत चलावती से आत्माराम जी के नाम, हेलो जी आत्माराम।

समय गीतोर खातिर दीपा तिवारी दुखित जोन कनाडा में हुआ आजकल मॉरिशस में हुआ गीतोर खातिर तोहर पति केविन तोहर बेटा और तोहर सब दुखित परिवार के नाम तिवारी परिवार के नाम चीना बुदना रहरन दबेल है गीतोहर खातिर तोहर घरोला तोहर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार खातिर और है गीत चलावते इस जितना कोई रात के भी हमें की सुनाता है बहुत बहुत प्यार से। टिकटॉक का पेज समाप्त होकर कहे कि छाउज फिनी होगल कोई बात नहीं, अभी रेडियो पर हमने तो लोग के साथ रात के 11 बजे चला गीत सुना जा जोड़ी छोकरी से प्यार करी जा।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: रात के 10:10 हुआ बार तू सुन तो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन FM मोड पर और रेडियो मॉरिशस AM मोड पर दोनों चैनल MBC के रेडियो चैनल है जो मौका से प्रसारित हुआ था और जी प्रताप सिंह सितालू के साथ भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे रे और संगतिया लोग आजकल बॉलीवुड में जो है नया मूवी आई कि बा हई सिमेन के जो है उत के महीना समाप्त हुआ था और हाउस मैन से सितंबर के महीना शुरू हुई तो ढेर मना फिल्म रिलीज हुई के बाद जैसे कि मिर्ज़ापुर हैवान दायरा वाइब भारत देश है हमारा इवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की और बेशक है सब जो फिल्म है ये सब फिल्म उत की फिनिशों या सितंबर की शुरुआत में ये सब फिल्म बड़े पर्दे पर मॉरिशस में भी सब जाए देखे तो याद रखे जा फिल्मों के नाम मिर्ज़ापुर हैवान दायरा वाइब भारत देश है मेरा व्यान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट और महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की और मिर्ज़ापुर में तो देख पंकज त्रिपाठी अली फजल और दिवेंदु के हैवान में देख अक्षय कुमार सैफ अली खान श्रेया पिलगांवकर और सेमी खैर के दायरा में देखभ करीना

कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के वाइब में दिख बकुन के मुँह प्रीति जिंदा के और इवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया और महाकाव्य श्री राम कथा श्री राम के सनदेव रणबीर सिंह और धेमना कलाकार है ये रामायण की जो है फिल्म रही तो ढेर कोई खुश सिनेमा जाए कि फिल्म देखे के बड़ा पर्दा पर फिल्म दिख रहा है दूसर एक्सपीरियंस हो कि नहीं और रात के 10:12 होता हमें जाने से तो लोग जो है बहुत प्यार से उनके सुनत हो जाए और जितना कोई काम करता अभी बों को खाज और आजकल तीसरी तिमाही चला था ख्वाजम तेम चला था लड़का लोग अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे होते उनसे अच्छी बात बात खासकर घाट 9 घाट 11 घाट 13 घाट 9 यानी कि फॉर्म 3 घाट 11 फॉर्म 5 और घाट 13 HSC तो ऐसे बड़ा एग्जाम्स है लड़का लोग छानी मन से काम करेंगे ताकि रिजल्ट अच्छा हो तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जाए कितना समय रगल बा एक महीना ले रगल बा रिविजनों कर बाद जो है एग्जाम्स ऑल द बेस्ट गुड लक हमने के शुभकामना तो लोग के साथ बा निमन से काम करिए और अपने माँ बाप के नाम रोशन करिए गीत गवायु में चले के बाद चलो गए चंदा बीच मावती संपत गीत वगैरह वन और गीत हमने चलावती सब प्यार से नेहा खातिर फिर डॉक्टर अंजू के शुकर मंगेतर और सब परिवार के लिए और है ये गीतवा चलावती सर रिहाना जो नहर नोत्र दाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत चलावती सर रोशनी की ओर से ओकर घरोला को तीन गो बेटी और सब परिवार के लिए और है गीतवा चली MGI कॉलेज जो मौका में स्थित है वहाँ के सब स्टूडेंट्स अध्यापक रेक्टर और वहाँ के डायरेक्टर के नाम भी चले एक साथ सुने गीत गवायु में चले के बाद चलोगे चंदा

ये दुनिया में अगर डरे के चाहते चाहे भगवान से डरे के कहे ओकर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं भाई, भगवान हुए हमने के माता पिता हमने के संगत चाहे खाती वैसा तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सका तुम्हें कि भगवान तू ही हमारे माता पिता हुआ, तू ही संगत्या हुआ, तू ही सब हुआ। और भगवान के जब पूजा पाठ करी जा सकता हमने के शरीर छना पवित्र, मन भी छना पवित्र, हमने के वचन भी छना शुद्ध रहे के तब भगवान तो घर में वास करी। और भगवान के मर्जी के बिना को पत्ता भी नहीं हिलेला और जो भगवान चाहेला वही होला दुनिया में। हमने ढेर कुछ योजना बनाएला सर कि हाई करब सर हाउ प्लॉन्ग करब सर, पर जो भगवान चाहेला अंत में वही हो रहा हो। कहती बा एगो कहावत बना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तई कहावत सच है। भगवान के मर्जी के आगे

कुछ भी नहीं सकेला हुई था। हमेशा याद रखिए, कोनो भी काम करते वह कोई के फौसी नहीं करिया, कोई के दिल नहीं दुखिया, कोई के करा बोली नहीं बोलिया। तू सकब ढेर पूजा करे, दान करे, पुण्य करे, पर अगर तू एक व्यक्ति के दिल दुखा दिला या एक व्यक्ति को बात बोल दिला, वो रो दिलक, तो थोड़ा सब पूजा व्यर्थ में चल जाए। तो हमेशा याद रखिया कि कोनो भी बात बोले से आगे, कोनो भी काम करे से आगे सोचिए एगो भगवान बा, और भगवान सब देखता। जितना हमने कर्म करेला से हर कर्म के फल मिलेगा। अच्छा कर्म करब तो अच्छा फल मिली, बुरा कर्म करब तो बुरा फल भी मिलेगा। और चला भोगे के यही धरती पर, यह परी स्वर्ग है, यह परी नर्क है। तो कोनो भी काम करे से आगे, कोनो भी बात बोले से आगे अच्छी तरह से अपन मन में डालिया कि दुनिया बनाई होला रचनाकार भगवान है, और वो सब देखता, वो सब टिमाई करता के का बोलता, के कौन सी करता। और एक दिन परी जुन है ऐसा के अथी करे के जब अंत समय में आई तो भगवान तौर से पूछी कि हाई वक्त तू का कर ले रहा, के का बोल ले रहा। तो कोनो भी काम करे से आगे, कोनो भी बात बोले से आगे अच्छी तरह से सोच समझ के बात करिया, सोच समझ के काम करिया। कहे के जोन करनी के जोन जितना हमने काम करे ऐसा कर्म करे ऐसा ओकर फल जरूर मिलेला। तो भगवान भी तो कर्म करेला, सृष्टि बनेला, बा फजीर के घाम उठेला, सांझ के घाम सुतेला, और एगो लिया पानी बरसेला, एगो लिया घामा रहते, सब भगवान के बनावल चीज है। और भगवान के आगे इंसान कुछ नहीं सकेला करे। तो हमेशा याद रखिया कोनो भी कर्म करे से, कोनो भी बात बोले से आगे भगवान के नाम लिया जा। चला ऐसे में सुनब जाए गो प्यारा सन गाना गीतवा बोलता, हम कैसे जियब तोहर बिना। कब कब प्यार में से हो जा कि तू कोई के ढेर बना प्यार करे रहा, और व्यक्ति तोहर दिल तोड़ के चल जा, चला जा रहा दूसर कोई संगे तो तोहर दिल रोवेला। अरे वो नहीं कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से ही। अब ओके सोच सोच के रोबा तो दीपकशो में पड़ जेबा, उदास हो जाइबा, भुला जा। वो तोहर तू ओकरा खुशी रहला, वो तोहर दिल तोड़ के चल गल, कोई बात नहीं। सकेला भगवान ओकर से जोड़ी व्यक्ति तोहर खातिर रखलक बा दुनिया में, और जे भी दुनिया में आल बा ओ लोग के जोड़ी कहूँ न कहूँ अवश्य बनल बा। कैसे जियब, कमला गणेश के आवाज़ में गीत चावत ऐसे गीत चली सब हर को परिवार के नाम। आप रहलन महाराणा प्रताप ले खोबिश जीराखंड परिवार कलकतिया परिवार त्रियोले से, और है गीत रतन निहाल के नाम हवन गौबे से, पापा विजय पत्नी करुणा और सब परिवार के नाम। शैलेश महावीर है गीत तोहर खातिर, तोहर पत्नी, तोहर दुकुरेका, तोहर पिताजी जीवन, सब महावीर परिवार के नाम। माया महावीर है गीत तोहरो नाम प्यार से।

संगतिया लोग तो हमारे सहमत हो बचा कि आज की दुनिया में पैसा के बड़ा ही बोल बालाबा। दुनिया भर में पैसा पैसा पैसा, जहाँ भी देखो आदमी पैसा के पीछे भागता भागता। और ये पैसा जो है ऐसे ने कोई चीज़ है जिकर बिना कोई नहीं सकेला रहे, और पैसा खातिर इंसान सकेला अपने आप के भी बेच दे, इतना ज़रूरी है पैसा। और पैसा जो है आज के आधुनिक समाज में कर बहुत ही योग्यता बा। और पैसा चहला, पैसा नहीं रही तो कोनो भी काम नहीं सकब, गरीब जी नहीं सकब। बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा और मकान, हर इंसान के चहला। और पैसा नहीं रही तो न रोटी मिली, न कपड़ा मिली, न मकान मिली। और हमने कहे काम करेला सा अपन परिवार के अपन लड़का लोग के पालन पोषण करे खातिर, तो मेहनत और लगन से काम करिया, पैसा कमाइया। पैसा रही तो सकब ढेर पोगे करे, पैसा नहीं रही जेब में भैया तो कोई तोहर हाल नहीं पूछी। पैसा अगर तोहर पास है तो बोले हेलो जी कैसे हो। और जगह लगे पैसा बस सब कोई ओकरे गदाने ला, सब कोई ओकर आगे पीछे घूमेला। पर जो दिन पैसा फिनी होगल भैया तो जाने ला कौन ची होला। तो जोन पैसा है बहुत जरूरी है, और ढेर कोई खुशी रहेला मिलियनियर बने के, करोड़पति बने के। जैसे अंबानी है मुकेश अंबानी जो ना भारत के सबसे धनी व्यक्ति बा, इतना पैसा वकर लगे आ हा हा सोने पे सुहागा वाली बात। काश सब कोई मुकेश अंबानी की तरह रहत, तो हर घर में नौकर चाकर रहत, बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला ऐशो आराम की ज़िंदगी। ओए होए हमने ये थोड़ा सपना दिखावते, इसे सपना ही सपना सकेल हकीकत बदले। अगर तू मेहनत से काम करबा, लगन से काम करबा, तो एक दिन तोहरो लगे ढेर मना पैसा रही। तो चले गीतवा समझा पैसा के पीछे ना भाग हो, चंदा दे जुबुदन गीतवा गई रे वन। और एक गीत चलावते इसे हमने विष्णु के नाम, विष्णु के उसे कर पत्नियों को दुगुलई का सब परिवार के नाम। आप हवन राम लखन परिवार कौतौल से प्रणव दुखन है गीत और खाते, तो और पत्नी तो और लड़का लोग खाते साथ में है गीत चलावते इस इंदिरा चिंताराम, माता जी इंदिरा चिंताराम की ओर से। बेटा अजय बहु पूनम, बेटा चंदन बहु प्रिया, बाल गोपाल सलोनी और सब चिंताराम परिवार के नाम। और जितना कोई भी हमने के साथ हुआ था अभी रात के रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन पर गीत लोगों के नाम पैसा के पीछे ना भाग हो।

तो पैसा के पीछे भगते भगते उम्र गुजर जाला और सब कुछ छो छार के परे रह जाए कि धन दौलत बैंक बैलेंस नौकर चाकर सब गिरा जाला। खाली हाथ आला वैसा खाली हाथ जाए बस पर जबले जी बस पैसा चहला। अपनी बात कर अनार फल के बारे में और अनार एगो एगो स्वादिष्ट और पौष्टिक पौष्टिक फल है। एक अंग्रेजी में पोमग्रेनेट बोलल जला। अनार के दाना लाल रसदार स्वाद में मीठा खट्टा भी रहेला और अनार में पावल जला ये सब पोषक तत्व। अनार में बा विटामिन सी शरीर के सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली खातिर अच्छा। विटामिन के शरीर के कई सामान्य प्रक्रिया में शरीर के यदि करेला विटामिन का फोलेट बा कोशिका के सामान्य वृद्धि या विकास में मददगार रहेला। पोटाशियम बा अनार में पोटाशियम शरीर के सामान्य मांसपेशी और तंत्रिका कार्य में भूमिका निभावेला। फाइबर बायकर में पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला और एंटीऑक्सीडेंट बा यानी कि अनार में

पॉलीफेनाइल जैसन प्राकृतिक यौगिक भरपूर मात्रा में होला। दिल खातिर बहुत अच्छा है। जिन व्यक्ति लोग के दिल के बीमारी रहेला तो वो लोग से कैंसर अनार खाए उ दिल के जो है रक्त संचार में मदद देवेला और जो है दिल के अच्छा है पाचन खातिर डाइजेस्टिव सिस्टम। अनार के पूरा दाना में फाइबर होला। पर्याप्त फाइबर वाला भोजन पाचन के सामान्य रूप से ठीक रखे में मदद करेला और शरीर के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला। तो है अनार जो है कैसे खाल जाला, सकबर का ताज़ा दाना निकाल के खाए, फल के सलाद में डाल के खाए, दही के साथ भी खाल जाला, ताज़ा रस के रूप में भी पियल जाला। पूरा दाना खाए पर फाइबर भी मिलेला जबकि रस में फाइबर बहुत कम हो जाला। बाजार के बहुत मीठा सा अतिरिक्त चीनी वाला जूस के बजाय बिना अतिरिक्त चीनी वाला विकल्प बेहतर होला। तो अनार जो है स्वादिष्ट है, पौष्टिक है और एंटीऑक्सीडेंट बा वाइटामिन बैकर में और संतुलित भोजन में अच्छा खाए के और अनार जो है इस स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक रहेला। उ चाहे लड़का हो, बड़ा आदमी हो, जिनेस हो, तो लोग सकब से अनार रोज के को अनार खेब तथा लासों एकदम टकाटक रही।

गणेशन हरि के गावल हरि गीत खोज खोज खोज के संगे ही भोजपुरी का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभिनय के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद दो लोग कैसे मैं और फोन कॉल का धन्यवाद और हमके टिकटॉक पर देख ला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमके सुन ला शुक्रिया। रात के 11 बजे सुन बजा गिनीशा से सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 11 से 12 बजे सुनहरे पल और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों के मुलाकात हुई कल मंगलवार के रात के 8 बजे से 11 बजे ले 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर आज लिखा प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। तक कल तक हमने की इजाज़त दा अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Wishing all of you a very good evening, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेडियो मॉरिशस पर। हाँ जी, आपका अपना पसंदीदा शो सुनहरे पल में। वैसे जिंदगी की भाग दौड़ में अगर दिल को सुकून देना हो तो पुराने बॉलीवुड के गीतों से बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए मिलकर यादों के उस हसीन सफर पर चलते हैं जहां हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक खूबसूरत सा एहसास। आपका अपना सुनहरे पल गिनिशा के साथ।
2: दीवाना

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है। ये है सुनहरे पल, यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए, हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में।

अगर आपको पुराने गीतों से मुहब्बत है मेरी जान, तो ये महफिल, बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाए और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम।

दोस्तों, वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल, हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इट्स वक्त फॉर निशात से गुड बाय। या हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।

0: साथ।
1: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: तो बुलाओ
1: एक दौर में

ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।